107.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम रेनबो प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार दिनांक 1 जून सन 2026, प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

कभी कभी जो रास्ते बंद होते दिखाई देते हैं ना, वहीं से नई राहों की शुरुआत होती है। इसलिए चिंता से अधिक भरोसा रखिए और अपने कदम ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि समर्पण में ही सबसे बड़ा सुकून छिपा होता है। आप सुन रहे हैं पुष्पांजलि 100.7 FM रेनबो पर। समय हुआ है 6:14 और मैं आपके साथ हूँ अंजू शुक्ला।

मित्रों, जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसमें प्रभु की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है।

मित्र, प्रार्थना वो शक्ति है जिसे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। आंखों की नमी, मन की पुकार और हृदय की सच्चाई, इन सबको परमपिता परमेश्वर बिना कहे ही समझ लेते हैं। जब संसार सुनना बंद कर दे, तब विश्वास रखिए, ईश्वर उस समय भी सुन रहे होते हैं।

वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, जो व्यक्ति विश्वास का हाथ नहीं छोड़ता, उसका साथ ईश्वर भी कभी नहीं छोड़ते। कई बार जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। कुछ संकट टल जाते हैं तो कुछ परेशानियां बिना कारण समाप्त हो जाती हैं। शायद यही प्रभु की कृपा होती है जो बिना शोर किए हमारे जीवन में काम करती रहती है। इसलिए हर परिस्थिति में उनके प्रति कृतज्ञ रहना सीखिए, क्योंकि कृपा का सबसे सुंदर रूप धन्यवाद में ही दिखाई देता है। अपने हर पल, हर छोटी बड़ी खुशी, हर सुख के क्षण के लिए ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए। उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें आज ये दिन दिखाया, एक नया दिन, जीवन का एक नया अनुभव। सुनते रहिए पुष्पांजलि।

मित्रों, जब जीवन परीक्षा लेता है तब मन सबसे अधिक अपने प्रभु को याद करता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो सुख में भी उतनी ही बनी रहे जितनी कि दुख में।

क्योंकि ईश्वर केवल संकट में याद करने की कोई वस्तु नहीं, वे तो हर श्वास में बसने वाली अनुभूति हैं। उनकी स्मृति जीवन को संतुलित और शांत बनाती है। जब जब जीवन हार गया मैं, तूने हाथ पकड़ लिया, डूब रही थी नैया मेरी, तूने पार उतार दिया। आंसू बनकर दर्द बह रहा था, तू मरहम बनकर आया, दिल के मंदिर में फिर से तेरा ही नाम मुस्कुराया।

मित्रों, हर रात के बाद सुबह अवश्य आती है, हर पतझड़ के बाद बहार आती है, इसी तरह कठिन समय के बाद राहत का वक्त भी अवश्य आता है। निराश मत होइए, बस अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। जो आज अधूरा लगता है, क्या पता कल वही किसी सुंदर सी शुरुआत का कारण बन जाए।

कभी कभी हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ईश्वर का साथ हर पल हमारे साथ होता है। वे दिखाई नहीं देते लेकिन संभालते जरूर हैं। वे बोलते नहीं लेकिन संकेत अवश्य देते हैं। बस आवश्यकता अनुसार उन्हें महसूस कीजिए। आपके आसपास ही हैं वो। उनके प्रति सदैव अपना विश्वास बनाए रखिए और मानव मात्र की सेवा करिए। यही सच्ची ईश्वर की सेवा है।

मित्रों, भक्ति का मार्ग बहुत सरल है। ना किसी दिखावे की आवश्यकता है, ना किसी विशेष पहचान की। बस मन में श्रद्धा हो, हृदय में प्रेम हो और कर्मों में सच्चाई हो। फिर देखिए, हर दिन एक प्रार्थना बन जाता है और आपका जीवन स्वयं ईश्वर को समर्पित एक सुंदर सी यात्रा।

मित्रों, यदि मन निर्मल हो तो हर स्थान मंदिर बन जाता है। ईश्वर केवल ऊंचे शिखरों में नहीं, वे हमारी सोच, व्यवहार और कर्मों में भी बसते हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी का दुख बांटना भी तो एक पूजा है। और वास्तव में भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है मानवता और करुणा। मानव धर्म की सेवा करते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। पुष्पांजलि में आज बस इतना ही। आज का दिन और आने वाला समय आप सभी के लिए अत्यंत मंगलमय हो, शुभ हो, इसी कामना के साथ मैं अंजू शुक्ला अनुमति लेती हूँ इस घंटे से। अगला कार्यक्रम है सदाबहार गीत। बने रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक विकास की बदलती तस्वीर को सामने रखा है। वर्ष 2015-16 और 2023-24 के बीच के आंकड़ों की तुलना बताती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के व्यापक क्रियान्वयन, महिला कल्याण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास का असर अब राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों में भी दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स संगठन उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जनसेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण क्षमता विस्तार, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और मानव संसाधन विकास से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स केवल पुलिस बल के सहायक के रूप में ही नहीं बल्कि आपदा राहत, भीड़ प्रबंधन, चुनावी व्यवस्थाओं, सामुदायिक सेवा तथा जन जागरूकता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स को घटाकर 13.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर कर को घटाकर 9.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शून्य होगा। साथ ही घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी मंदिर पहुंचकर 2 दिन पूर्व आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेंगे तथा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 3:35 पर शाकंभरी देवी मंदिर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे लगभग आधा घंटे तक प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। शाम 4:05 पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से राजकीय विमान द्वारा वे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑंग हाईलैंग ने रविवार को गौतम बुद्ध नगर के एनटीपीसी लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास इकाई का दौरा किया। राष्ट्रपति ने एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा पहलों में विशेष रुचि दिखाई। ये दौरा नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन तथा टिकाऊ अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला बुलेटिन अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रातः 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है सदाबहार गीत।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खबर तो हो ही गई होगी आप लोगों को। चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों का 100.7 एफएम रेनबो पर। मैं हूँ अंजू शुक्ला। वक्त हुआ है 7:05 और ये लीजिए हो गए 7:06। दोस्तों, प्रोग्राम सदाबहार गीत, लेकिन आज की ये प्रस्तुति सामान्य नहीं है। आज सुरों की दुनिया कुछ खामोश है, कुछ नम है। एक ऐसा स्वर जिसने दशकों तक प्रेम, विरह, भक्ति, मासूमियत और मधुरता को अपनी आवाज में पिरोकर लाखों दिलों तक पहुंचाया, आज वही स्वर हमेशा के लिए मौन हो चुका है। कल रात जब खबर आई कि सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही, तो वास्तव में उनकी आवाज, मानो उनकी आवाज में गाए हुए गीत सारी रात मेरे कानों में गूंजते रहे। 31 मई 2026 को 89 वर्ष की आयु में मुंबई में उनका निधन हुआ। उनके जाने से भारतीय फिल्म संगीत का एक अत्यंत मधुर, सादगीपूर्ण और स्वर्णिम अध्याय स्मृतियों में सिमट गया। ये गीत मोहम्मद रफी के साथ उन्होंने गाया। उन्हीं के गाए कुछ गानों के साथ सदाबहार गीत का ये सफर आपके साथ अब से लेकर 8 बजे तक तय करूंगी। रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनका मूल नाम सुमन हेमबाड़ी था। बचपन में ही संगीत का जो उनका झुकाव था संगीत के प्रति, उसका पता उनके माता पिता को लग चुका था। उनका परिवार मुंबई आ गया था और जहां सुमन जी ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और संगीत को ही अपनी पहचान बना ली। भारतीय संगीत जगत की वरिष्ठ और अत्यंत सम्मानित गायिका सुमन कल्याणपुर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि कलाकार कभी विदा नहीं होते। वे अपने गीतों में हमेशा

उनका परिवार मुंबई आ गया था और जहां सुमन जी ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की और संगीत को ही अपनी पहचान बना ली। भारतीय संगीत जगत की वरिष्ठ और अत्यंत सम्मानित गायिका सुमन कल्याणपुर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपने गीतों में हमेशा जीवित रहते हैं।

0: हाईटेक मॉल्स स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब यारी।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो।
3: धड़कन लखनऊ की।
4: सदाबहार गीत प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजू शुक्ला। सुबह का समय है और बहुत सारी हलचल होगी आपके आसपास। सोमवार की सुबह है तो बस ये ऊर्जा, ये एनर्जी बनाए रखिए। लेकिन प्रोग्राम सदाबहार गीत में आज हम याद कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी को। कल रात जब उनके निधन का समाचार मिला ना, तो एकदम से उनके गाए हुए गीत आसपास मानो बजने लग गए हों। दोस्तों, उनकी आवाज़ में एक अनोखी सी कोमलता थी। उनकी गायकी में ना तो बनावट थी, ना प्रदर्शन का आग्रह। उनकी आवाज़ सीधे दिल तक पहुंचती थी और यही वजह थी कि उनके गीत आज भी सुनने वालों को एक अलग सा सुकून देते हैं। उनके सुरों में मिठास थी, शास्त्रीयता भी थी और आत्मीयता भी।

उनकी आवाज हमेशा खनकती रहेगी हमारी दिलों में, सभी संगीत प्रेमियों के दिलों में। सुमन कल्याणपुर जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अक्सर संगीत प्रेमियों के बीच ये चर्चा होती रही कि उनकी आवाज महान गायिका लता जी से काफी मिलते जुलती थी। कई बार तो सुनने वालों के लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता था कि ये गीत लता जी ने गाया है या सुमन कल्याणपुर जी ने। और आज आई एम श्योर जो गाने आप तक पहुंचा रही हूँ उनके गाए हुए गीत, सिर्फ उन्हीं के गाए हुए गीत ही इस प्रोग्राम में बज रहे हैं, चाहे वो रफ़ी साहब के साथ उन्होंने गाया हो, चाहे मुकेश जी के साथ या कोई सोलो सॉन्ग। कई बार अभी तक हम यही समझते रहे कि वो गीत लता जी ने गाए हैं, लेकिन सुमन कल्याणपुर जी ने हमेशा अपनी सादगी और गरिमा बनाए रखी और कभी भी इन तुलनाओं को महत्व नहीं दिया। जी हाँ, तुलना, उनकी तुलना शुरुआत से ही लता जी की आवाज़ के साथ की जाती रही और कई बार तो उन्हें दूसरा दर्जा दिया गया। लता जी से उनकी आवाज़ मिलती जुलती होना या अंदाज लगभग वैसा होना, गायकी का अंदाज, शायद यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि वो पहले नंबर पर कभी नहीं आ पाई। अव्वल बनने से वो हमेशा पीछे रह गई, उन्हें हमेशा दूसरी पायदान पर रखा गया। लेकिन यकीन मानिए, जब उनके गाने आप सुनते हैं ना, तो आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सुमन जी की आवाज़ तो हमेशा सबसे ऊपर थी। इतने प्यारे गीत और इतना खूबसूरत अंदाज, इतनी सादगी कि शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी और के पास हो।

7:28 का वक्त, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार गीत। मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला और आपने ट्यून किया है 100.7 FM रेनबो। हम याद कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी को। कल रात वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके गाए गीत आज भी रेडियो, अलग अलग संगीत के मंचों और संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं और आई एम श्योर हमेशा बने रहेंगे। उनके गाए हुए गाने जब भी आप सुनेंगे तो उनके सुरों में प्रेम गीतों की भावनाओं को, उनकी गहराई को समझेंगे, उनके भक्ति गीतों की आध्यात्मिक ऊंचाई को समझेंगे, उनके हर गीत की भावना को समझेंगे। दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी ने हिंदी, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी और कई अलग अलग भाषाओं में अपनी आवाज़ दी और गाने गाए। उनकी जोड़ी खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बेहद पसंद की गई। दोनों की आवाज़ों का मेल इतना मीठा था, इतना मधुर था कि उनके कई सारे डुएट सॉन्ग्स आज भी सदाबहार माने जाते हैं और हम उन्हें सुनते हैं और वो हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। और संगीत का ये जो स्वर्णिम दौर है जो सुमन कल्याणपुर जी ने हमें दिया है, वो हमेशा हमेशा ऐसे ही जीवंत बना रहेगा।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम यानी आकाशवाणी FM रेनबो, जो हर तरह के संगीत को आप तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है, और जब संगीत

जगत का एक ऐसा सितारा खामोश हो जाए तो उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, श्रद्धा भाव अर्पित करना और उनके गीतों को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सुमन जी को नमन करते हैं। वे अपने गीतों के जरिए हमेशा हमेशा हमारे बीच रहेंगी और हम हमेशा उन्हें गाते गुनगुनाते यूं ही सुनते रहेंगे। मुकेश जी के साथ गाया हुआ उनका एक बहुत ही सदाबहार टाइमलेस क्लासिक सॉन्ग आप तक पहुंचाती हूँ।

नज़ारे तो हमेशा खूबसूरत बने रहेंगे, उनका मुस्कुराता सादगी भरा चेहरा हमेशा हमारे जहन में रहेगा। सुमन कल्याणपुर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। आज प्रोग्राम सदाबहार गीत के माध्यम से उन्हीं के गाए हुए कुछ गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, और आज प्रोग्राम रजनीगंधा में भी आप ज़रूर सुनेंगे उनके गाए हुए गाने। साथ ही नरगिस दत्त जी की आज है जयंती, तो उन पर भी एक खास प्रस्तुति लेकर आएंगे आरजे ऋचा श्रीवास्तव। 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम

रजनीकंधा में। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके ईमेल्स के जरिए हमें पता लग रहा है लगातार, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान रजा जी ने हमें सबसे पहले मेल किया, सुबह सुबह वालेकुम सलाम आपको भी, और 6 बजे से ही हमें सुन रहे हैं, और कुतुब खाना सब्ज़ी मंडी बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी। संजू देवी जी हमें सुन रहे हैं ग्राम पहाड़पुर पोस्ट भिठौरा ज़िला सीतापुर से, बहुत सारी प्यारी बातें आपने हमारे लिए लिखकर भेजी हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप कहते हैं कि आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों आप हमारे लिए इतनी अजीज़ क्यों बन गई हैं जी, आप सबका प्यार है ये। और कहती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं और मैं आपको अपने मन की आंखों से देख रही हूँ, जिस दिन आप आ जाती हैं उस दिन हमारा दिन बन जाता है, और भजन बहुत अच्छे इन्हें लगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजू देवी जी, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी महसूस होता है, पता है आपको, हम लोग यहाँ से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे सामने, हमारे आसपास, कोई आगे बैठा है, कोई दाएं बाएं बैठा है, कोई पीछे बैठा है और हमें सुन रहे हैं लगातार, हमारे साथ ही बैठ कर, बिल्कुल हम ही इमेजिन कर पाते हैं आप सबको। प्रीति श्रीवास्तव जी, राधे राधे, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने गानों की तारीफ़ की और आप हमें सुन रही हैं अलीगंज लखनऊ से, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। विकास जी ने भी हमें गुड मॉर्निंग भेजा है, ज़िला उन्नाव तहसील सफ़ीपुर गांव सलीद से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। और रोशनी रावत का भी मेल हम तक पहुँचा है, राम राम आपको भी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रोग्राम की तारीफ़ की आपने, बहुत धन्यवाद। और लिखती हैं कि बबीता राव, नीलू शर्मा, गुलफशा, सबको राधे राधे बोल दीजिए, तो आपकी तरफ से, सबकी तरफ से राधे राधे। तहसील सफ़ीपुर, ज़िला उन्नाव की रहने वाली हैं, चंडीगढ़ में हमें इस समय सुन रही हैं। उमाशंकर शर्मा जी का भी मेल आया है, कहते हैं कि इट्स वेरी सैड न्यूज़ फॉर ऑल द म्यूज़िक लवर्स, द स्वीटनेस इन हर वॉइस वॉज इनक्रेडिबल। सुमन कल्याणपुर जी को आपने याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है, आपका मेल हम तक मिला। मंडी आदमपुर हिसार हरियाणा से आप हमें सुन रहे हैं उमाशंकर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अतिरिक्त गुलफशा का भी मेल हम तक पहुंचा है, गुड मॉर्निंग गुलफशा सिद्दीकी, संडीला से आप हमें सुन रही हैं, जी हाँ, हमारा इंतज़ार था, देखिए इंतज़ार ख़त्म हो गया, लेकिन बीच में थोड़ा इंतज़ार हम और करवाने वाले हैं आप लोगों को, एक लंबा गैप लेने वाले हैं, तो लेकिन आते रहेंगे आपके साथ, FM रेनबो लगातार बना रहेगा, थैंक यू सो मच गुलफशा। सुधांशु जी का भी मेल आया है, राधे राधे आपको भी, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महुना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब ज़िला लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, सदाबहार गीत प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम सिंह जी का भी मेल आ गया है, एडवोकेट घनश्याम सिंह, नारायण नगर, ए फैज़ाबाद रोड, लखनऊ से, और आपको भी बहुत प्रणाम जी। और आपने भी महान गायिका सुमन कल्याणपुर जी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की हमारे माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम की और गानों की प्रशंसा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब बात गीत संगीत की आती है और संगीत जगत के सितारों की आती है, तो FM रेनबो हमेशा हर बात आप तक पहुँचाता है। और जब ऐसा लम्हा हो कि एक महान सितारा हमारे बीच नहीं है, तो उनके गाए हुए गीत, उनकी बातें, उनका जिक्र करना तो लाजमी है। और आज इसीलिए प्रोग्राम सदाबहार गीत में जितने भी गीत आप तक पहुँचे, वो सभी सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में गाए हुए, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उन्होंने गाया हो या मुकेश जी के साथ। और इस वक्त प्रोग्राम सदाबहार गीत में अब जो गाना आप तक पहुँच रहा है, जब जब फूल खिलेगा, कई लोगों को ऐसा लगता रहा होगा ना, ये गाना लता जी ने गाया है ना, बहुत लोगों को लगता है, हमें भी लगता था, लेकिन ये गीत है सुमन जी की आवाज़ में।

दोस्तों सुमन कल्याणपुर जी को उनके योगदान के लिए बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया और ये सम्मान उनके दशकों लंबे संगीत के योगदान के लिए एक राष्ट्रीय अभिनंदन था। और आज हम नमन कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके गाए हुए गीत, संगीत के प्रति उनका योगदान और संगीत जगत में उनका नाम हमेशा हमेशा हमारे बीच रहेगा।

वास्तव में जिंदगी इम्तिहान लेती है। कई मोड़ पर सफर में ऐसे मकाम आते हैं कि हमें लगता है कि जिंदगी क्या है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए। इस प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रही थी, आप तक आने के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे अलग अलग गीत, सदाबहार गीत, और अचानक एक खबर आई कि सुमन जी हमारे बीच नहीं रही। एक ऐसा कलाकार जिसे किसी पहचान की, किसी कहते हैं ना कि किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर्चाओं से दूर रहना ही उनकी फितरत थी। सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने हमेशा एक सादगी को अपनाए रखा। न कोई शोर, न कोई विवाद, सिर्फ संगीत, समर्पण और सुरों की साधना। और यही कारण है कि संगीत जगत उन्हें सिर्फ एक महान गायिका नहीं, बल्कि एक गरिमामयी व्यक्तित्व के रूप में भी हमेशा याद करता रहेगा। आज उनके गीतों को याद करते हैं तो महसूस होता है कि कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती, वो समय से परे चली जाती हैं। सुमन जी का स्वर भी दोस्तों ऐसा ही था, मखमली, शांत, मधुर और अमर। उनकी स्मृतियों को हम विनम्र नमन करते हैं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और संगीत की दुनिया में उनका नाम हमेशा यूं ही चमकता रहे। एक अंतिम गीत के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगी, लेकिन

उसके पहले आप सबने हमें मेल किया है, जैसे कि रामराज जी ने मेल किया है, प्रोग्राम सदाबहार गीत में जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से ये हमें सुन रहे हैं रामराज, राजू भानु, शंकर भैया, पप्पू जी, मनीष, धीरज, नीरज, मधु, बजरंगी काका और आप सबको हमारा नमस्कार। आपने धन्यवाद लिखा है और सुमन जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है आपने भी। राधेश्याम जी को का भी मेल आया है और राधेश्याम शाकी जी हैं कासगंज से, गुड मॉर्निंग भेजा है आपने और समस्त श्रोताओं को भी। सुमन कल्याणपुर जी का निधन का समाचार है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि इन्होंने भी अर्पित की है। उनकी आवाज़ वास्तव में लता जी से मिलती थी। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति रही, भ्रम रहा हमेशा बहुत सारे गीतों को लेकर कि ये गीत लता जी ने गाया है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में आपने जो भी गाने सुने वो उनकी आवाज़ में थे और आज रजनीगंधा में भी आप उनके गाए हुए गीतों को ज़रूर सुनेंगे आरजे ऋचा के साथ। रॉयल अमित यादव जी का भी मेल आया है और इन्होंने भी प्रस्तुति की तारीफ की है, थैंक यू सो मच। और आप हमें सुन रहे हैं बाराबंकी से। बैनित कुमार जी का भी मेल आया है, विनीत कुमार जी हैं अर्थापुर पोस्ट चीनी मिल जिला सीतापुर से, सदाबहार गीत और इन्हें पसंद आ रहे हैं कार्यक्रम, थैंक यू सो मच। 5:50 से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगेंद्र कुमार जी ने भी हमें मेल किया मुजफ्फरनगर से और ये भी हमें लगातार सुन रहे हैं। सुमन कल्याणपुर जी को भी इन्होंने श्रद्धांजलि दी है, इन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रेया यदवंशी कहती हैं कि संबंध जब हृदय से होता है तब आंखों से आंसू अपने आप आने लगते हैं, बहुत ही प्यारी बात आपने लिखी है। गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ बाराबंकी से आपका मेल आया है। बबीता राव भी हमें सुन रही हैं और ये 5:55 से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुष्पांजलि सदाबहार की प्रोग्राम की प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इन्होंने भी सुमन जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है, आप सभी का शुक्रिया। चलिए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आप तक पहुँचाती हूँ, वापस आएंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर, आप तक सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों, सुमन कल्याणपुर जी आज हमारे बीच ना हो, लेकिन जब भी रेडियो पर उनका कोई भी गीत बजेगा, उनकी मधुर आवाज़ जब कानों में गूंजेगी, तब तब वे हमारे दिलों में फिर से जीवित हो उठेंगी। भारतीय संगीत की इस महान गायिका को शत शत नमन, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और भावभीनी विदाई एफएम रेनबो की ओर से। स्वर मौन हुआ है, संगीत नहीं, कलाकार गया है लेकिन उनकी कला नहीं। नमन करते हैं सुमन जी को। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके तुरंत बाद यानी 8:15 पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ होगा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, जिसे आप कहते हैं धड़कन।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
5: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण

0: तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
3: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
1: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
4: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार,

सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव

0: ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: रहने दे मुझे यूं उलझा हुआ सतुज में, रहने दे मुझे यूं उलझा हुआ सतुज में, सुना है सुलझ जाने से धागे अलग अलग हो जाते हैं।
3: देखिए अंजू जी भाई, सुबह सुबह ये उलझने की बात मत कीजिए,
2: अलग होने की बात मत कीजिए।
3: उलझना ठीक है, क्योंकि उलझे रहने से साथ बना रहेगा।
2: ये बात तो बिल्कुल सही,
3: साथ बना रहेगा तो खुशी और आनंद और जो बातचीत का सिलसिला है वो लगातार बना रहेगा, ये संबंध, ये प्यार यूं ही बना रहेगा।
2: क्या बात है, ये तो बात बिल्कुल सही कही रतन। अगर अलग अलग होना हो जाते हैं सुलझने के बाद, तो भैया हमें उलझना मंजूर है
3: ना? बिल्कुल सही बात है, उलझा रहना बहुत सही है, इसीलिए चलिए आज हम लोग उलझ जाते हैं और बातचीतों का सिलसिला
2: मिलाकर ये कह देते हैं कि साथ बना देते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और ये साथ हमेशा बना रहेगा, और इसीलिए देखिए सुबह सुबह आपका साथ निभाने के लिए आ गए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला और हमारे साथ हैं
3: आपका अपना प्यारा सा दोस्त आरजे रतन।
2: गुड मॉर्निंग रतन, बहुत स्वागत है आपका।
3: आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, और आप मेरे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को भी वेरी गुड मॉर्निंग।
2: अच्छा, बाहर से आए हो तो मौसम का कुछ हालचाल बता दो।
3: मौसम जैसा कल का था उससे आज थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा अभी तो सुबह सुबह अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे ही सूर्यदेव अपना जो प्रकोप है वो दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे।
2: चलिए कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। वैसे कल पूनम की रात थी, कल जो चांद था वो बड़ा हसीन लग रहा था, है ना? तो चलिए ये जो प्यारी बातें हैं ये तो हमारे साथ बनी रहेंगी। मौसम का हाल, ट्रैफिक का हाल और आपका हाल चाल सब कुछ मिलेगा आपको प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। अंजू और रतन के साथ है ये सफर, आपके साथ। गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्र।
1: जी भाई, 8:22 का वक्त हो गया है और सुबह सुबह बात कर लेते हैं मॉर्निंग मंत्रा की, क्यों रतन?
2: जी हाँ दोस्तों, और आज का मॉर्निंग मंत्रा कह रहा है ये कि जिंदगी को समझना है तो लूडो से समझिए।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: उम्मीद हमेशा हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक आए तो भी चलना पड़ता है।
1: वाह क्या बात कही है। वैसे लूडो से हमें याद आया, मॉर्निंग मंत्रा तो बड़ा धमाकेदार आपने दे दिया। हम लूडो, चेस बोर्ड और वो सारी चीजें मतलब निकाल ली हमने, क्योंकि समर वेकेशन शुरू हो गया ना।
2: वाकई में दोस्तों बहुत ये चीजें याद दिलाती है हमारे उन बचपन के दिनों को, जब हम गर्मी की छुट्टियों में अपने घर पे हुआ करते थे और बहुत सारी चीजें ऐसी किया करते थे टाइम पास करने के लिए।
1: अरे वो वाला मंत्री, वजीर, राजा, चोर सिपाही,
2: बादशाह,
1: वजीर जी,
2: जी सिपाही, पता को चोर कौन है।
1: चोर कौन है। तो बड़ा मजेदार ये दौर था और उसी दौर को वापस लाते हैं। और फिलहाल ये जो गाने हैं वो हमें जरूर कुछ ना कुछ सिखाते हैं और ये जो खेल हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो गुड मॉर्निंग लखनऊ आपके लिए हमेशा इसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, जहां पर मॉर्निंग मंत्रा के साथ ये पॉजिटिव गाने और पॉजिटिव बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए
2: 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: जी बिल्कुल, थमने की बात तो हम करते ही नहीं है। गुड मॉर्निंग लखनऊ है आपका अपना एफएम रेडियो है, सुबह 6 से रात 12 बजे तक बस चलता रहता है और एक से बढ़कर एक प्रोग्राम आप तक लेकर आता रहता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है, और हमारा आपसे हमेशा यही वादा रहा है कि हम आपका साथ यूं ही इसी प्यार के साथ निभाते रहेंगे।
0: और जब प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ की बात आती है रतन, तो इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीजें समेट कर लाते हैं और बहुत कम वक्त में बहुत कुछ अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल, पूरी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको दें।
0: बिल्कुल, और चलिए शुरुआत कर देते हैं। हमने मॉर्निंग मंत्रा तो बता ही दिया, अब जब बात मुद्दे की आती है, हमारे बड़े सारे लिस्टनर्स ईमेल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेज रहे हैं, लेकिन मुद्दे पर जब हम कोई विषय आप तक पहुंचाते हैं तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आज का जो मुद्दा है उसको आप तक पहुंचाने के पहले कुछ थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। देखिये, आज है 1 जून, पहली तारीख है जून की, है ना। तो जून का महीना शुरू हो गया है, पहली जून है, और जब इस दिन के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे खास दिवस मनाए जा रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही स्पेशल डे है, वो है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे।
1: जी,
0: अब आप सोच रहे हैं तो 14 नवंबर को मनाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसा सोच रहे होंगे।
0: हाँ, और 20 नवंबर को भी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है।
1: बिल्कुल मनाया जाता है, ठीक
0: है। लेकिन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे देश के, दुनिया के बहुत सारे देशों में मनाया जाता है, और ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए बाकी जो इसके बाद हिस्ट्री है, इसकी विस्तृत जानकारी वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन आज अभी इस वक्त हम सिर्फ इसके एम पर बात करते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाल बचपन के महत्व को रेखांकित करता है।
1: जी हाँ दोस्तों, उनके बच्चों के अधिकार की जैसे बात की इन्होंने, अभी उनके कल्याण की बात करी और उनका बाल शोषण उसको समाप्त करने की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी बच्चों के पूर्ण रूप से अधिकारों की यहाँ पे बात की जा रही है।
0: बिल्कुल, और जब अगर मुझसे बात पूछा जाए बीइंग अ पेरेंट, तो यहाँ पर जो बाकी सारी चीजें तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं, लेकिन जो सुरक्षा वाली बात आई है ना, सेफ्टी, तो इसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके आप अभी रुक जाइए, ठीक, छोड़ दीजिए, याद रखिएगा कि सुरक्षा शब्द अंडरलाइन किया है, और उसके बाद आगे बढ़ते जो आज एक और बहुत खास दिन है।
1: जी वाकई में दोस्तों, आज का दिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, और आज हम सभी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के साथ साथ बना रहे हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी कि ये दिन माता पिता की भूमिका और उनके योगदान को सम्मानित करता है कि माता

0: की जो भूमिका है वो बच्चों के प्रति कैसी होनी चाहिए और उनका पालन पोषण किस तरह से बच्चों का करना चाहिए, तो उनकी जो भूमिका है वाकई में किसी भी बच्चे के जीवन में माता पिता की भूमिका बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखती है।
1: बिल्कुल, और जब आजकल के माता पिता की बात की जाती है मतलब स्माइल आगे चेहरे पर, भैया यहाँ ना जाओ वहां ना जाओ, हर वक्त एक साया बच्चे के आसपास जरूर रहता है, उसके सर पर मंडराता रहता है कि बच्चा कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा है। लेकिन ये जरूरी भी है रतन, एक हद तक जरूरी है कि जब हम बच्चों की सेफ्टी की बात करते हैं, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, हमारा बचपन अलग था, वो माना ही अलग था कि जब हम बेधड़क कहीं से भी कहीं चले जाया करते थे,
0: बाहर निकल जाया करते थे अपने बच्चों को छोड़कर, और हमारे बच्चे भी पूरी तरह से आजादी से घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन अब एक माहौल ऐसा बन चुका है, एक ऐसी स्थिति बन गई है कि पेरेंट्स कहीं भी बाहर जाएं लेकिन उनका ध्यान बच्चों की ओर रहता है, बच्चों की सेफ्टी पे रहता है।
1: बिल्कुल, चाहे वो घर के अंदर हो, तब भी जब हम बात करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं घरों में, है ना, तो उनको यूज करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं बच्चे कहीं उनको चोट ना लग जाए, कहीं किसी भी तरह से उनका नुकसान ना हो जाए, या हमारे हाथ में जो बच्चों के हाथ में इस वक्त भी होगा, बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक ये गैजेट्स की बात करते हैं, डिवाइसेस की बात करते हैं, तो भी वहां पर भी सेफ्टी का मुद्दा आता है।
0: और अंजु, ऐसे समय में जब इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं देश में समाज में, तो पेरेंट्स का फिक्र करना भी जायज है।
1: बिल्कुल, यहाँ पर मुझे लगता है कि रतन पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग हो गई,
0: बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, और इस चैलेंज को हमारे पेरेंट्स बाखूबी निभाते भी
1: निभा भी रहे, और जमाने के साथ साथ वो सजग हुए, अवेयर हुए हैं, और इसीलिए ये खास तौर पे ये जो दिन दो दिन है वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। तो चूंकि ये इस तरह के खास दिन है, तो हमारे लिसनर समझ गए होंगे कि आज का मुद्दा हम इसी से कोरिलेट करने वाले हैं।
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
1: जी बिल्कुल, आज का मुद्दा हम बस आप समझ गए होंगे, भूमिका तो हमने बता ही दी है, जब बच्चों की सेफ्टी की बात आती है तो उनको उनके प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होना मुझे लगता है समय की डिमांड हो गई है, चिंता होती है आज के पेरेंट्स की, वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं या जिस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हैं जो जरा सी असावधानी या लापरवाही की वजह से बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं, और बच्चे भी उनका सामना करते हैं, तो ऐसे में पेरेंट्स का सजग रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग है वो उसका क्या, जब हम पेरेंट्स सारे जो अभिभावक हैं वो बच्चों को कहते हैं ना कि छापे बैठे रहेंगे, छत्रछाया बने रहेंगे उनकी हमेशा 24 घंटे, तो बच्चे जब अकेले आगे नहीं निकलेंगे तो फिर वो अकेले चलना कैसे सीखेंगे।
0: और कहा भी जाता है कि अगर किसी को कोई भी चीज सिखानी है, किसी को भी अगर कोई भी ट्रेनिंग देनी है, तो जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं बताएंगे, वो खुद स्वयं नहीं करेगा, तब तक उसको वो चीज आ ही नहीं सकती। इसलिए बच्चों के साथ भी ये जो सिचुएशन है वो जरूर होनी चाहिए कि हम उन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी चीजों को सीखने की उनको दें कि वो सीखें समझें, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हर वक्त जैसा कि आपने कहा कि छाया लिए बैठे रहते हैं, तो वो चीज थोड़ी सी कहीं ओवर प्रोटेक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रहता है ना, जब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे। लेकिन आज के समय में माता पिता बच्चों की सुरक्षा को लेकर पहले से बहुत ज्यादा सजग हैं, जागरूक हैं, अलर्ट रहते हैं, और ये जरूरी भी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अत्यधिक सुरक्षा बच्चों के आत्मविश्वास और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित कर रही है।
0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल,
1: बच्चे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं,
0: बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, किसी भी बात को करने से पहले वो अपने पेरेंट्स से हर चीज पूछने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनके अंदर गेन हो और वो अपने आप से चीजों को करने की कोशिश करें।
1: हाँ, और इसके लिए उन्हें सही तरीका सिखाइए, सही जो हिदायतें हैं वो देना जरूरी है, और बच्चे अलर्ट रहें, अपनी सुरक्षा खुद कर सकें जब उन्हें आवश्यकता हो, ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो। तो बस आज का मुद्दा यही है कि बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। ऐसे में आज के दौर में पेरेंटिंग निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो आज की जो समय की डिमांड है कि आप बच्चों को सुरक्षित रखिए लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए, सीखने के लिए अकेला भी छोड़िए। आपकी क्या राय है, बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी और आत्मनिर्भरता भी जरूरी, वो पेरेंट्स पर ही डिपेंडेंट ना रहे। अपनी राय आप हमें जरूर भेजिए।
0: हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com।

0: मेल आईडी के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ें, आज के मुद्दे पर, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर अपने विचार हम तक पहुंचाएं। हमें आपकी मेल्स का इंतजार रहेगा और आपकी भेजी गई मेल्स को हम अपने लिसनर्स के लिए जरूर पढ़ेंगे। और आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो वो भी आप जरूर हम तक पहुंचा सकते हैं।
1: और सुनते रहे 100.7 FM रेनबो, जिस पर प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। इतिहास के पन्नों में आज का दिन,
1: 'जो इतिहास बनाना है तो पसीना जरूर बहाइए, है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो लोग पसीना बहाते हैं वो इतिहास रचते हैं।
2: जी हाँ दोस्तों, और इतिहास रचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
1: गर्मी वाला पसीना नहीं बहाना,
2: मेहनत वाला पसीना बहाना पड़ता है, तभी आप इतिहास रच सकते हैं। और वाकई में इतिहास अपने आप में बहुत खास होता है, जो हर दिन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देता है, और उसकी ही कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं।
1: तो सबसे पहले तो दो दिवस जो खासतौर पर मनाए जा रहे हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। तो आज ही के दिन शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाने की, 1 जून को समर्पित किया गया बच्चों के लिए। और हालांकि संयुक्त राष्ट्र का अपना यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन रूस, चाइना, पोलैंड, बुल्गारिया, वियतनाम जैसे कई देश 1 जून को बाल दिवस मनाते हैं। और इसका उद्देश्य, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और खुशहाल बचपन के महत्व को रेखांकित करता है। और आज के दिन इतिहास में ये तारीख दर्ज हुई 1925 में, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई।
2: जी, और दोस्तों इसी के साथ आज हम एक और डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये भी प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल

0: 1 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य माता पिता की भूमिका और उनके योगदान को बताना है, सम्मानित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2012 में इस दिन को घोषित किया था ताकि माता पिता द्वारा बच्चों के पालन पोषण में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी जा सके। यह दिन हमें दोस्तों ये याद दिलाता है कि माता पिता न केवल बच्चों के लिए पहले शिक्षक होते हैं बल्कि उनके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब बच्चों की और माता पिता की बात आती है तो भाई खाने पीने की बात भी आएगी, क्योंकि अक्सर मम्मियां देखिए अभी भी हो सकता है घर में दूध का ग्लास रखा हो और चिल्ला रही हूं कि अभी तक तुमने दूध नहीं फिनिश किया है। तो भाई देखिए मिल्क आदर्श भोजन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सिखाया जाता रहा है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को हमें लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनको जरूर बताएं कि दूध कितना फायदेमंद होता है। और शायद इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर तो ये दिवस मनाए जाते हैं हर राज्य में, हर देश में, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत 2001 में संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने की थी और इसका खास मकसद दूध और डेयरी क्षेत्र के पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार और खाद्य सुरक्षा में योगदान को रेखांकित करना है। और ये दिवस जो है 40 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है।
0: जी हाँ दोस्तों, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और बी12 जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत होता है जो हड्डियों को मजबूती और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और ये जो दिवस है विश्व दुग्ध दिवस, ये 1 जून यानी कि आज के दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर साल एक विषय के साथ ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो विषय है वो है महिला किसानों का सम्मान, यानी कि सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। दोस्तों ये थीम डेयरी उद्योग, कृषि और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान और उनके सशक्तिकरण को मान्यता देने पर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है। और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है, यहाँ ये दिवस विशेष रूप से महत्व रखता है। तो आइए आज इस दिवस पर दूध के महत्व को समझें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं।
1: बिल्कुल, तो दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल जरूर
0: करें।
1: हम पीते हैं दूध, हल्दी डाल के पीते हैं।
0: क्या बात है, हम भी लेते हैं दूध और हम बस यही कहेंगे आप लोगों से कि जैसे हम दोनों लेते हैं वैसे आप भी जरूर लिया करिए। और अगर हल्दी डाल के लेते हैं तो बहुत ज्यादा वो पावरफुल हो जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं, आप इस्तेमाल कर कीजिए और अपने जीवन को हमेशा स्वस्थ बना रखिए। इसके अलावा इतिहास में और भी कुछ घटनाएं हैं जो आपको बताना जरूरी है।
0: जी हाँ दोस्तों, वाकई में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाती हैं और उस दिन को और भी ज्यादा महत्व दे जाती हैं। 1831 की अगर बात करें तो सर जेम्स रॉस ने पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का स्थान निर्धारित किया था आज के दिन। और 1930 की बात करें तो दक्कन की रानी मुंबई और पुणे के बीच डेक्कन क्वीन ट्रेन आज के दिन शुरू हुई थी।
1: अच्छा।
0: और वहीं अगर 1961 की बात करें तो अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने विश्व के पहले स्टीरियो FM प्रसारण की अनुमति भी आज के दिन प्रदान की थी।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है?
0: कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज के दिन को और भी ज्यादा खास बनाती हैं, इम्पोर्टेंस इस दिन की बढ़ा देती हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच रतन हमारी जानकारी में इजाफा करने के लिए। चलिए आपने जानकारी दे दी, हम आपको गाना सुना दें।
0: क्या बात, थैंक यू सो मच,
1: बढ़िया वाला सुना दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलिए एंजॉय कीजिए सुंदरी 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ।

0: आठ बजकर 47 मिनट का समय, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। आपके दो दोस्त अंजू और रतन आपके साथ जुड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल। और रतन, जब दिल का चैन उड़ जाता है, जब बच्चों को कुछ हो जाता है या बच्चों की खबर ना मिले, या बच्चों को जरा सा भी सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, या अगर बच्चा स्कूल से गया, टाइम से वापस नहीं आया, कहीं भी बाहर गया, वो बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं ना। और अगर बच्चों की सेफ्टी की जरा सी भी बात आती है तो माता पिता का चैन, नींद, सब कुछ गायब हो जाता है। तो ऐसे में जब कहा जाता है ना कि नाजों से पालते हैं, बड़ी उम्मीदों से बच्चों को हम इस दुनिया में लेकर आते हैं, और उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और खास तौर पर जब पेरेंट्स के, जब आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं तब और ज्यादा। थोड़ा सा बड़े होते हैं बच्चे तो अपने आप चलना सीखने लगते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, जिंदगी की सच्चाई को, हकीकत को जानना समझना शुरू कर देते हैं, तो थोड़े से निश्चिंत हो जाते हैं पेरेंट्स। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में आज का जो दिन है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे और ग्लोबल पेरेंटिंग डे, इन दोनों दिवस को मिलाकर आज जो मुद्दा है, मुद्दा हमने आपके साथ चर्चा के लिए लेकर आए हैं कि बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है, उनका खुद पर विश्वास जागृत करना भी जरूरी है। ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ सवाल हैं जो हम पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं, वो अपने आप को अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन सवालों के जवाब के साथ।
0: जरूर चेक कीजिए अपने आप को।
1: तो सवाल कुछ ये हैं कि सबसे पहले, क्या हम बच्चों को हर समय अपनी छत्र छाया में रख कर उनका आत्मविश्वास कम कर रहे हैं? मतलब उनको सारे काम उनके आप खुद करके दे रहे हैं या उनके साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या उनका आप आत्मविश्वास जो उनके ऊपर अपने आप पर पैदा हो, वो मौका आप छीन रहे हैं उनसे? दूसरा सवाल, क्या बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे रहे हैं? तीसरा, क्या बच्चे अपना निर्णय खुद लेना सीख रहे हैं, कि डिसीजन टेकिंग उनके अंदर है या नहीं है? फिर क्या हम उन्हें केवल डरो सिखा रहे, ये ना करो, वो ना करो, इस चीज से दूर रहो, या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं कि सुरक्षित कैसे रहो? ठीक है। अगला सवाल ये कि क्या बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी दी जा रही, गुड टच या बैड टच की, चाहे वो आपका बच्चा मेल हो या फीमेल? और सबसे अंतिम और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्या बच्चों को किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में अपने आप को कैसे वो बचा सकें, या कैसे मदद मांगें, या किस तरह से वो मदद पा सकें, ये सिखा रहे हैं आप?
0: तो क्या ये सब बातें आप अपने बच्चों को बताते हैं, या फिर अभी इनमें से कुछ बातें आपने अभी तक अपने बच्चों को नहीं बताई है, या फिर हमेशा आप उनके साथ रहते हैं और जिस कारण से उनका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास

0: कमजोर हो रहा है। और ऐसे ही कुछ बातें बच्चों के लिए भी हैं, बच्चों से जो कर सकते हैं। और वो बातें ये हैं कि घर का पता और माता पिता का मोबाइल नंबर क्या बच्चों को याद रखना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना जाना, ये क्या आपने बताया अपने बच्चों को, परेशानी होने पर विश्वसनीय व्यक्ति से सहायता मांगना, और मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल इंटरनेट इस तरह से यूज करते हैं। अब पेरेंट्स ये इस तरह की चीजें करते हैं कि पेरेंट्स बिजी हैं, बच्चे को दे दिया मोबाइल, बेटा चुप हो जाओ ये ले लो। तो इस स्थिति में क्या आप ये चीज बुरी तरह से निश्चित करते हैं कि बच्चा आपका सुरक्षित रूप से इंटरनेट यूज कर रहा है। भीड़ भाड़े वाली जगहों पर सतर्क रहना है, क्या आपने बच्चों को ये चीज बताई है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाइए तो बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आत्मविश्वास के साथ ना कहना।
1: बिल्कुल,
0: यदि आपका बच्चा के साथ कभी कुछ ऐसा होता है, कोई उसको कहीं टच करता है या कुछ कहीं उसको कोई ले जा रहा होता है जबरदस्ती,
1: या
0: कुछ खाने पीने की जबरदस्ती देता है, तो क्या आपने अपने बच्चे को ये चीज बताया कि ना कहना सीखूं, नहीं तो नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो ना का मतलब ना होता, ये अपने बच्चों को सिखाना बहुत बहुत जरूरी है।
1: तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी तरफ हम एफएम रेनबो के मंच से आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे जो लिसनर्स हैं रतन, वो बहुत समझदार हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और जैसे ही हमने आपकी तरफ ये मुद्दा पहुंचाया, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार हम तक पहुंच रही हैं ईमेल्स के माध्यम से।
0: दोस्तों, लगातार मेल्स हमारे पास आई हैं, और जो हमारे पास मेल आई है, रोशनी रावत जी की मेल है, और ये लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड अंजू मैम जी, रतन सर जी, आप दोनों कैसे हैं? तो हम दोनों बहुत अच्छे हैं, कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है। मेरा नाम रोशनी रावत है, पोस्ट मोमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ से ये प्रोग्राम सुन रही हैं। ज्यादा मुद्दे की बात में कह रही, ज्यादा तो नहीं, बस इतना बोलना चाहते हैं, जब तक बच्चे खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
1: बात बिल्कुल सही है, है ना, लेकिन पेरेंट्स करने भी तो दे
0: इसीलिए कहा जाता है बच्चों को थोड़ा सा फ्री जरूर करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। निधि चौरसिया जी, आपने हमें कहां से मिल के है ये तो नहीं बताया, गुड मॉर्निंग आपने भेजा है, आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग। मोनू जी का भी मेल आया है, और मुद्दे पर तो इन्होंने कोई बात नहीं की है, बड़ी अच्छी सी बात।
0: अरुण कुमार कुशवाहा का मेल हमारे पास आया है, घमोइया हरदोई से, आप दोनों कह रहे हैं, आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार, मॉर्निंग मंत्रा बहुत प्रेरक था आज का, थैंक यू सो मच। आज के मुद्दे में कहना चाह रहे हैं, मेरा यही कहना है कि बच्चों को वो सारी शिक्षाएं देनी चाहिए पर प्रैक्टिकल उनको स्वयं करने देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अनुराधा कुमारी जी ने हमें मेल किया है, कहाँ से कर रही हैं आप मेल, ये भी आपने भी नहीं लिखा है, और आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच।
0: प्रीति श्रीवास्तव जी की मेल आई है अलीगंज लखनऊ से, राधे राधे अंजू जी, रतन जी, आपको भी राधे राधे, हम आपके इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि बच्चों की सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, हम दोनों बच्चों को उनके खुद के काम या खुद के डिसीजन ज्यादातर खुद से ही लेने के लिए कहते हैं, जैसे बेटे को घर के काम के लिए बाहर भेजते हैं वैसे ही बेटी को भी कहते हैं कि वो अपने जरूरत का सामान लाने के लिए खुद से बाहर जाए, खुद से डिसाइड करे कि उसे क्या लेना है, कैसे लेना है। बस हम थोड़ी सी टिप्स और गाइडलाइंस बता देते हैं, अगर कभी उससे कोई गलती भी हो जाती है तो बोलते हैं रिटर्न करके या कैसे भी खुद को ही समझ के दोबारा सामान लाए, क्योंकि अगर हम बच्चों की गलतियों से डरेंगे तो उन्हें सीखने का मौका कैसे देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चों के लिए दोनों बातें जरूरी हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी।
1: और
0: है।
1: आपकी बात सुनकर प्रीति जी मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, मुझे याद आ गया वो दौर कि जब मैं अपनी अगर बात करूं तो गाड़ी में बैठी रहूं और बच्चों को बोलूं कि हाँ, ये मैंने अक्सर किया है कि आप ये सामान लीजिए, सामने मैं हूं, सामने या शॉप पर भी आप खुद मांगिए सामान और पैसे भी दीजिए, और दुकानदार ने जो पैसे रिटर्न किए, कितने का सामान आपको मिला है और आपने कितना पैसा दिया, कितना आपको रिटर्न मिला, ये चीजें अगर आप बच्चों से करवाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे। ये छोटी छोटी बातें हैं और वास्तव में उन्हें कॉन्फिडेंस आता है, और फिर अगली बार देखिए, पहली बार वो संकोच करते हैं, अगली बार तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो नहीं लेना वो भी मांग लेते हैं तो अंकल ये दे दीजिए, अंकल वो दे दीजिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस
0: है। उस स्थिति में होता है कि बच्चे, मतलब आप कहेंगे भी नहीं कि लेने जाओ, वो खुद कहेंगे हमें पैसे दो मैं लेके आता हूं, तो ये कॉन्फिडेंस होता है
1: नहीं। और फिर जिस चीज के लिए आप मना करिए कि हां ये नहीं लेना है वो भी मांग लेंगे, तो खैर ये तो बात है। हाँ, बचपन बहुत अच्छा होता है, बच्चों के साथ हमें भी बच्चा बनकर इंजॉय करना होता है और बच्चा बनकर ही उनका दोस्त बनकर उन्हें सिखाना होता है। खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जहाँ पर सेफ्टी मेजरमेंट्स बच्चे क्या लें, हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए वो अलग अलग तरीके से सिखाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, घर भी, स्कूल में भी, ऑफिस में भी, कहीं पर वर्क प्लेस पर भी, जब आपकी सेफ्टी की बात होती है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल एक बढ़िया सा ट्रैक, क्योंकि

0: जब साथ होता है पेरेंट्स का, बच्चों का, अभिभावकों का, और हाँ ये जरूर कहूंगी कि हम सब, हमारे आसपास जो बच्चे हैं ना उनके गार्जियन हैं, जो टीचर्स हैं वो भी गार्जियन हैं अपने बच्चों की, उनकी उनके बच्चों की तो कोई संख्या ही नहीं होती कितने सारे बच्चे होते हैं उनके पास। तो बस सब मिलकर अगर हम बच्चों को, बचपन को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे ना, तो मुझे लगता है एक अपराध मुक्त समाज होगा और बच्चे भी निडर निर्भीक होकर समाज में आगे बढ़ पाएंगे, जैसे कि हम अपने बचपन के दौर में जीते थे, है ना, खुलकर।
1: बिल्कुल।

0: जी बिल्कुल, हमारा और आपका साथ तो यूं ही बना रहेगा ना।
1: बिल्कुल बना रहेगा, अगले घंटे में भी बना रहेगा, इसलिए जब तक इस घंटे को हम वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक अगले घंटे में आपसे मुलाकात कैसे करेंगे।
0: बिल्कुल, तो समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद तुरंत वापस आते हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ के अगले घंटे में। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी अपनी हेडलाइन बनाया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्यांकन मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय

रही है। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, फैसला 30 जरूरी दवाओं के दाम तय, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग की गड़बड़ियों का तूफान अभी थमा भी नहीं था कि अब 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के डाटा ब्रीज के मामले का नया घमासान सामने आ गया है। इस खबर को समाचार पत्र दैनिक जागरण ने अपनी लीड बनाया है, जिस पर अखबार ने लिखा, सीबीएसई ने स्वीकारी खामी। समाचार पत्र अमर उजाला ने लिखा, सीबीएसई ने माना ऑनलाइन मार्किंग पोर्टल में हुई चूक, खामियां करेंगे दूर। यूपी को 4 साल 19 दिन बाद आखिरकार राजीव कृष्ण के रूप में स्थायी डीजीपी मिल गया है। इस खबर को समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने अपनी लीड बनाते हुए इस पर लिखा, आखिर 4 साल बाद यूपी को मिल गया स्थायी डीजीपी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में अपने ओवर ग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क्स को मुख्य धारा की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इस पर शीर्षक दिया, राजनीतिक दलों में घुसपैठ कर रहे आतंकी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने रविवार देर रात जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस खबर को समाचार पत्र हिंदुस्तान ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, जेईई एडवांस्ड में दिल्ली के शुभम कुमार पहले स्थान पर। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम बने जी एडवांस्ड के टॉपर। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रविवार को भी आंधी बारिश का दौर जारी रहा। इस खबर को समाचार पत्र अमर उजाला ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने शीर्षक दिया, प्रदेश में आंधी बारिश, दीवार पेड़ गिरे, 4 की मौत। गाजियाबाद में 17 वर्षीय छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। समाचार पत्र अमृत विचार ने इस खबर को प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, छात्र सूर्या की हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद 3 दिन बाद एनकाउंटर में ढेर। समाचार पत्र नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिस पर अखबार ने लिखा, गाजियाबाद छात्र की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया है। इस खबर को समाचार पत्र अमृत विचार ने प्रमुखता से स्थान दिया, जिस पर अखबार ने लिखा, आरसीबी दूसरी बार आईपीएल किंग। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने रविवार को भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस पर अखबार ने लिखा, सुब्रमण्यम ने सीडीएस का पदभार संभाला। राज्य सरकार ने 1990 बैच की आईएएस अधिकारी अर्चना अग्रवाल को राजस्व परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस खबर पर समाचार पत्र अमृत विचार ने लिखा, अर्चना अग्रवाल बनी राजस्व परिषद की नई अध्यक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन को बदलते समय और नौ चुनौतियों के अनुरूप अधिक सक्षम, प्रशिक्षित, तकनीकी सक्षम और आधुनिक बनाया जाए। इस खबर पर अखबार ने लिखा, होमगार्ड संगठन को बनाएंगे आधुनिक व तकनीकी रूप से सक्षम। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी।
2: जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये सफर, यानी बात का आधा घंटा, एक घंटे का सफर, वो शुरू हो गया।
3: तो हम दोनों आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और 9:04 और साथ में 44:45-46 आप अपनी घड़ियां मिला सकते हैं। और जो लोग इस वक्त ऑफिस के लिए निकल चुके हैं उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं आज के इस दिन की। और जो लोग इस वक्त निकलने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। और जो इस वक्त अभी सो के उठे हैं, अपनी आंखों को मल रहे हैं और हमें सुन रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ, उनको भी वेरी गुड मॉर्निंग बोलते हैं।
2: जून का महीना शुरू हो गया है, साल के बीचों बीच में हम आ गए हैं, छठा महीना शुरू हो चुका है, पहली जून है और बहुत सारी चीजें हैं अभी जो आप कर सकते हैं इस यानी 2026 के बचे हुए दिनों में। लेकिन फिलहाल पहली तारीख है तो बहुत सारी प्लानिंग कर लीजिए। जून का मंथ है, छुट्टियां हैं, शादियां भी हैं, 16-17 जून के बाद से

0: शादियां और मांगलिक उत्सवों का भी जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा, तो बहुत कुछ करना है भैया। आज पहली तारीख है और सबसे बड़ी बात की मंडे है।
1: जी हाँ, मंडे है, हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस वीक की करिए शुरुआत। और चूंकि आज हम सभी, यानी कि 1 जून है, हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो इस दोनों दिन के साथ आज के इस दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा मुद्दा है कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को रिलेट करता हुआ जुड़ा हुआ है, और आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो ज़्यादा फिक्र है, क्या आपकी जो ज़्यादा चिंता है वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में उनको कहीं ना कहीं पीछे कर रही है, या फिर आपकी जो ज़्यादा केयर है वो बच्चों को कहीं ना कहीं उनको उनके विकास में बाधक तो नहीं उत्पन्न कर रही, बाधक तो नहीं बन रही है, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है fmakashwani@gmail.com, इस मेल आईडी के माध्यम से आप जुड़िए हमारे साथ और आज के मुद्दे पर अपने विचार, अपनी बातें हम तक साझा कीजिए। हमें आपकी मेल्स का लगातार इंतजार है।
0: बिल्कुल, और एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप तक पहुंचा रही हूं, तो बस परिवार के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। 100.7 FM सुनते रहिए।

0: दोस्तों 9:11 का समय
1: और खुशियों की सरगम की बात करें या प्यार की कहानी की बात करें, दुख के समय, कठिनाई के समय, अपनों के साथ की बात करें, तो दोस्तों सब कुछ जो परिस्थितियां, जो जिंदगी की सच्चाई है, वो भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी होता है. बीइंग पेरेंट, अगर आप बच्चों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही उनकी आदतें डालते हैं, तो यकीन मानिए जिंदगी उनके लिए बहुत आसान हो जाती है. और इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की, अभिभावक बनना, माता पिता बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और जब बच्चे आपकी दुनिया में आते हैं वो आपके लिए बहुत कीमती, अनमोल है, हम समझ सकते हैं, हम सबके लिए होते हैं हमारे बच्चे, बट उन्हें जिंदगी की रेस में खुद दौड़ने देना भी जरूरी होता है. कब तक आप उन्हें अपनी उंगली पकड़ा कर चलाते रहेंगे
0: जी. और इसी विषय पर बहुत सारी मेल्स जो हमारे पास लगातार आती जा रही हैं, और देखते हैं अगली मेल किन की है. सुधांशु जी की मेल हम तक पहुंची है. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आपको भी. और राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर, पोस्ट मोहन, थाना इंटौजा, बक्शी का तालाब, जिला लखनऊ से. कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है. टॉपिक पर ये कह रहे हैं कि माता पिता से हर बात पूछना सम्मान दर्शाता है, लेकिन अत्यधिक निर्भरता से बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है. आज के समय में बच्चों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन ये सुरक्षा बंधन बनने के बजाय उनका हौसला बढ़ाने वाली होनी चाहिए. बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें छोटे निर्णय खुद लेने के विकल्प दें, गलतियों से सीखने का अवसर दें, और उम्र के अनुसार जिम्मेदारी सौंपें.
1: बिल्कुल सही बात आपने कही है. उम्र के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी सौंपना बहुत जरूरी है, तभी उनका जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो पाएगा. और भी बहुत सारे ईमेल्स हैं आज के मुद्दे से जुड़े हुए. हिस्टोरिया यानी ओम प्रकाश उजाला लिखते हैं, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो. बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चंद किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे. और निदा फाजली साहब की कलम से निकली ये खूबसूरत पंक्तियां इन्होंने भेजी आज के मुद्दे से जुड़कर. कहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उन पर हमेशा दबाव, दहशत बनाना बहुत गलत है. आजादी रखिए निगरानी में. और ये जो निगरानी शब्द है ना, ये ओम ने मुझे लगता है रतन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखकर भेजा है. इस पर हम सबको फोकस करना चाहिए कि बच्चों पर निगरानी रखिए, और वो कहाँ है, क्या है, कैसे हैं, सुरक्षित हैं या नहीं, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें करने दीजिए. जब आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे.
0: जी हाँ दोस्तों, वो सब कुछ करें लेकिन आपकी निगरानी में करें, और बच्चों अपने आप को आपकी निगरानी में फ्री भी समझें, कुछ ऐसा करना चाहिए. महेंद्र दीपन जी की मेल हम तक पहुंची है, और ये कह रहे हैं, मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर जिले के रूण गांव से हूं. आज का विषय बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता हूं, लेकिन मेरी दूरी मेरे बच्चों राजवीर देपन और मोनिका देपन के साथ मेरे जुड़ाव को कभी आड़े नहीं आती. मेरा मानना है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें डर से नहीं बल्कि विश्वास से पालना चाहिए. मैं रोज उनसे फोन पर बात करता हूं, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनता हूं, और उन्हें सिखाता हूं कि कैसे वे अपनी जिम्मेदारियां खुद समझें. बच्चों को प्यार के साथ सही और गलत की समझ देना ही उन्हें विषय भविष्य के लिए प्रोटेक्ट करता है. बिल्कुल सही बात है. और आशा यह कि मेरा यह संदेश उन सभी माता पिता के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने बच्चों से दूर रहकर भी उन्हें अपना संस्कार दे रहे हैं. बिल्कुल सही बात लिखी आपने. वाकई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दूर भी रहते हैं तो बच्चों से कनेक्टिविटी आपकी कैसी है, और आप बच्चों से जुड़कर उन्हें क्या चीज बताते हैं, उनको कितना सुनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
1: बिल्कुल. और रतन, मुझे लगता है महेंद्र जी ने जो बात कही कि जब पेरेंट्स बच्चों से दूर होते हैं, या एक ऐसा पड़ाव आता है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, तो भी बच्चों को जब आप पहले से ट्रेन नहीं करेंगे, उन्हें चुनौतियों का सामना करना सिखाएंगे नहीं, तो बच्चे जब बाहर पढ़ने जाएंगे तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना. तो बहुत जरूरी है कि शुरुआत से ही उनको मजबूत बनाया जाए. और देखिए छविराम सिंह जी का भी मेल आया है. छविराम सिंह राजपूत जिला फरुखाबाद से हमें मेल कर रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता है. कहते हैं कि आजकल माता पिता को अपने बच्चों से बात करने की फुर्सत नहीं है, ना ही कुछ बताने की, क्योंकि वो खुद

0: ही फोन में लगे रहते हैं, ऐसा ना करें और बच्चों को अपने मुताबिक चलाएं। बहुत कुछ उन्हें सिखाना माता पिता की जिम्मेदारी होती है। थैंक यू सो मच छविराम जी, बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। इतनी बिजी हो गई है ना लाइफ रतन कि पेरेंट्स को टाइम ही नहीं रहता कि वो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाई, हमारे आजकल के दौर के पेरेंट्स बच्चों को वो छोटी छोटी बातें खुद बैठ के सिखाए। कहते हैं कि अरे जब टाइम आएगा तो सीख लेंगे वो लोग। इतने मतलब लापरवाह और मतलब बेफिक्र, लापरवाह नहीं बेफिक्र होते जा रहे
1: हो जाते हैं कभी कभी पेरेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चे ही रहेंगे चाहे जितने वो बड़े हो जाएं। इसीलिए
0: और कुछ चीजों को सिखाने का एक सही समय भी होता है,
1: बिल्कुल
0: राइट टाइम पर उनको अगर आपने वो बातें नहीं बताई हैं, नहीं सिखाई हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उनके सामने अगर उस तरह की कोई परेशानी आ गई तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे उसका सामना कर पाएंगे।
1: बिल्कुल सही। और इतनी सारी बातों के बीच में अब समय हो चुका है अंजू की एक हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लें और उसके बाद जब लौटेंगे तो एक प्यारा सा गीत भी आप तक पहुंचेगा। आप हमारे साथ ही लगातार जुड़े रहिए।
0: मंडे मॉर्निंग है, घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइएगा या हमें अपने साथ ही रखिएगा। ट्रैफिक अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे तो सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।

0: एक दिन आएगा कि चालान हो जाएगा, है ना. आग लगाने का जो इरादे होते हैं ना, बुलंद हौसले होते हैं, जो स्पीड होती है एकदम फायर वाली, वो थोड़ा सा शांत रखा करी जब आप सड़क पर हो तो.
1: जी हाँ दोस्तों, और जब सड़क की बात होती है तो ट्रैफिक रूल्स की भी बात होती है और ट्रैफिक की भी बात होती है. और इसी ट्रैफिक का ताज़ा तरीन अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर. चलिए करते हैं उनका स्वागत. सर आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग लखनऊ पर.
2: गुड मॉर्निंग. बहुत धन्यवाद सर. गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार. आज वर्तमान में सर पीक आवर्स का समय चल रहा है, तो शहर में यातायात सामान्य है सर. कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है और न ही कोई विशेष डायवर्जन है सर. और सर रास्तों पर जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस और नागरिक पुलिस मौजूद रहकर सुगमता से सर प्रतिबद्ध होकर सुगम यातायात का संचालन करा रही है सर. सर जैसे कि अगर श्रोता लोग जो हमें सुन रहे हैं, आपको यदि ट्रैफिक में कहीं भी जो है समस्या उत्पन्न होती है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई अवरोध है, तो आप एज ए ट्रैफिक वॉलेंटियर हमें सूचित कर सकते हैं. और इसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर सदैव आपके माध्यम से हम शेयर करते हैं, 94-54-51-55. इस पर आप हमें जो है अपना सुझाव दे सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं, हम बेहतर जो है यातायात के लिए प्रतिबद्ध हैं सर.
1: बिल्कुल. और सर चूंकि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि कभी मौसम बदल जाता है, कड़ी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, और ऐसी स्थिति में आज आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे खास बात या खास टिप क्या देना चाहेंगे, प्लीज बताइए.
2: बिल्कुल सर, दो तरीके का मौसम हो गया है इस समय का, कभी गर्मी का तो जैसे गर्मी और बरसात का, तो इसमें प्री राइड एक बहुत जरूरी होता है कि जब भी वाहन आप चला रहे हो, वाहन चलाने जा रहे हो, तो उससे पहले जो जितने सुरक्षात्मक उपाय हैं उसको चेक कर लीजिए. दूसरा, जब बारिश का समय रहता है तो सड़कों पर जो है कहीं कहीं जल भराव रहता है, तो बहुत से हमारे साथी होते हैं कि जो उसी जल के अंदर से ही कोशिश करते हैं कि निकल जाए. ऐसा आप कतई ना करें, हो सकता है वहाँ गड्ढा हो गया हो सकता है ऐसा कोई वो जिसको हम आप देख नहीं पा रहे हैं धुंधले जल की वजह से. इसलिए जो है अवॉइड करें आप ऐसे रास्तों को, ताकि जो है आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. तो ये दो चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी, और साथ ही यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो लखनऊ.
1: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर.
0: थैंक यू सो मच सर.
2: धन्यवाद.
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ TSI विकास सिंह सर. जो भी हिदायतें ये देते हैं आप अगर उन्हें ध्यान से सुने, फॉलो करें, तो यकीनन आपका सफर सुरक्षित होगा. और बच्चों को भी, आज हम लोग ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे की बात कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आप सुरक्षित कैसे रहें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस भी आप बनाएं, बिल्ड करें. और उसके लिए उनको थोड़ा सा तो छोड़ना ही पड़ेगा, पूरी तरह से जो कहते हैं ना कि ओवर प्रोटेक्टिव होकर आप उन्हें, उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते. लेकिन जब बात आती है ट्रैफिक रूल्स की या किसी भी तरह के वाहन को चलाने की, तो हमारे जो पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव वाला जो एक रवैया होता है वो कहाँ चला जाता है. 14-15 साल के बच्चों को टू व्हीलर दे दिया जाता है, 16-17 साल के बच्चों को फोर व्हीलर थमा दिया जाता है, और वो निकलते हैं बिना ट्रैफिक रूल्स को जाने समझे और बिल्कुल बिंदास ओवर कॉन्फिडेंस में वो गाड़ी चलाते हैं, और उसके बाद जो नतीजा होता है वो तो खैर दुनिया जानती है.
1: तो ऐसे पेरेंट्स के लिए बस यही है कि भैया अपने आपको आप थोड़ा सा संभाल के रखिए, ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित देख सकें. और ये जरूरी है कि आप जब अपने बच्चे को कोई भी वाहन देते हैं तो जरूरी ये हो जाता है कि आप उसके साथ रहें
0: और सेफ्टी
1: मेजरमेंट्स जितने भी हैं उनका आप पालन करें. और होता यह कि अक्सर जैसे कि अंजू ने कहा कि आप अपने बच्चों को दे देते हैं और आप बेफिक्र हो जाते हैं, खुश होते हैं कि हमारा बच्चा देखिए ड्राइव कर रहा है, कितनी अच्छी ड्राइव करता है, और ऐसी स्थिति में अभी से ड्राइविंग आ गई, इसको मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है. और टैलेंटेड होने के इस भ्रम में होता क्या, आपका बच्चा जाता है कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें अगले को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ में आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है.
0: बिल्कुल. तो बच्चों को सब कुछ दीजिए, पूरी लग्जरी दीजिए, सारा सुख सुविधा आराम दीजिए. आप बच्चों के लिए ही तो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरी है उनकी सुरक्षा. और साथ साथ जब ट्रैफिक की

बताती है, या कोई भी वाहन आप बच्चों को देते हैं उसको, तो सिर्फ आपका बच्चा नहीं, उसके हवाले आप बहुत सारे लोगों की जान भी कर देते हैं ना, खतरे में डालते हैं, तो ऐसा ना करें। फिलहाल एक ऐसा गीत आप तक पहुँचा रही हूँ जो एक जिस आवाज़ में है, उस आवाज़ को हमने उन्हें कल रात खो दिया। सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही, उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछला प्रोग्राम सदाबहार गीत उन्हीं को समर्पित किया हमने, और उनका ये गीत सुनाते हैं और उसके बाद उनके विषय में कुछ और बातें।

0: श्रोता सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही। कल रात उनके निधन का जब समाचार मिला ना, तो पूरा संगीत जगत शोक में डूब गया। और पिछला कार्यक्रम हमने उनके गाए हुए गीतों के साथ सदाबहार गीत आप तक पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे गीत हैं रतन, जब बात की जाती है सुमन जी की आवाज़ की तो लता जी से उनकी तुलना की जाती रही। और हमारे बहुत सारे संगीत प्रेमी श्रोता कई बार उनकी आवाज़ से कंफ्यूज भी होते हैं और उन्हें लगता है कि गीत तो लता जी ने गाया है, लेकिन जब हम देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं, ये गीत तो सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है। और अक्सर ऐसा होता रहा उनके करियर में भी, हमेशा उनकी लता जी से तुलना की जाती रही और शायद इसीलिए वो हमें ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आ पाई। लेकिन जो उनकी कोमलता थी, उनकी मिठास थी उनकी आवाज़ में, वो बेहद सुकून देने वाली थी। और उन्होंने बहुत सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। कल रात यानी 31 मई 2026 की रात मुंबई में 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। और उनके जो गाए हुए गीत हैं, जैसे कि अभी एक गीत अभी आपने सुना, इसके अलावा बहना ने भाई की कलाई पे, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, और भी बहुत सारे गाने जो पिछले प्रोग्राम में हमने सुनवाए, साथ ही साथ आज रजनीगंधा में भी एक घंटे का सफ़र उन्हीं पर श्रद्धांजलि स्वरूप आधारित रहेगा, जिसे आरजे ऋषा श्रीवास्तव लेकर आएंगी। तो आप उनके गाए हुए गीतों को सुनेंगे तब आपको महसूस होगा कि सुमन जी की आवाज़ में जितना सुकून था, उनकी ज़िंदगी में जितनी सादगी थी, शायद ही किसी कलाकार में हो।
1: और दोस्तों, सुमन जी वाकई में एक ऐसी गायिका, एक ऐसा व्यक्तित्व जो शायद कभी दोबारा इस दुनिया में ना देखने को मिले, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व दोबारा होते नहीं, लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ के माध्यम से वो हमारे बीच हमेशा रहेंगी। कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती दोस्तों, महसूस की जाती हैं। सुमन जी का स्वर भी ऐसा ही था, नरम, मधुर और दिल को छू लेने वाला।
0: बिल्कुल।
1: आज वो आवाज़ खामोश हो गई, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे दिल में गूंजते रहेंगे।
0: और इसी तरह जब कला जगत की बात होती है ना रतन, तो कहते हैं ना कि कलाकार कभी नहीं मरते, उनकी कला के जरिए वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं। और एक और बहुत ही खूबसूरत

0: कलाकारा जिनकी आज है जयंती, उनके विषय में भी हम अपने श्रोताओं तक जरूर बात पहुंचाना चाहेंगे। सुमन जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं नरगिस जी को।
1: जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 1 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। उनका असली नाम फातिमा रशीद था। उन्होंने 1940 से 1960 के दशक तक हिंदी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। मदर इंडिया जो कि 1957 में आई, उनकी भूमिका ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्हें दिलाई और यह फिल्म ऑस्कर के लिए नामित भी हुई थी। नरगिस ने अभिनेता सुनील दत्त से विवाह किया और उनके बेटे संजय दत्त भी एक प्रसिद्ध अभिनेता बने। फिल्मों से संन्यास के बाद वे समाज सेवा में सक्रिय रहीं और राजनीति में भी उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। उनका ये जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक हमेशा रहेगा और आज उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। और ऐसी अदाकारा शायद दोबारा नहीं मिलेंगी क्योंकि उनके इस अभिनय से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं।
0: बिल्कुल, आज उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके द्वारा रचे गए स्वर्णम सिनेमाई इतिहास को हम नमन करते हैं और आज रजनीगंधा में 1 घंटे का सफर उन पर आधारित रहेगा श्रद्धांजलि स्वरूप, जिसे एक बार फिर वही आवाज ऋचा लेकर आएंगे आपके लिए। तो सुनते रहिएगा, जरूर सुनना ना भूलेगा आज का रजनीगंधा नरगिस जी और सुमन जी पर आधारित।

टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: ये बहुत बेसुरा गाते हैं, लेकिन गाते दिल से, समझ लेना, है ना, दिल से विश कर रहे हैं आपको.
1: हैप्पी बर्थडे टू यू,
0: बहुत सारी मुबारकबाद, हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू ऑल जो लिसनर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, जिसका भी आज है हैप्पी वाला बर्थडे, उनको जरूर फोन करके बताइएगा कि एफएम रेनबो पर आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है.
1: क्या बात है, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां. ये दिन
0: डबल मुबारकबाद
1: जी, ये दिन ये पल बार बार आपके जीवन में आते रहे, बस हम यही दुआ करते हैं. और कोशिश कीजिए कि आज अपने जन्मदिन पर और अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर कुछ ऐसा आप खास करें जिससे किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आए. देखिए आपका दिन, आपका ये बर्थडे कितना खूबसूरत बन जाता है, कितना यादगार बन जाता है, करके देखिए बहुत अच्छा लगता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे नाम हैं जो आप तक हम पहुंचाते हैं, हमेशा बताते हैं कि अपना बर्थडे आप किस किस के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी से कुछ नामों का, कुछ प्रसिद्ध हस्तियों का जिक्र करना चाहेंगे. सबसे पहले नमन करते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर जी को. 1 जून 1842 को उनका जन्म हुआ था, आज उनकी जयंती है. वे टैगोर जी के भाई थे और भारत के पहले ICS अधिकारी थे. सामाजिक सुधारों के समर्थक रहे, उन्हें उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा.
1: जी हाँ दोस्तों, और अगर अगली बात करें तो अगले जो हमारे आज के जो लिस्ट में नाम है, बहुत बड़े क्रिकेटर, और उनके विषय में हम बात करने वाले हैं. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिनेश कार्तिक जी की. आज ही के दिन 1985 में इनका जन्म हुआ. भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं और इन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सन 2004 से 2022 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया. वे 2007 में T20 विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय टीमों का हिस्सा भी रहे, और उन्हें 2010 एशिया कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी प्राप्त किया.
0: बिल्कुल, तो उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ लक्ष्मी अग्रवाल, आप सभी जानते हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर है. उनके साहस और संघर्ष ने एक नई मिसाल कायम की है महिला अधिकारों और एसिड अटैक पीड़ितों की आवाज बनी. 1990 में उनका जन्म हुआ था. बहुत सारी शुभकामनाएं उन्हें भी. और एक और बहुत बड़ा नाम है अगर हम बॉलीवुड की बात करें,
1: आर माधवन. जी हाँ, रंगनाथ माधवन. जी हाँ, भारतीय सिनेमा के एक दिग्गज और पैन इंडिया अभिनेता हैं. 1 जून यानी कि आज के दिन 1970 में इनका जन्म हुआ. और माधवन ने रहना है तेरे दिल में, थ्री इडियट्स, तनु, विट्स, मनु और रॉकेट्री जैसी शानदार फिल्मों से हिंदी सिनेमा में अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है.
0: क्या बात है, बहुत दमदार एक्टिंग की है और धुरंधर में तो उनकी एक्टिंग के जलवे सभी देख रहे हैं ना.
1: और दोस्तों उन्हें कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है.
0: बिल्कुल, तो चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं आर माधवन को भी, दिनेश कार्तिक को भी, लक्ष्मी अग्रवाल जी को भी, और नरगिस जी को हमने याद किया आज उनकी जयंती पर इससे पहले. और अब जो गीत आप तक पहुंच रहा है ये बहुत कुछ कहता है. जब हम म्यूजिक की बात करते हैं रतन, तो संगीत हमें बहुत सिखाता है, पता है कि नहीं पता है आपको.
1: बिल्कुल.
0: और इस म्यूजिक को कंपोज करने वाले जो संगीतकार हैं उनका भी आज है जन्मदिन. 1 जून 1964 को जन्म हुआ था इस्माइल दरबार जी का.
1: जी हाँ, गुजरात के सूरत में ये जन्मे और संगीत की दुनिया में आने से पहले उन्होंने करीब एक दशक तक लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और ए आर रहमान सहित कई दिग्गज संगीतकारों के साथ वायलिन वादक के रूप में काम किया. उन्हें निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम से संगीतकार के तौर पर बड़ी पहचान मिली, और इस फिल्म के शानदार संगीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला. इसके बाद उन्होंने फिल्म देवदास जो कि 2002 में रिलीज हुई और बाज द बर्ड इन डेंजर में भी बेहतरीन संगीत दिया.
0: तो चलिए उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये देवदास का सुपर डुपर हिट ट्रैक आप तक पहुंचाते हैं. वापस आते हैं तो और भी बहुत कुछ है हमारे पास, सुनते रहिए एफएम रेनबो.

0: भैया मन तो हमारा भी ढूंढने लग जाता है जब बादल दिखने लग जाते हैं, है ना, और फिर मन फिर उस तरफ ढूंढने लग जाता है जब थोड़ी देर में धूप निकलने लग जाती है, मतलब इधर उधर डोलता रहता है,
1: मन मचलता रहता है
0: क्योंकि मौसम का भी ऐसे ही हाल है, कब किधर मचल जाए कब किधर डोल जाए कुछ पता नहीं होता है।
1: और दोस्तों इसी मौसम की हलचल और इसी इसकी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद दानिश, मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग लखनऊ पर।
2: जी गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर, क्या रहने वाले हैं मौसम का मिजाज हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी मौसम की बात करें तो जैसा कि आज धूप छांव वाला खेल जारी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा छिटपुट बरसात भी कुछ कुछ जगह लखनऊ में भी हुआ है, आसपास जिलों में भी हुआ है, तो इस सिलसिला आज ऐसे थोड़ा मौसम खुशनुमा रहेगा लेकिन बीच में हल्की धूप निकलेगी और बीच में दो चार बूंद बारिश की भी संभावना है।
0: अच्छा।
2: तो कुल मिला के कहे तो आज और कल इसी तरीके से मौसम रहने की संभावना है, बाकी परसों से धीरे धीरे तापमान में इजाफा होगा, इवन कल ही से हल्का हल्का इजाफा होना शुरू हो जाएगा, तो फिलहाल आने वाले दिनों में दो तीन दिन फिर गर्मी का असर रहेगा, लेकिन जैसा कि एक चार तारीख को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फिर उसके बाद भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो सकता है, तो कुल मिला के कहे तो यहाँ से उतार चढ़ाव वाला मौसम अभी बरकरार रहेगा।
0: अच्छा, तो किसी तरह की तेज आंधी या उस तरह के लोगों श्रोताओं को अलर्ट रहने की आवश्यकता तो नहीं है अभी आज और कल में?
2: आज हाँ, आज और कल थोड़ा हल्का सा, जैसे जब ये सिस्टम आते हैं तो उसमें थोड़ा तेज हवाओं का चलन हो सकता है और सिस्टम जब स्ट्रांग होते हैं थोड़ा बिजली गिरने की भी संभावना होता है, बस यही दो चीज से थोड़ा हमको बचाव रखने की आवश्यकता है।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, और हमारे श्रोताओं को इंतजार भी रहता है कि दानिश सर जब बताएंगे तो समझ लीजिए कि हमें सतर्क रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों दानिश सर ने तो बता दिया कि थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, दिन भर में बीच बीच में थोड़ा सा बारिश और धूप छांव का मौसम रहेगा, फिलहाल आप मौसम का इसी तरह से आनंद लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।
0: और आर माधवन का बर्थडे है तो भाई इस्माइल दरबार जी की कंपोजिशन तुमने सुनवा दी, अब उनका भी गाना सुनवा देते। मुझे तनु वेड्स मनु जो पहली वाली थी वो खासतौर पर बहुत ज्यादा पसंद आई थी, पता तो उसी का गाना सुनवा देती हूँ। वैसे रिटर्न भी बहुत अच्छी थी और उनकी एक्टिंग तो हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन फिलहाल आर माधवन जी के बर्थडे पर उनका ये ट्रैक और उनको हैप्पी बर्थडे। और आप सब भी बने रहिए हमारे साथ, जो आपने ईमेल्स किए हैं उनकी बारी बस आने वाली है।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
5: शुरुआत तो सुबह 6 बजे से ही हो गई थी, और बहुत दिनों बाद आज हम सुबह सुबह आए थे, और बहुत दिनों बाद हम 10 बजे फ्री होके जाने वाले हैं, तो अच्छा लग रहा है।
6: ऐसी फीलिंग आ रही है,
5: बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, और छुट्टी पे जा रहे हैं ना,
6: क्या बात,
5: इसलिए और अच्छा लग रहा है,
6: और अच्छा लग रहा है।
5: वैसे हमारे लिस्टर समय मिस करने वाले, हमें याद है, मतलब आपको जिम्मेदारी सौंप के जा रहे हैं, आप सबको
6: अच्छे से एंटरटेन करते रहे, वाकई में आपको मिस भी करेंगे और आपके लिस्टनर्स भी आपको जरूर मिस करने वाले हैं,
5: लेकिन जल्दी आ जाएंगे और धूम धड़ाके के साथ आएंगे। और वैसे भी ये जो धूम धड़ाका है, जो इंफरटेनमेंट का सिलसिला है, एफएम रेनबो पर लगातार जारी रहता,
6: बिल्कुल जारी रहेगा, हमेशा जारी रहेगा। और हमारे पास संजू मेल बहुत सारी आ चुकी,
5: बिल्कुल, क्योंकि हमारे श्रोताओं का पार्टिसिपेशन हर प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ, इस पे भाई आज का मुद्दा जो वर्ल्ड ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स और इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के तौर पर हमने आपको दिया, दोनों खास दिवस को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों की सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उनकी अच्छी परवरिश के लिए उनको कॉन्फिडेंट बनाना भी बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से युक्त बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या जिम्मेदारियां और क्या तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे ईमेल्स हैं, जल्दी से हम सब मेल्स पढ़ते हैं।
6: देखिए हमारे पास जो अगली मेल आई है वो है निधि चौरसिया जी की, कह रही है शादी से पहले मैं एफएम को डेली सुनती थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और बीच बीच में कुछ टाइम के लिए सुनना भी बंद कर दिया था।
5: नहीं, शादी के बाद पूरे ससुराल को सुनाया करिए, सब सुनाया करिए, हम ऐड कर देते हैं।

0: नहीं, आप सब बैलेंस हो गया है, सबको उन्होंने सिखा दिया रेनबो सुनना,
1: और रेनबो
0: सुनना लगातार स्टार्ट हो गया, और एफएम मेरी लाइफ में बेस्ट मोटिवेशन है। और कह रही अभी मेरी लाइफ में वो पल नहीं आया है कि हम बच्चों के लिए बच्चों को सिखाएं कि सही और गलत क्या है, बट जो भी हमारे आसपास के बच्चे होते हैं उन्हें मैं बस एक बात हमेशा सिखाती हूँ कि लाइफ में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए साहस को कभी मत खोना।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात।
0: बालागंज लखनऊ से ये हमारे साथ जुड़ी,
1: थैंक यू सो मच निधि। हसीना हसीना जी का मेल आया है, श्रोता हैं ये नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक शबनम शहनाज, इन्होंने प्रोग्राम की प्रशंसा की है, मुद्दे पर कोई बात नहीं की। आकाश कुमार यानी आंचल वर्मा का मेल आया, हरदोई से गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने हम दोनों को, और पुष्पांजलि और सदाबहार गीत प्रोग्राम की तारीफ की, मुद्दे पर आपने भी कुछ नहीं कहा। एक मेल और मैं पढ़ूं दिलावर जी का, कि इन्होंने भी मुद्दे पर आज कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की बधाइयां भी दी हैं। और ये श्रोता है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू जी, थैंक यू सो मच।
0: और वकील अहमद साहब कह रहे हैं मुद्दा अच्छा है, घर का पता और मोबाइल नंबर याद होना चाहिए, किसी अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए, अनजान आदमी से कोई चीज भी खाना नहीं चाहिए। वकील अहमद का ये कहना हथूरी जिला सीतापुर से हमें मेल इन्होंने की है।
1: बिल्कुल, तो आप अपने आसपास के बच्चों को जरूर ये बातें सिखाते होंगे। जगमोहन मिश्रा जी, बहुत दिनों बाद आपका ईमेल दिखा, थैंक यू सो मच, नमस्कार आपको, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे, हम सब तो अच्छे हैं। कहते हैं कि हमारे बच्चे नौनिहाल समय से ही हिसाब से बदल समय के हिसाब से बदल गए हैं बच्चे और नौनिहाल, उनको आंख खोलते ही टीवी मिलता है, मोबाइल मिलता है, नए नए डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, उनकी मानसिकता भी उसी तरह ढल जाती है, जो उनके बौद्धिक विकास व फिजिकल फिटनेस को के लिए घातक हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आगे लिखते हैं, अभी कुछ वर्ष पहले हमारी एक ग्रैंड डॉटर राधू जी इस समय गर्मियों की छुट्टियों में जमशेदपुर से लखनऊ आई हुई है, 6 साल की हो गई है, क्लास फर्स्ट में है। मैंने उससे समझाया, राधू एक समय में एक ही काम करते, मेरा मकसद था कि प्रायः खाना और मोबाइल एक साथ यूज करती थी वो ना करे, लेकिन वो मान भी गई, फॉलो भी करने लगी। कल आईपीएल का फाइनल चल रहा था, हम लोग देख रहे थे, उसी समय खाना आ गया टेबल पर, हम लोग खाना खा रहे थे, उसे मौका मिल गया, टोका, नानू ये क्या हो रहा है, आपने मुझे समझाया था और वही काम आप कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, आप जब खुद जो चीजें करते हैं वो बच्चे फॉलो करते हैं, और अगर जिन काम को करने से बच्चों को मना कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप में वो परिवर्तन लाइए, है ना। ब्रेन और आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, नींद भी कम हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को सिखानी समझानी जरूरी है। थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। पिंकी बारी जी की मेल हम तक पहुंची है, कह रही है पुष्पांजलि और सदाबहार गीत इन्हें बहुत पसंद आया। आज सच में मैम दिल से चाहती थी कि अंजू मैम आए और आप आ गई, और साथ में भी चाहती थी कि अंजू मैम के साथ रतन सर आए तो उनका साथ भी हो गया,
1: और कुछ मांगा हो तो वो भी मिल जाता
0: है मिल जाता। मेरी टॉपिक पे करेंगी, मेरी बिटिया 5 साल की अभी कंप्लीट होने वाली है, और मैं उसकी हर एक्टिविटीज पर ध्यान रखती हूँ और नजर रखती हूँ कि, और निगरानी नहीं, नजर रखती हूँ लेकिन निगरानी नहीं, सही क्या है गलत क्या है सब समझाती हूँ, बट बच्चे कहाँ सुनते हैं, और जब वो नहीं सुनती मेरा कहना तो मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, और क्योंकि अगर मैं बार बार उसको हर चीज़ के लिए टोकूंगी तो मुझे लगता है कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देगी। मेरी नज़र में बच्चों की सबसे बड़ी सुरक्षा है उनका भरोसा, मम्मी पापा उनकी हर बात को सुनेंगे और समझेंगे।
1: आप एक अच्छी माँ बन हैं, और आपकी बच्ची भी बहुत सुरक्षित रहे, हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, ऐसी उम्मीद करते हैं। ब्रजेश जी भी हमें मेल कर रहे हैं इटावा कैसरगंज बहराइच से, और आपके मामा जी को हमारी सबकी तरफ से श्रद्धांजलि, और इन्होंने मुद्दे पर कहा है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, डर के माहौल में ना जीने दें, हर परिस्थिति का सामना कर सके, ऐसे मजबूत बनाइए अपने बच्चों को।
0: जी सिमरन सुरांजलि जी का मेल हम तक पहुंचा है, और कह रही हैं अंजू मैम आपको मैं याद करती हूं, आप से पहचान जाती हैं कि ये, और आप आ जाती हैं, क्या बात है, ये दिल के तार जुड़े हुए हैं बहुत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यहां से वहां तक।
0: बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, ये टॉपिक पे लिख रही है, बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, अपने काम खुद करने देने चाहिए, आत्मनिर्भर बनने देना चाहिए, ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े उनमें, और आगे चलकर फैसले लेने के लिए क्षमता आए उनके अंदर, ऐसा इनका कहना है।
1: बिल्कुल, और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी से मेल्स को पढ़ते हैं। कि मोनू जी ने कहा बच्चों को पढ़ाने में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, पेरेंट्स बच्चों को केवल के शिक्षक नहीं होते बल्कि उनके आत्मविश्वास और भावनात्मक विकास के मुख्य आधार भी होते हैं, और सब कुछ उनकी रुचियों का स्वभाव का खास ध्यान रखना चाहिए, और लेकिन देखरेख के साथ साथ निगरानी भी बहुत जरूरी है। कोई शिकायत लेकर आए तो उस पर ध्यान देना, कि शिकायत को इग्नोर करें, बच्चों को आज़ादी दें लेकिन सीमा में रह के। बहुत सही बात आपने भी कही है, हैदरगढ़ में इस समय सुन रहे हैं। इसके अलावा और किसका मेल है?
0: वारिस अली जी अर्ज करते हैं, कहां गए वो दिन जब

0: वक्त ढहल जाता था, छोटी छोटी खुशियों में दिन गुजर जाता था। आप दोनों का जीएमएस शो करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया और बड़ी शिद्दत से सुन रहा हूँ। संजय नगर अशबाग लखनऊ से इन्होंने हम तक मेल पहुंचाई लेकिन मुद्दे पर कुछ नहीं लिखा।
1: अरुण कुमार जी कुशवाहा घमोइया हरदोई से इन्होंने गीतों की प्रशंसा की है, धन्यवाद आपको भी। गुलफशा सिद्दीकी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है और संडीला से हमें सुन रही है, एफएम रेनबो लगातार सुनती रहती है। और इस प्रोग्राम में जो ट्रैफिक न्यूज देते हैं विकास जी की बात अच्छी लगती है इनको। थैंक यू सो मच।
0: अमित कुमार, संजू देवी, ग्राम पहाड़पुर, पोस्ट बिठौरा, जिला सीतापुर से ये। अंजू मैम, रतन सर, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। ओके, 3 जून को मेरे बेटे दिव्यांश का गया वहाँ जन्मदिन। ओके, जन्मदिन है,
1: प्रोग्राम
0: बहुत अच्छा लग रहा है। अब कब आओगी प्लीज आप बता के जाओ।
1: आपके सुपुत्र को सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। आशा पांडे जी का भी मेल पढ़ते हैं, दोनों को आपने राधे राधे बोला है, प्रोग्राम की तारीफ की है, थैंक यू सो मच आपका।
0: राम मोहन गुप्ता जी की भी पंक्तियां हम तक पहुंची हैं और ये लिखते हैं, है बहुत जरूरी रखना बच्चों का पूरा ध्यान, क्या अच्छा है बुरा, जरूरी गैर जरूरी हो भान, यही नहीं आत्मविश्वास संग चलना बढ़ना भी सिखाना है जरूरी, गुड टच बैड टच के भाव भी, बात बात में रोकने टोकने के बजाय करने देना, कभी कभी होता है जरूरी कुंद हो जाते हैं वरना, स्वयं निर्णय लेने संग हाँ और ना कहने की बात, सिखाना है जरूरी सुरक्षा संरक्षा संस्कार साथ, लाड़ प्यार अधिकार देना, अनावश्यक दबाव ना, नजर रखना जरूरी आभासी गतिविधियों पर हाँ, संगत बोलचाल कार्य व्यवहार सिखाना जरूरी, सबसे बड़ी बात बगैर डरे मन की बात कहना भी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने समेट दी, एक तरह से पूरा सार आपने भेजा है। मैनुद्दीन जी कोडरी खैराबाद से सुन रहे हैं, नमस्कार, बुलंद गाने बजा रहे, थैंक यू। मुनेश कुमार जी ने कहा आज के लिए सिर्फ गुड मॉर्निंग हरहुआ लखीमपुर खीरी से, ऐसा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कुछ तो लिखना चाहिए था आपको। ब्रजेश जी का भी मेल हम पढ़ चुके हैं, सीमा गुप्ता जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा, मैं अपनी बेटी को खुद से ना बाइक बुक करने के लिए बोलती हूँ, लोकेशन शेयर करने को बोलती हूँ, अवेयर रहने की सलाह देती हूँ, बहुत अच्छा करती हैं आप। और शैलेश जी यानी नीलू शर्मा ने भी नमस्कार भेजा, थैंक यू सो मच। आप सबके मेल हमने शामिल किए, बस इतना कहेंगे कि सुरक्षा जरूरी है लेकिन बच्चों को जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाइए और उन्हें जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहिए, और अगर आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए अकेले जाने की जो कहते हैं ना छूट नहीं देंगे तो वो आगे जाएंगे कैसे, तो बस सब कुछ आप अपनी निगरानी में नजर रखिए, बनाए रखिए, और जो कहते हैं ना कि बच्चों को सेफ रहने के बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स घर के अंदर हों चाहे घर के बाहर हों, वो बचपन से ही शुरुआत से ही सिखाएं, उनकी आदत में डालें।
0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, और वाकई में बच्चों को आप सब कुछ सिखाएं और उनको पूरी छूट भी दें लेकिन प्रैक्टिकली उनको एक ऐसा कॉन्फिडेंस दीजिए ताकि वो जो चीज सीखें वो उनकी लाइफ में आगे तक उनके काम आए, बहुत जरूरी है बच्चों का ख्याल रखना। अगले कुछ घंटे आपके साथ मैं रहने वाला हूँ, फिलहाल अंजू आपसे फाइनली टाटा बाय कहने वाली है।
1: बिल्कुल, तो जाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, मतलब छुट्टी उट्टी मना के घूम फिर के वापस आएंगे तो आपके साथ बहुत सारा अच्छा टाइम हम स्पेंड करने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा और लगातार बने रहिएगा 100.7 FM रेनबो के साथ। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, नमस्कार। अंजू की ओर से आज बस इतना ही, बाय बाय।

नमस्कार, 10 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस में ने

पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आकाश गुप्ता का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। कल उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। वे ऐसे वक्त में ये पद संभाल रहे हैं जब इंडियन मिलिट्री कई बड़े बदलावों से गुजर रही है। राजा सुब्रमणि देश के तीसरे सीडीएस बन रहे हैं। सुब्रमणि को पाकिस्तान और चीन से जुड़े रणनीतिक मामलों का जानकार माना जाता है। उन्हें भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के साथ ही सेंट्रल कमांड का भी अनुभव है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार की जिम्मेदारी भी वे संभाल चुके हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वे अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 12 वर्ष के अपने कार्यकाल में खोले गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए अनमोल उपहार साबित हो रहे हैं। अमरोहा जिले में कुल 194 आरोग्य मंदिरों पर 14 प्रकार की जांच और 84 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिससे ग्रामीणों को बेहतर इलाज मिल रहा है। अमरोहा के ग्रामीण इस सुविधा को लाइफ लाइन मान रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई जिलों में तूफान, बारिश, ओले गिरने और बिजली गिरने की घटनाओं के पीड़ितों के त्वरित सहायता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है सुपरहिट सॉन्ग्स।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: 10:05 समय, प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। अगले एक घंटे बहुत सारा म्यूजिक सिर्फ आपके साथ, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए अपने इस प्यारे से शो के साथ, सुपर हिट सॉन्ग के साथ। तो बस सिलसिला प्रारंभ करते हैं आपके साथ हम और मिलकर। तो चलिए इस गीत के साथ आज के शो का करते हैं आगाज़।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जी हाँ दोस्तों, 10:31 समय, साथ में 54, 55, 56, 57 सेकंड्स प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स। और आज इस प्रोग्राम में आपके साथ आपका अपना दोस्त

दोस्तों 10:54 का समय और ये देखिए 10:55 का समय हो चुका है और ये समय इशारा कर रहा है कि सुपरहिट सॉन्ग को अब हम यहीं पर वाइंड अप करें। आशा करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा और आप हमें मेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं इस अंतिम गीत के साथ। बस अब हमारे साथ यूं जुड़े रहिए और अगले प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में भी आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, जिसमें आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं फोन कॉल्स के माध्यम से और मेल आईडी के माध्यम से। बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, प्रातः की 11 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स संगठन उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा जनसेवा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, क्षमता विस्तार, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और मानव संसाधन विकास से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स केवल पुलिस बल के सहायक के रूप में ही नहीं बल्कि आपदा राहत, भीड़ प्रबंधन, चुनावी व्यवस्थाओं, सामुदायिक सेवा तथा जन जागरूकता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज से पेट्रोल, डीजल और ATF पर अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके ₹1.50 प्रति लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स को घटाकर ₹13.50 प्रति लीटर और ATF पर कर को घटाकर ₹9.50 प्रति लीटर किया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शून्य होगा। साथ ही घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक विकास की बदलती तस्वीर को सामने रखा है। वर्ष 2015-16 और 2023-24 के बीच के आंकड़ों की तुलना बताती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा

महिला सशक्तिकरण, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के व्यापक क्रियान्वयन, महिला कल्याण कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास का असर अब राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षणों में भी दिखाई देने लगा है। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार ग्रहण कर लिया है। कल उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। वे ऐसे वक्त में ये पद संभाल रहे हैं जब इंडियन मिलिट्री कई बड़े बदलावों से गुजर रही है। राजा सुब्रमणि देश के तीसरे CDS बन रहे हैं। सुब्रमणि को पाकिस्तान और चीन से जुड़े राजनीतिक मामलों का जानकार माना जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह अपने सेवा प्रदाताओं के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। इस बुलेटिन के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM Rainbow।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

ग्यारह बजकर पांच मिनट का समय और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ चुका है आज आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, जो कहता है आपके दिल की बात। और दोस्तों, अपने दिल की बात आप कहने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन कॉल्स के माध्यम से, मेल आईडी के माध्यम से, और अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। और आपको हमारी मेल आईडी तो जरूर ही पता होगी, fmakashwani@gmail.com। इस मेल आईडी के माध्यम से आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं, और वहीं अगर आप फोन कॉल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे दो मैजिकल नंबर्स आपके लिए इस वक्त ओपन हो चुके हैं। तो पहला नंबर है 0522-2982-377 और दूसरा नंबर है 0522-2238-45। इन दो नंबर्स के माध्यम से आज आप इस शो में हमारे साथ जुड़े, और जो भी आपका संदेश है वो आप हमें पहुंचाइए, हम आपके संदेश को अपने लिसनर्स तक जरूर जरूर पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर आप प्रोग्राम्स के बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं या कुछ और आप कहना चाहते हैं तो जरूर वो बातें भी हम तक आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की। बस आपका ये साथ हमारे साथ ही जुड़ा रहे, हम यही दुआ करते हैं, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दोस्तों 11:12 का समय, ये भी कभी

0: दोस्तों 11:12 का समय, ये भी कभी कभी समय बड़ा अच्छा लगता है, 11:12 का समय। तो आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम में हैं जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे, और हमारे पास लगातार संदेश आ रहे हैं। देखते हैं आज हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है?
1: सर मैं बात कर रही हूँ वासनी रावत, ग्रामा पोस्ट पबना, तहसील सभीपुर, जिला उन्नाव, और अभी प्रोग्राम चंडीगढ़ से सुन रही हूँ।
0: क्या बात है रोशनी जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर आपका। और आपको, आप तो रेनबो बहुत अच्छे से सुनती हैं क्योंकि आपकी मेल्स लगातार हमारे पास आती रहती हैं।
1: हाँ जी सर, लगातार,
0: और आपकी मेल पढ़ी भी जाती हैं। तो ये बताइए आज क्या कहना चाहती हैं आप?
1: सर आज मैं कहना ये चाहती हूँ कि प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं सुबह से आप।
0: थैंक यू सो मच जी।
1: सर संदेश मेरा ये है, जैसे कि बाइक जो लोग चलाते हैं ना, तो जहाँ तिराहा होता है या गांव के आसपास होते हैं, तो बहुत जोरी, बहुत तेजी से ही लेके चलते हैं बाइक, और अचानक से कोई बच्चा आ जाए या फिर डॉग्स होते हैं तो उनका ना एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि जहाँ पर भी गली हो या तिराहा हो तो वहाँ स्लो चलाए और हॉर्न दे के ही निकले।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और वाकई में कभी कभी ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर हमें मोड़ पे पता ही नहीं चलता कि आगे क्या चीज़ है या क्या आ रहा है क्या जा रहा है, और हम गाड़ी बहुत स्पीड से आगे बढ़ा देते हैं, तो उस स्थिति में बहुत बुरे एक्सीडेंट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच रोशनी जी, इतना अच्छा संदेश हमारे दोस्तों तक पहुँचाने के लिए हमने कॉल किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
1: हाँ जी सर, मैं कुछ नाम ले लूँ?
0: बिल्कुल लीजिए।
1: आपको सर बबीता राव जी सुन रहे हैं गोसाईगंज लखनऊ से, और रूपपुर चंदेला से सुन रहे हैं नीलू शर्मा, और संडीला से सुन रहे हैं हमारी गुलक्षा दीदी।
0: ओके, चलिए आपके जो आपने नाम लिए उन तक भी पहुंच गए, उनकी भी मेल्स हमारे पास जरूर पहुंचती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू सर।
0: तो दोस्तों रोशनी जी ने तो अपनी बात हम तक पहुंचा दी है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो,
2: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मुश्ताक अली, जिला बहरज।
0: मुश्ताक अली
2: जी,
0: जी मुश्ताक जी, क्या करते हैं आप?
2: खेती किसानी काम करते हैं, इधर मकई वकई कट गया है।
0: अच्छा,
2: उर्द लगाए हैं अभी, जो है धान के नर्सरी जो है लगावा जी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए एफएम रेनबो इस कामकाज के बीच में आप सुन लेते हैं?
2: जी हम खेत में रहते हैं, खेते में सुना करते हैं।
0: अच्छा, खेते में सुना करते हैं, क्या बात है, मतलब एफएम रेनबो आपका पूरा साथ निभाता है?
2: हाँ, मोबाइल से सुनी थे, मोबाइल से बात करी।
0: अच्छा, तो आज कोई संदेश देना चाहते हैं?
2: संदेश यही देना चाहते हैं कि आंधी पानी में जो है आंधी में पेड़ के नीचे ना खड़े हुए।
0: हाँ,
2: जान भी गिर सकती है, चोर खा सकते हैं आदमी।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और वाकई में ये एक बहुत गंभीर बात है कि आंधी और पानी में ऐसा होता है अक्सर कि लोग पानी से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और पता चला वही पेड़ उनके ऊपर गिर गया तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, और अक्सर ऐसा होता है। तो इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतना अच्छा संदेश हम तक पहुँचाए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कॉल जरूर मिलाइएगा।
2: मजदूर मंडल जवानों के लिए सवाल।
0: हाँ, वो हमारे जो हमारा जो लखनऊ वाला चैनल है उस पे हमारे चैनल पे आता है, आप उस पे भी
2: ये रेंगो वही चालू है, वही आकाशवाणी में।
0: जी जी जी जी जी जी।
2: अच्छा, और ये विजय भारती
0: सब यहीं से आता है, और उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, आप उसको भी सुन सकते हैं, और एफएम रेनबो जो आता है वो 100.7 पे आता है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे पास दोस्तों कॉल्स आ रही हैं और मेल के माध्यम से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनेश कुमार राज जी हमारे साथ जुड़े हैं गांव भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से, या इन्होंने हमें मेल किया, कार्यक्रम सुपरहिट सॉन्ग इन्हें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। संदेश आपके गीत हमारे में, ये कहते हैं कि सुनते सुनते हो गए हैं कई साल, हर कार्यक्रम बेमिसाल। ओके, एक से अच्छी बात वही जो सच का साथ देकर कही, दूसरों से दूसरों की ना करो बुराई, अपने अंदर भी कमियां झांको मेरे भाई, तीसरे किसी का तिरस्कार ना करो, अच्छा व्यवहार करो, चौथा चरित्र से करो, अच्छे रखो,

दूसरों के चरित्र से कुछ ज्ञान सीखो, पांचवें से पानी पीते रहो, साथ में पेड़ भी लगाते रहो, छह से छत पर सोते हुए रखो ध्यान, अगर नींद में चलने की बीमारी हो, सात से सत्य का साथ दो, हर भ्रष्टाचार को मात दो, आठ से ठाट करो मगर दूसरों के ठाट ना छीनो, नौ से किसी की निंदा ना करो, करो तो समाज की सेवा करो, दस से दसों दिशाओं में फैला दो एक ही बात, जुड़ जाए सभी एफएम रेडियो से, सभी बने रहें यूं ही साथ। इस मैसेज को रेडियो पर हमने आपके अनुसार पढ़ दिया है और बहुत अच्छा ये संदेश आपका हम तक पहुंचा है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और लगातार आपके इतने अच्छे मैसेज हम तक पहुंचते हैं, आप हमें दिल से इतना अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल विश्व तम्बाकू निषेध दिवस था, संदेश है कि बीड़ी तम्बाकू शराब कर देती जिंदगी खराब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। ये मैसेज है इंद्रपाल मिश्रा जी का महोली सीतापुर से, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वकील अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच कि आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है, हमें आपका संदेश बहुत अच्छे लगते हैं, मेल करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है और हमारे साथ जुड़े रहने का ये तरीका भी बहुत अच्छा लगता है। अनजान आदमी से कोई चीज़ ना खाए ना खिलाएं, मुसीबत में फंस सकते हैं, वकील अहमद का ऐसा कहना है। कटका हथूरी जिला सीतापुर से साहिब अंसारी, साजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ्सा सिद्दीकी, अहमद नवाब, सबका नाम आपने लिख दिया है, जितने भी हमारे ये रेगुलर लिसनर्स हैं सब एक साथ जुड़े हुए हैं। देखिए तो ये बात कितनी अच्छी है एफएम रेनबो में कि ये हमारे हमको तो आपके साथ जुड़ के रखता है और साथ में जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ कितने प्यार के साथ, कितने भाईचारे के साथ और कितनी अच्छी दोस्ती के साथ जुड़े रहते हैं और एक कितना अच्छा प्यारा सा संबंध बन गया है हमारे सारे लिसनर्स का एक दूसरे लिसनर्स के बीच में, ये एक अच्छी बहुत देखने को बात मिलती है एफएम रेनबो के साथ। तो थैंक यू सो मच, इसमें आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी ढेर सारी मेल्स के बाद चलिए सुन लेते हैं एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा ट्रैक, हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 11:24 का समय और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे और इस प्रोग्राम में मैं आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन जो कहता है आपके दिल की बात और आप भी अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं मेल आईडी के माध्यम से जो कि हमारी FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com है और फोन कॉल्स के माध्यम से और फोन कॉल्स का यूज करके हमारे पास हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
1: साहिबा अंसारी, महेवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे थे।
0: क्या बात साहिबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM रेनबो पर। जी साहिबा, क्या करती हैं आप?
1: सर इस वक्त हम सिलाई कर रहे थे।
0: इस वक्त सिलाई कर रही थी, क्या सिलती हैं आप?
1: हम अपना सूट सिल रहे थे सर।
0: नहीं, अपना ही सिलती हैं, दूसरों का भी सिलती हैं?
1: नहीं, दूसरे का भी सिलते हैं और लेडीज में सर कुर्ता पजामा भी सिल लेते हैं।
0: अच्छा, बस लेडीज सिलती हैं, जेंट्स नहीं सिलती हैं?
1: जेंट्स में भी सिलते हैं कुर्ता पजामा।
0: क्या बात है, ये मतलब हमें कुर्ता पजामा सिलवाना हो तो हम आपके पास आ सकते हैं?
1: जी बिल्कुल आ सकते हैं आप। आ सकते हैं जरा।
0: तो सिलेंगी?
1: जी बिल्कुल सिलेंगे।
0: क्या बात है, चलिए जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे इस विषय पे, ठीक है?
1: हमारे अब्बू रहते हैं बाहर, वरना हम जो है पैंट सिल भी सीख ले।
0: ठीक है,
1: जब आते हैं तो हमें सिलाई।
0: जी जी, जब वो भी सीख लीजिएगा तो वो भी हम आपसे सिलवाएंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: तो ये बताइए, आज क्या संदेश देना चाहती हैं आप?
1: सर पहले बताइए, आपकी ऐसे में आवाज जब फोन करते तो मोबाइल पे परेशान नहीं आती है?
0: हुँ?
1: आवाज नहीं आती है।
0: आवाज नहीं आ रही आपको?
1: रेडियो जो है सिर्फ सुनते हैं तब आप आपको जवाब देते हैं।
0: आपको हमारी आवाज नहीं मिल रही है?
1: नहीं, आप मिल तो रही है, हम रेडियो सेट पर सुन के हम तब आपको जवाब दे रहे हैं।
0: फोन कॉल पे आवाज नहीं मिल रही आपको?
1: नहीं सर।
0: वैसे तो यहाँ तो सब कुछ ऑन है, हमने सब कुछ ऑन कर रखा है।
1: नहीं, हम देख रहे हैं, कई दिनों से हम फोन लगा रहे हैं, ऐसा ही हमारे साथ होता है।
0: ठीक है, इस वक्त हमारे अधिकारी भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को और अगर ऐसी कोई समस्या आ रही, टेक्निकल फॉल्ट आ रही है तो जरूर इसको हम जल्द से जल्द सुधरवा देंगे। ठीक है
1: जी सर।
0: तो बताइए आज क्या संदेश है आपका?
1: सर संदेश हम ये लाएंगे जिससे कि सर जो हमारे किसान भाई हैं वो उनके खेतों में जब कभी कभी बिजली के खंभे भी होते हैं तो जब गुड़ाई करें तो उनके पास ना जाएं।
0: उनके पास ना जाएं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें करंट उतर जाता है, है ना? तो उसमें करंट उतर आता है कभी कभी,
1: उसमें करंट होता है।
0: ओके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और वाकई में
1: नाम भी रहना चाहता है अपने भाई बहनों का।
0: अच्छा बताइए, जल्दी ले लीजिए।
1: मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद तेज भाई, अकेले अहमद मंसूरी भाई, बाबू अंसारी भाई, समा परवीन अंसारी।

0: सिफ्टी हैं, गुलाबता सिद्दीकी अप्पी हैं, महक अंसारी हैं, साजिया अंसारी हैं, रिंकी पिंकी हैं, जावेद अख्तर भाई हैं, सत्यम कुमार भाई हैं, रोजी रूबी हैं, तारगव बसंती बुरा
1: जी। बहुत सारे नाम आपने ले लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको कॉल करने के लिए। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा।
0: थैंक यू सर, हम आपके पास
1: तो कॉल
0: करते रहते हैं।
1: ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये साहिबा अंसारी तो हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने अपना मैसेज भी हम तक पहुंचा दिया और देखते हैं अगले कॉलर हमारे कौन है। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: जॉली बोल रहा हूँ।
1: जॉली जी, स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर।
2: शुक्रिया।
1: जी कहाँ से बात कर रहे हैं जॉली जी?
2: ओम नगर आलमबाग लखनऊ से।
1: क्या बात है, तो आप एफएम रेनबो तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, यानी हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं आप।
2: जी हाँ जी।
1: और आज क्या कहना चाहते हैं हमारे सारे दोस्तों से आप?
2: एक बशीर बद्र साहब का शेर है या संदेश कह लीजिए, वो यूं है कि चला जाता हूँ मंजिलों की ओर, चला जाता हूँ मंजिलों की ओर, कभी मुड़ कर मील के पत्थर को नहीं देखा। मतलब आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए कि मैंने इतना कर लिया है बस, नहीं आगे बढ़ते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात हो, बहुत अच्छा संदेश आपका और वाकई में बहुत कुछ सीखने लायक ये बात, और हमारे जो भी लिसनर्स हैं इसको सुन रहे होंगे वाकई में बहुत कुछ उनको बातें समझ में भी आई होंगी कि क्या कहना चाहते हैं और क्या बात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
2: और मैं जब बाइक चलाता हूँ ना तो काला पत्थर का मुझे गीत याद आ जाता है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
1: क्या बात, बहुत अच्छी बात, और वाकई में बहुत दिलखुश व्यक्ति हैं आप और बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा जॉली जी।
2: शुक्रिया।
1: तो दोस्तों जॉली जी तो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचा दी, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं जो कि हमसे जुड़कर बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो हेलो, नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार आपको भी, कौन बात कर रहे हैं?
3: राजेंद्र गंगवार सर जी बात कर रहे हैं।
1: कौन?
3: राजेंद्र गंगवार।
1: राजेंद्र जी स्वागत है आपका एफएम रेनबो पर और प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में। क्या संदेश आप देना चाहते हैं आज?
3: हाँ जी, संदेश यही देना चाहते हैं, जैसे अभी सर जी गर्मी का समय चल रहा है तो इसमें हमारे जंगलों में बहुत सारा नुकसान होता है, जैसे अचानक में आग लग जाती है।
1: जी जी
3: हाँ, तो इसका ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा बढ़ानी चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जीव जंतु ज्यादा परेशान होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई और वाकई में ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जंगलों में अक्सर अत्यधिक गर्मी में ऐसा होता है कि आग लग जाती है और उसमें बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनका जिनकी जनहानि होती है, जो बेचारे बिना किसी कारण के ही वो मर जाते हैं या फिर उनका नुकसान हो जाता है, तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है और वाकई में हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: नमस्कार सर जी।
1: नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों लगातार हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, अपनी मेल्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश सिंह जी का भी मेल हम तक पहुंचा है, प्यार भरा नमस्कार मेरे फेवरेट रतन सर जी, थैंक यू सो मच, सुपरहिट सॉन्ग्स इन्हें बहुत ज़बरदस्त लगा प्रोग्राम, और संदेश इनका यह है कि इस गर्मी के मौसम में खुद का और बेजुबान जानवरों का बहुत ख्याल रखें, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना हम सब की जिम्मेदारी है, हम नलकूप चला के तीसरे दिन एक गड्ढा भर देते हैं ताकि जंगली जानवर या कोई और जानवर आते हैं तो पानी उसमें पीते हैं। यही रिक्वेस्ट सभी से करता हूँ कि आप जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आसिफ जी की भी मेल हम तक पहुंची है, हैदराबाद तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं रतन सर पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, और संदेश ये देना चाह रहे हैं कि अगर आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो समय से एक या दो घंटा पहले निकलें ताकि ट्रेन छूटे ना। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा अभी 22 मई को हुआ, मेरी लखनऊ की ट्रेन थी और ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचे और ट्रेन छूट गई, अफसोस कि गाँव नहीं आ पाया। कुछ नेम ले सकता हूँ? तो बिल्कुल, इन्होंने नेम भी लिख दिए और कई अनुमति भी मांग रहे हैं हमसे। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, नेहा अंसारी, गुलफ्सा सिद्दीकी, आपके नाम भी हमने पहुंचा दिए हैं, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी मेल करने के लिए। तो दोस्तों

इन सारी बातों के बाद एक प्यारा सा गीत चलिए हम और आप मिलकर सुन लेते हैं, इस गीत को एंजॉय करते हैं। आपके अपने प्यारे से चैनल 100.7 FM रेनबो पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
0: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
7: वेलकम बैक फ्रेंड्स इन प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना प्यारा सा दोस्त रतन, और हमारे साथ कोई जुड़ चुका है। हेलो
8: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
7: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं?
8: जी गुलफ्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला से।
7: क्या बात है गुलफ्ता जी, आप तो बड़ी फेमस हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग आपका नाम लेते हैं हमारी मेल्स के साथ में।
8: जी सर, ये एफएम का कमाल है सब।
7: क्या बात है, देखिए एफएम आपका कितना अच्छा साथी है, जो आपको एफएम यानी अपने साथ तो जोड़ता ही है, साथ में और भी कितने अच्छे सारे दोस्त आपको दे दिए ना।
8: जी जी सर, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो सब।
7: हाँ, और अक्सर कई मेल्स अभी भी आ जाएं जिसमें आपका नाम और जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने लिया, हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
8: सभी का प्यार है हमारे लिए।
7: जी,
8: उनसे बहुत प्यार करते हैं।
7: तो गुलफ्ता ये बताइए क्या करती हैं आप?
8: जी हम घर पर रहते हैं, हाउसवाइफ हैं।
7: ओके, हाउसवाइफ
8: हैं। बताइए आप कैसे हैं?
7: मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको हमारी आवाज से नहीं पता चल रहा है।
8: जी सुबह से 8 बजे से सुन रहे हैं, लेकिन आप मौसम की तरह चेंज हो गए हैं।
7: मौसम की तरह चेंज हो गया, क्यों, ऐसा क्या लगा आपको?
8: पहले आप

0: से आते थे लेकिन अब 8 बजे से आते।
1: देखिए ये प्रकृति का नियम है, चेंजेस तो होते रहते हैं ना। नहीं देखिए ये प्रकृति का नियम है, चेंजेस तो होते रहते हैं, है ना
0: जी। लेकिन अच्छा है कि 11 बजे से आपसे बात हो जाती है।
1: चलिए हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है हमें, ठीक है। तो आज क्या संदेश देना चाह रही हैं बताइए।
0: संदेश हमारा यही है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, जो लोग मेहमानों के आने से परेशान हो जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी परेशान ना होया करें, क्योंकि मेहमान आते हैं तो घर में खुशियां आती है, रौनक आती है, बरकत आती है।
1: हाँ जैसे कहा भी जाता है कि मेहमान खुदा का रूप होते हैं, अतिथि देवो भव, मेहमान ईश्वर का रूप होता है, और वाकई में अगर ईश्वर घर में आते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं। तो वाकई में
0: सर कुछ लोग आसपास दिख जाते हैं ऐसे लोग जो मेहमानों को मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं आने से।
1: नहीं वो बात
0: बिल्कुल बिल्कुल हमारे घर
1: नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, कभी कभी ऐसा होता है
0: तो फोन आ जाता है कि हम लोग आ रहे हैं आपके घर, तो वो लोग बहुत परेशान आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ मतलब बहुत कुछ होता है।
1: जी जी जी
0: किया करें।
1: चलिए आपका संदेश उन सभी लोगों तक पहुंच गया है जो इस तरह से सोचते हैं कि हाँ मेहमान आने से उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: दिक्कत नहीं होती, हम तो बहुत खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका ये संदेश।
0: नाम ले रहे दो चार बस।
1: बिल्कुल ले लीजिए।
0: साहिबा अंसारी है, साजिया अंसारी, शमा परवीन है, और आसिफ भाई है, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी को वकील भाई है।
1: थैंक यू सो मच गुलाब साहब हमें कॉल करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो जी, कौन बात कर रही है?
2: शमा परवीन बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं?
2: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए सर आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। और ये बताइए क्या करती हैं आप?
2: सभी आरजे से मोहब्बत और सभी आरजे से प्यार, एफएम रेनबो आकाशमारी से दोस्ती।
1: क्या बात क्या बात, बहुत खूब। ये आपका अंदाज़ हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे वाकई में हमारे लिसनर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत टैलेंटेड भी है कि अपनी बात को कहां से किस तरह से प्रस्तुत करना है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बताइए आज क्या संदेश दें?
2: सुबह से हम सुन रहे हैं आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, और सुपर हिट प्रोग्राम आपने बहुत अच्छा किया, और संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए आज आपका संदेश क्या है?
2: आज का हमारा संदेश ये है कि टंकी जिनके यहाँ लगी है और पानी फालतू बहता रहता है, ऐसा ना करें, अपने जितना जरूरत हो उतना पानी निकालें और फिर बंद कर दें।
1: बिल्कुल ये भी बहुत अच्छी बात है कि पानी को बचाएं,
2: पानी बर्बाद ना करें।
1: जी क्योंकि पीने वाले पानी की कमी है और उस पानी को हम अगर बर्बाद करते तो वाकई में एक सीमित स्रोत है और वो भविष्य में आने वाली
2: बहता रहता है, देखते हुए अपने को भी अच्छा नहीं लगता है।
1: तो इसका एक उपाय किया जा सकता है, जिन लोगों के घर में ऐसा कुछ होता है तो वो लोग ये कर सकते हैं कि एक अलार्म लगवा लें छोटा सा, और वो टंकी में लग जाता है और जैसे ही टंकी फुल होती है तुरंत वो बजने लगता है और जाके आप अपना स्विच ऑफ कर सकते हैं, है ना। ये एक अच्छा सोल्यूशन है ना।
2: सर हम अपने भाई बहन का नाम लेना चाहते हैं।
1: बिल्कुल लीजिए।
2: गुलाब साहब पी, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम,
1: अच्छा
2: सत्यम कुमार भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद मंसूरी भाई।
1: बस ले लिए सारे नाम
2: जी।
1: थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ
2: करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी हमें भी बहुत अच्छा लगा। दोबारा कॉल जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों तो हमारे साथ जुड़ी ये और इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी हम तक पहुंचाई और बहुत अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम भी लिए और साथ में एक अच्छा सा संदेश भी दिया। तो आप भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारी मेल आईडी fmakashwanilakhnau@gmail.com। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सबके लिए।
3: जान लेना मेरा नशा है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 11:45 का समय, प्रोग्राम संदेश, आपके गीत हमारे, और हमारे पास लगातार दोस्तों मेल्स भी आ रही हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब की मेल हम तक पहुंची है, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, सुबह से ही कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत पसंद आ रहा है। मेरा संदेश है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों में जो दूरियां हो रही हैं, इतना लोगों के पास टाइम नहीं कि उनसे फ़ोन करके बात कर लें। प्लीज़ ऐसा ना करें, रिश्तों में पहले जैसी मिठास घोलने का भरपूर प्रयास करें, क्योंकि रिश्ते ही हम सबको एक दूसरे के करीब लाने में मदद करते हैं और आपस में प्यार बढ़ता है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से ये हमें मेल भेजी है जावेद अख्तर साहब ने, शमशुल कमर राही बेगम रुखसार रकीबा शाहीन, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी मेल भेजने के लिए। वाकई में दोस्तों, अगर हमें अपने रिश्तों को मजबूत रखना है और अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, तो बातचीत एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, चाहे जैसे भी करें लेकिन कर लेनी चाहिए। किसी का हालचाल ले लेने मात्र से बहुत कुछ सामने वाले को ये एहसास हो जाता है कि हाँ, कम से कम हमारा ध्यान रखने के लिए या हमसे बातचीत करने के लिए कोई तो है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी मेल हम तक पहुंचाने के लिए। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ सर।
0: बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद आसिफ अंसारी जी, आप की मेल हम तक पहुंचती रहती है और आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत अच्छा लगा।
1: एक्चुअली सर कॉल लगाने का टाइम नहीं मिल पाता ना।

0: बिल्कुल, ये भी मैं बात को समझ रहा हूँ कि कॉल लगाने का टाइम नहीं मिलता होगा, कामकाज के कारण कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आज आपका कॉल मिल गया, हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप क्या कहना चाहते हैं?
1: जी कहना ये चाहते हैं, लोग क्या करते हैं सर, रेलवे क्रॉसिंग बंद रहता है ना तो उसके नीचे से बाइक निकाल ले जाते हैं, ऐसा जोखिम भरा रहता है सर।
0: बहुत बहुत बहुत,
1: आपने यूपी में भी देखे, हैदराबाद में भी देखे सर।
0: जी जी बिल्कुल सर, ये आपने आसिफ जी बात बहुत अच्छी बताई कि लोग इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हादसे का शिकार भी हुए हैं, और आगे ना हो ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए और लोगों को इसके प्रति अवेयर भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी आते हैदराबाद, आप लोगों को बुलाते हैं, मैं कोई भी हैदराबाद नहीं आता सर।
0: नहीं नहीं बिल्कुल आया, देखिए कभी भी ऐसा टूर होता है या फिर समय मिलता है तो जरूर हम आएंगे और आपसे मुलाकात भी करेंगे, और आप हमें हैदराबाद घुमाइएगा।
1: जी जी बिल्कुल घुमाते हैं, और कुछ लोगों के नाम ले लें सर।
0: बिल्कुल ले लीजिए
1: जी, मेरी बहन है सादिया अंतारी, साहिबा अंतारी, गुलफा सिद्दीकी और समा अंतारी, नेहा अंतारी।
0: जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े।
1: हैदराबाद आपको चार मीनार गोलकुंडा की घुमाते सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद,
1: थैंक यू सर।
0: तो दोस्तों ये हमारे साथ जुड़े आसिफ अंसारी, और इन्होंने अपनी बात भी हम तक पहुंचा दी है, और अपनी बातें लगातार आप फोन कॉल्स के माध्यम से और मेल के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहे हैं, और लगातार आपकी बातें हम तक पहुंच रही हैं। राजीव कुमार साहब की मेल हम तक आई है और ये कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आज का संदेश ये है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, प्लीज़ मुझे दिलवर मेरे मन भी जो कहाँ मेरे प्यार का, अच्छा ये सॉन्ग है, इन्होंने कहा सुना दीजिए सर। देखिए अभी थोड़ी देर में आपकी पसंद का शो भी शुरू होगा जिसमें आप अपनी फरमाइश सुन सकते हैं, ज़रूर आपका गाना प्ले किया जाएगा। थैंक यू सो मच राजीव जी इतनी हमको कॉल करने के लिए, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि वो चले गए हैं कहीं, और उनकी कॉल तो लग गई थी और वो हमारे साथ रुके भी हुए थे, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन होता यही है ना कि कभी कभी आपकी कॉल हम तक पहुंचते पहुंचते रह जाती है। स्तुति वाजपेयी जी का मेल हम तक पहुंचा है, जय श्री कृष्णा सर जी, आपको भी जय श्री कृष्णा, मेरा नाम स्तुति वाजपेयी है और हम नगर दुगावा रानीगंज ओके लखनऊ से मेल कर रहे हैं। ठीक है, मेरे बेजुबान मेल को अपनी आवाज़ देने वाले प्यारे से रतन सर जी को स्तुति वाजपेयी का प्यार भरा नमस्कार, और आपका ये प्यार भरा नमस्कार हमने स्वीकार भी कर लिया है स्तुति जी, और हम ये आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी होंगी और इस वक्त और भी ज़्यादा खुश हो गई होंगी क्योंकि आपकी मेल इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। सर जी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मन कितना भी दुखी हो आपकी आवाज़ सुनकर बहुत शांति मिलती है, हमारी आवाज़ सुनकर शांति मिलती है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा सुना करें। मेरा संदेश यह है कि अपनी गाड़ी निकालते समय उसके नीचे एक बार जरूर चेक कर लें कि कोई छोटा सा डॉग या कोई और जीव सो ना रहा हो। वाकई में स्तुति जी बहुत अच्छी ये बात आपने कही है, और ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर हम लोग जल्दबाजी में होते हैं या बाहर निकल रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं या कहीं से हम अपने घर लौट रहे होते हैं और हमारी गाड़ी कहीं पार्क होती है, हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी गाड़ी को तुरंत निकालने की जल्दबाजी में कोशिश करते हैं, ध्यान नहीं देते कि हो सकता है छांव के लिए या आराम करने के लिए कोई भी छोटा सा जानवर उसके नीचे आ सकता है, चाहे कोई छोटा सा डॉगी हो या फिर कोई बिल्ली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो होता यह है कि जब हम अपनी गाड़ी इस तरह से निकालते हैं तो वो बेजुबान कुछ कर नहीं पाते और एक्सीडेंटली उस दुर्घटना में उनकी जान चली जाती है। तो वाकई में ये एक बहुत अच्छा और गंभीर संदेश है, बहुत जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए ताकि हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो सके और हम ऐसे बेजुबानों की जान बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इतनी प्यारा संदेश हम तक आपने पहुंचाया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो
2: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
2: सर मैं सत्यम कुमार बात कर रहा हूँ, ग्रामो पोस्ट पास एल डी कैसरगंज भराई से।
0: सत्यम जी स्वागत है, क्या संदेश है आज आपका, बताइए।
2: सर पहले जो सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गीत उन्होंने गाए।
0: बिल्कुल,
2: लेकिन आज वो आवाज खामोश हो गई। सर उनकी आवाज को हम अभी तक तो समझते थे कि ये लता जी की आवाज, लेकिन आज मालूम पड़ा कि ये तो गाने उन्होंने ही गाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: वो जो गाना सर रक्षाबंधन पर बजता है, बहना ने भाई के कलाई पर प्यार बांधा है, क्या गाना था सर।
1: वाकई में बहुत अच्छी आवाज और बहुत अच्छी पार्श्व गायिका रही वो, और उन्होंने हमेशा लता जी के ही बराबर उनको दर्जा दिया गया, और वाकई में बहुत एक कहें तो बहुत बड़ा एक व्यक्ति तो आज हमसे दूर चला गया।
0: हेलो सर, जो आवाज की बात की जा रही थी, मतलब साहिबा अंसारी जी ने कहा था कि आवाज अच्छी नहीं मिल रही है, तो बात यह है कि आवाज मिलती है लेकिन ऐसी आवाज आती है कि जैसे फटे हुए स्पीकर की आवाज मिलती है।
1: अच्छा,
0: आप लोगों की आवाज हमारे मोबाइल पर ऐसे ही आती है।
1: ओके, हो सकता है कुछ तकनीकी समस्या हो जिस वजह से ऐसा हो रहा हो।
0: सर, हम नाम ले लें।
1: बिल्कुल, इसको हम दिखा देंगे। और आज संदेश क्या देना चाहते हैं ये तो बताइए।
0: सर संदेश हम रोज देते हैं, आज सिर्फ इतना ही, बस दो नाम लेना चाहूंगा।
1: चलिए ले लीजिए।
0: सर सीतापुर से है सिस्टर समा परवीन अंसारी, और लखीमपुर से है सिस्टर साहिबा अंसारी और बबलू यादव भाई है।
1: जी बहुत बहुत शुक्र। जी जी
0: सर, आपसे मेरी तीसरी बार बात हो रही है आज।
1: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लगातार हमसे बात करते रहिए, हमें कॉल मिलाते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: तो दोस्तों 11:53 का समय हो चुका है, लगातार हमारे पास मेल्स भी आ रही हैं, और ये समय धीरे धीरे इशारा ये भी कर रहा है कि गुड मॉर्निंग, अरे ये आपका जो प्यारा सा शो है संदेश आपके गीत हमारे, हमें इसे वाइंड अप करना चाहिए। अगली जो मेल हमारे पास आई है, अरुण कुमार कुशवाहा घमोइया हरदोई से हमें मेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज का प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग इन्हें बहुत अच्छा लगा। मैं रेडियो का बहुत पुराना श्रोता हूँ, प्राइमरी चैनल सुना करता था, मैं आज भी सुनता हूँ, तब एफएम इतना सुलभ नहीं था और आज दोनों सुनता हूँ। आज के युवा और बच्चे सबको रेडियो से जुड़ना चाहिए क्योंकि इससे बढ़िया ज्ञान और मनोरंजन का कोई और माध्यम नहीं है। धन्यवाद सर, मेरा संदेश है, सर मेरे गाँव के पास एक नहर निकली है, उसमें लोग पूजा सामग्री डालकर उसे बहुत गंदा करते हैं, सर मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना किया करें। तो बिल्कुल बहुत अच्छा ये संदेश आपका है कि कोई भी ऐसी चीज़ पूजा सामग्री है जिसे आप यूज़ कर चुके हैं, उसे आप ऐसी जगह पे डालिए जहां उससे किसी और को दिक्कत ना हो और वो स्थान गंदा ना हो। तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा संदेश है और आपने हमसे जुड़कर इतना प्यारा संदेश हम तक पहुंचाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों 11:54 का समय हो चुका है और ये समय हमें इशारा कर रहा है कि संदेश आपके गीत हमारे प्रोग्राम को अब हम यहीं पर वाइंड अप कर दें, मिलते हैं कुछ और प्रोग्राम्स में कुछ किसी और दिन, लेकिन अगले कुछ घंटे आपके साथ रहने वाली हैं तरन्नुम, आपकी प्यारी और फेवरेट आरजे, तो बस आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसमें लगभग 90% अभ्यर्थी शामिल हुए। ये परीक्षा योगी सरकार की पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली का एक सफल उदाहरण है, जिसकी निगरानी AI फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, 22,000 CCTV कैमरों और एक लाइव कमांड कंट्रोल सिस्टम से की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कुल 4,44,958 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 90% ने दोनों पालियों में भाग लिया। उत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पांडे ने कल लखनऊ एवं आलमनगर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। लखनऊ स्टेशन पर हालिया प्लेटफॉर्म शेड हादसे के बाद प्रवीण पांडे ने प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी पंकज सिंह के साथ लखनऊ स्टेशन पर निर्माणाधीन एयर कॉनकोर्स परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, संरक्षा मानकों के अनुपालन तथा यात्रियों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध खानपान सेवाओं, कैटरिंग स्टॉलों, खाद्य गुणवत्ता, स्वच्छता एवं रेल नीर की उपलब्धता का भी जायजा लिया तथा यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने पर बल दिया। सुल्तानपुर जिले के मेधावी छात्र आर्यन गुप्ता ने JEE एडवांस 2026 परीक्षा उत्तीर्ण कर IIT में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया है। आर्यन की सफलता से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। उनकी माता नीलम गुप्ता परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका हैं, जबकि पिता भरत गुप्ता इंजीनियर हैं। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रॉकेट लर्निंग मॉडल लागू कर रही है। वाराणसी जिले के लगभग 3700 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, 1,20,000 बच्चे और 15,000 अभिभावक इस अभियान से जुड़े हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की पहल पुस्तक के आधार पर वर्ष भर का विषयवार पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों से बच्चों में स्कूल के प्रति बढ़ रही है और ड्रॉप आउट की संभावना कम हो रही है।

रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

जी 12:03 हो चुके हैं और हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम शत्रुपा और बहुत सारे इमोशन आपको जगाना है अपनी हेल्थ को लेकर क्योंकि महिलाएं इस वक्त किचन में होती हैं या फिर ऑफिस में होती हैं या फिर अपने जहां पर भी उनका वर्क प्लेस होता है वहां पर होती हैं लेकिन अपनी सेहत के लिए इमोशन जगाना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें करेंगे इस प्रोग्राम में। सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

जी हाँ बिल्कुल, जब भी आप डांस कर सकती हैं, जब भी आप मूड में रह सकती हैं, जब भी आप झूम सकती हैं, जब आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही फाइन होनी चाहिए। और अक्सर ये होता है महिलाओं में खासकर देखा जाता है कि वो अपनी सेहत को बहुत नज़रअंदाज करती हैं, क्योंकि सुबह का टाइम नाश्ते का टाइम है, दोपहर का टाइम खाने का टाइम है, और फिर दोपहर के बाद शाम के खाने की बात है, फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर हस्बैंड को ऑफिस से आने का टाइम हो जाता है। ऐसे में अक्सर आप देखिए कि महिलाएं किचन से निकलती हैं, पसीना पोंछती नज़र आती हैं, कहती हैं भाई अपने लिए टाइम ही कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल करती हैं, मोबाइल पर देखती हैं, रील्स देखती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन टाइम कहाँ है। और ये टाइम जो है ना, ये जब आप टाइम को आपकी जो स्किप कर देती

अपनी हेल्थ के टाइम को, अपनी हेल्थ को देखने वाले टाइम को, तो फिर आप परेशानियों में पड़ जाती हैं, या कह सकते हैं परेशानियों में मुब्तला हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने फैमिली की सेहत और खुशियों का तो पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी हेल्थ की आती है तो उसे नज़रअंदाज कर देती हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज मंडे भी है और आज जून की शुरुआत भी है, और आज क्यों ना ऐसी बात कर ली जाए कि हेल्दी वुमेन हेल्दी फैमिली। और कहते हैं ना कि जो एक बहुत ही तंदुरुस्त और बहुत ही हेल्दी महिला होती है, औरत होती है, वही एक स्वस्थ परिवार और समाज की नींव होती है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये हम खुद अपने से भी कह रहे हैं, और जो हमारी फीमेल लिसनर्स हैं जो इस वक्त बहुत ध्यान से प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको भी अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि लोग कहते हैं, अक्सर लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट की बात कर ली जाए। बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह हम आपसे ये कहें कि भाई आप ये सब करिए, वो काम कीजिए, ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, आप कहेंगे नहीं, ये सारी बातें बहुत हैं। अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो क्यों ना सुबह आप हल्की चीज़ें ही बल्कि लीजिए, लेकिन वो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। रात में सिर्फ आपको क्या करना है, 2 बादाम को भिगो देना है, ये तो आप कर ही सकती हैं ना, 2 बादाम भिगो दीजिए और 12 से 14 काली किशमिश के दाने उसमें भिगो दीजिए, 1 अंजीर भिगो दीजिए और पम्पकिन सीड्स आते हैं थोड़े से, वो भिगो दीजिए। लेकिन अगर हाँ, अगर आपकी कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बनाएं, तो एक बार डॉक्टर से आप कंसर्न कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें आप रात भर भिगो के रखिए, जब वो सुबह उठेंगी आप देखेंगे कि वो फूल गई हैं, तो आप किचन में अपना काम भी करती रहिए और उसको मुंह में लेके चबाते भी रहिए, तो बन गई ना आपकी भी सेहत और साथ ही साथ आपकी फैमिली की भी सेहत।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
6: हैंगओवर
5: Only 100.7 FM Rainbow.

क्या बताएं, तो सामने वाला पूछता है कि भाई ठीक ही है से क्या मतलब है? अरे बस ठीक है, बस ये बड़ा दर्द करता है, कंधों में बड़ा दर्द रहता है, सर घूमता रहता है, चक्कर आते रहते हैं, उठने का दिल नहीं करता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है। अच्छा भाई तो कुछ खाने पीने में कुछ लो, अच्छा सा कुछ अच्छा सी डाइट लो, क्या करें, टाइम ही कहाँ मिलता है, टाइम ही तो नहीं है बस। लेकिन ये जो वक्त आप कह रही हैं ना कि टाइम नहीं है, इसी में आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और वही बात है ना कि ज़िंदगी लोग जीते हैं तो किस लिए जीते हैं? खाने के लिए जीते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीते हैं, कपड़े पहनने के लिए जीते हैं, घूमने के लिए जीते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि भले ही आपके पास दौलत ना हो, लेकिन सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि बैलेंस्ड डाइट अगर आप लेते हैं, यानी हम अपनी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने खाने में आपको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, विटामिन्स की बहुत ज़रूरत है, आयरन है, कैल्शियम की, एक कहते हैं ना कि एक पर्याप्त जो मात्रा है वो बहुत ज़रूरी है अपनी अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में शामिल करने के लिए। हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, दही है, दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और देखिए भाई, अगर भारत की हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनमें ख़ास तौर पर आयरन की कमी होती है, यानी अनीमिया की शिकार वो जल्दी हो जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे थकान होती है, कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ दौड़ लगाते हैं। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसमें दवाएं भी देते हैं, उसमें सप्लीमेंट्स भी देते हैं, और करना आपको क्या है, वही जो आप अगर अभी कर लेंगी, अपनी सेहत को अभी ही कह सकते हैं ना स्टोर करके रखेंगी, अपनी एनर्जी को, तो फिर आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने की ज़रूरत क्या है, बताइए। तो इसलिए बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी है वो मांग करती है, डिमांड करती है कि भाई हमें भी अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है। और आप रेनबो को एंजॉय करते करते कुछ ऐसा हल्का फुल्का अपने लिए बना लीजिए, कुछ नहीं है तो कुछ फ्रूट्स ही खा लीजिए, केला ही ले लीजिए आप, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी जल्दी आप ऑफिस में है या कहीं है तो वो एटलीस्ट आप खा तो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट को देखना, अपनी हेल्थ को देखना, क्योंकि जब आप सही रहेंगी तभी आप फैमिली को देख पाएंगी, तभी आप अपने बच्चों को देख पाएंगी, और तभी फिर आप और जगह पर पार्टी है या कहीं शादी है या कहीं किसी का कोई भी फंक्शन है तो आप मूव कर सकती हैं। 12:20 प्रोग्राम शत्रुपा तरनु में आपके साथ, सुनते रहिए।

अच्छा, बहुत दिनों बाद जब कोई मिलता है, कोई दोस्त मिलता है या कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाता है या फोन आ जाता है और अक्सर हम लोग पूछते हैं और बताओ सब बढ़िया, तो महिलाएं हमेशा ये कहती हैं हाँ ठीक ही है बस, अब उसमें

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

12:32 हो चुके हैं दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है शद्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक महिला ही समझ सकती है और कहते भी हैं कि महिला ही महिलाओं को अच्छे से समझ सकती हैं। अब देखिए, कभी कभी ये भी होता है कि आप कुछ और कह रहे हैं किसी से, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, या सामने वाले ने आपको कोई ऐसी बात बोल दी जो आपके जहन में, आपके मन में, मस्तिष्क में बस कौनती रहती है, गूंजती रहती है। आप किचन में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग से वो बात नहीं निकल रही है और आपका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि बैलेंस नहीं रह पाता। मानसिक संतुलन जो है वो बहुत ज़रूरी है और आप समझ गई होंगी कि मेरा इशारा किस तरफ है, मेरा इशारा

है मेंटल हेल्थ की तरफ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो घर में होती हैं या फिर आपके वर्क प्लेस पे होती हैं या फिर ऑफिस में होती हैं या फिर आप कहीं पर भी काम करती हैं या कोई भी हुनर है आपके अंदर जो आप करने जाती हैं या घर में करती हैं, लेकिन आप दिन रात मेहनत कर रही हैं लेकिन आपके दिमाग से वो बातें नहीं निकल पाती हैं जो बहुत पहले किसी ने कही हो, या फिर वो बातें जो बहुत किसी ने हंसी मजाक में कह दी हो और आपने उसको दिल पे ले लिया हो। बस यहीं पे गलती करती हैं आप, क्योंकि हमेशा ये होता है कि सामने वाला आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को, आपके छोटे से नन्हे से मासूम के दिल को नहीं देख पा रहा है। उसने बोल दिया क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी है, वो उसका व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व क्या कहता है? आपका व्यक्तित्व ये कहता है, आपकी पर्सनालिटी आपसे ये कहती है, आपका जो माइंड है आपसे वो ये कह रहा है कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सामने वाला जो है वो आप नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपने मानसिक संतुलन को बना के रखना है, अपने मेंटल पीस को हमेशा सहेज के रखना है, क्योंकि जब दिमाग एकदम काबू में रहता है, दिल एकदम काबू में रहता है, तभी हम सारे काम अच्छे कर पाते हैं। और हर टाइम ये उदासी, ये चिड़चिड़ापन, ये लोगों से कटना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दीजिए, लाइफ को खुल के जिए। देखिए अभी की आप बात लीजिए, 12 बजा था और 12 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था और देखते देखते 34 मिनट निकल गए। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त है बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर हम ये सोच लें कि हमारी लाइफ भी है वो भी गुजर रही है, जो ज़िंदगी है वो भी गुजर रही है, देखते देखते जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और अब देखिए जून आ गया, और इसी तरह साल दर साल गुजरते चले जाएंगे। लेकिन हमारी और आपकी सेहत अगर एक बार बिगड़ गई तो दोबारा वापस नहीं आएगी। उसी तरह मेंटल हेल्थ के बाद अगर हम बात करें तो महिलाओं की फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अब फिजिकल हेल्थ में लोग कहते हैं कि भाई इतना तो काम करते हैं, सुबह उठते हैं, ये करते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, अब टाइम ही नहीं मिलता। देखिए फिर टाइम की बात आ गई, और अक्सर लोग कहते भी है कि इतना काम तो करते हैं लेकिन देखो वेट है कि कमी नहीं होता, कुछ भी नहीं खाते तब भी देखो इतना वेट बढ़ गया है। तो वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि एक जो एक्सरसाइज होती है वो मतलब एक्सरसाइज है, जो आपके घर के काम है वो घर के काम है। कैसे वॉक करना है आपको, कितनी दूर तक आपको टहलना है, कितनी दूर तक आपको दौड़ना भागना है, ये सारी चीज़ें अलग मैटर करती हैं। और जो घर के काम हैं, जो ऑफिस के काम हैं, वो तो अलग मैटर करते हैं। तो फिलहाल ये बहुत सीरियस सीरियस बातें मैं नहीं करनी है, बहुत अच्छा सा एक रॉकिंग सा नंबर है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और आप खूब अच्छे से अपने को कहते हैं ना शेक कर लीजिए, और बाद में फिर ये सोचिएगा कि तरन्नुम ने आज बिल्कुल सही कहा था, हमें अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना है। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपकी जो लाइफ है ना वो एकदम नैंग चेक हो जाएगी, बिल्कुल इस ट्रैक की तरह।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: और 12:39 हो रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा तरन्नुम में, आपके साथ सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की, बोले तो FM रेनबो।

जी चिकरी चिकरी 12:43 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है, शत्रुपा तरन्नुम है आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ को लेकर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनको टाल मटोल करना या इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, ये सारी चीज़ें हमारे और आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं। तो जैसा कि हमने कहा आपसे कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को ये मत सोचिए कि सामने वाला कहाँ तक लोगों को आप खुश करते रहेंगे, कहाँ तक हर एक का आप ध्यान रखते रहेंगे। कहीं ना कहीं हर फैमिली में, हर रिलेशन में, हर दोस्ती में एक ऐसा ज़रूर बंदा होता है जो आपसे खुश नहीं होता। अब क्यों नहीं खुश होता? क्योंकि आपका उसका नेचर नहीं मैच करता। क्यों नहीं खुश होता? क्योंकि आपकी थिंकिंग उसकी थिंकिंग अलग है। तो कहाँ तक आप उसकी तरह नहीं बन सकती तो वो भी आपकी तरह नहीं बन सकता। मान लीजिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत ही आप नरम दिल रखती हैं, लेकिन सामने वाला आपकी तरह दिल तो नहीं रख सकता, सामने वाला आपकी तरह सोच तो नहीं रख सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी सोच खुद के लिए अच्छी रखनी है, हमेशा अपने लिए सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, और कभी कभी तो लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसको कुछ भी नहीं करना है लेकिन आपको खुश रहने के लिए वो काम करना है। मान लीजिए आपको डांस का बड़ा शौक था, अब आप डांस नहीं करती क्योंकि आपको लगता है अरे बच्चे बड़े हो गए, अरे बड़ा काम है, लेकिन आपको डांस अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल डांस कीजिए आप। अगर आपको लगता है कि गाना गाना है, कहाँ गाना गाएंगे,

मजाक उड़ाएंगे, फिर वही बात कि लोग मजाक उड़ाएंगे। लोगों को अपनी जिंदगी में लॉग इन करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब फिर हम अपने लिए थोड़ा सा एक कॉर्नर जो होता है ना, एक गोशा जिसे कहते हैं, वो हम अपने लिए सिक्योर करते हैं कि हाँ ये मेरी खुशी का एक छोटा सा कॉर्नर है, एक छोटा सा गोशा है, एक छोटा सा खजाना है जिसमें हमें अपने आप को खुश रखना है। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि घर और ऑफिस के काम के बीच में अक्सर जो महिलाएँ होती वो एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि हमें दिन में सिर्फ 30 मिनट की वॉक करनी है, योगा करना है या फिर कोई भी हल्की एक्सरसाइज व्यायाम करना है, तो आपकी जो बॉडी है, शरीर है, वो तंदुरुस्त रह सकता है। और ऐसा नहीं है कि योगा, अब अभी आप मान लीजिए ऑफिस में हैं तो अब एक गहरी सांस ले सकती हैं, बहुत ही अच्छी कोई ऐसी बात जो आपको मुस्कुराहट दे जाए, आप ये भी सोच सकती हैं। साथ ही साथ आप पैरों को थोड़ा सा मूव कर सकती हैं, हाथों को एक्सरसाइज कर सकती हैं, थोड़ा सा रिवॉल्व कर सकती हैं अपनी बॉडी को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस एक आम प्रॉब्लम बन चुकी है। महिलाएं घर और काम दोनों की जिम्मेदारियां निभाती हैं, जिससे मानसिक दबाव बढ़ सकता है और बढ़ता है। इसलिए अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ करिए, किताबें पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, परिवार के साथ समय बिताइए। और इसी को कहते हैं ज़िंदगी। और ज़िंदगी किसी की भी बहुत स्मूथ नहीं होती। कहते ना कि जब हम बहुत एक अपने एक्सप्रेस वे देखा होगा, एकदम भागती रहती है लाइफ, बहुत तेज़ गाड़ी चली जा रही है, लेकिन स्पीड ब्रेकर ज़रूरी है। क्योंकि एकदम लगातार अगर हम लोग भागते रहेंगे ज़िंदगी में, सिर्फ भाग रहे हैं, भागने से खुशी खुशी मिल रही है और अगर गम नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो भी एक प्रॉब्लम है कि भाई, क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं आएंगे, तो फिर हम और आप दूसरों के दुखों को कैसे समझेंगे। तो दुख का आना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सुबह के बाद शाम का आना जिस तरह लाजमी है, ज़रूरी है, उसी तरह खुशी के बाद दुख या दुख के बाद खुशी का आना भी लाजमी है। फिलहाल एक ट्रैक और आप तक सुनते रहिए रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा।

और 12:53 हो चुके हैं. प्रोग्राम अभी तक चल रहा है शत्रुपा और तरन्नुम है आपके साथ और अगले कुछ घंटे आपके साथ फिलहाल हम रहने वाले हैं. और अभी हम बात कर रहे हैं वुमेन्स हेल्थ की क्योंकि प्रोग्राम शत्रुपा है और आज जो मंडे है और आज का सेगमेंट भी यही है. तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी चीज़ एक और आपसे बतानी है और वो ये है कि अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको ज़रूर करवाना है. मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में एक अलग सी लग रही है, कहीं पे दर्द है, कहीं पे आपको गांठ महसूस हो रही है, तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसर्न कीजिए, उसको दिखाइए, चेकअप कराइए कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है. और अक्सर क्या होता है कि समय समय पर वक्त वक्त पर आपको ब्लड प्रेशर की जांच करानी है, शुगर लेवल है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी जांच करवाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अब ख़ास बात यह है कि आपको जो चलते चलते बतानी है वो ये है कि बहुत ही भरपूर यानी पर्याप्त जो नींद है वो लेना महिलाओं को बहुत ज़रूरत है. अब देखिए आप कहेंगे कि भाई सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, अब रात में थोड़ा टाइम मिलता है तो मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपका दिमाग भी थका हुआ है, आप फिज़िकली भी थकी हुई हैं, बहुत सारे आपने काम भी निपटाए हैं और अब वक्त है कि आप बहुत से बहुत 20 मिनट, आधा घंटा या बहुत हो गया तो 1 घंटा आप मोबाइल चला लीजिए. लेकिन 11 बजे के बाद अगर आप मोबाइल

दूरी बना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भरपूर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये है कि एक जो हेल्दी महिला होती है, कह सकते हैं व्यस्क जो महिला होती है, उसको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारा पानी पीना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है। और अब इसीलिए तो हम महिलाएं जो हैं वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे विज्ञान हो, खेल हो, कोई भी काम हो। लेकिन देखिए, आप महिलाएं करती हैं, लेकिन तभी आप कर सकती हैं जब आप अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को आप प्राथमिकता देंगी। नियमित आपको व्यायाम करना है। आज आप ये शपथ ले लीजिए कि आपको नियमित व्यायाम करना है, साथ ही साथ आपको बैलेंस डाइट लेनी है, और साथ ही साथ समय समय पर आपको हेल्थ चेकअप करवाना है। तो ये सारी चीज़ें आपने आज हमारे साथ शपथ ली है, आपने कहा है, ओथ ली है कि हम ऐसा करेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि जो हमारी फीमेल लिसनर्स हैं, इस प्रोग्राम को सुनती हैं और बहुत ही ध्यान देती हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान देती हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान देती हैं, अपनी खूबसूरती पर ध्यान देती हैं, और देना भी चाहिए। फिलहाल अब ध्यान दिला दें आपको कि 12:55 हो चुके हैं। प्रोग्राम शत्रुपा को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाज़त। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है होठों पे तेरी बात। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके घर में क्या कोई चुगलखोर है? आपके घर में क्या कोई ऐसा है जो चुगली करता है? कि बहुत सारे लोग होते हैं घर में कि भाई बहन की चुगली करता है, आने दो मम्मी को बताएंगे, आने दो पापा को बताएंगे, या बहन को ही बताएंगे। बहन बहन बताना नहीं, प्लीज मत बताना, लेकिन वो बता देते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई चुगलखोर है तो आप हमें आंसर कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर मेल करके। फिलहाल आपके मेल का हमें इंतजार है, और आपको इंतजार है खूबसूरत ट्रैक का जो धीरे धीरे आ रहा है आप तक।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सम्मान समारोह में 223 छात्रों का सम्मान किया जा रहा है। इसमें छात्रों की संख्या 85 है, छात्राओं की संख्या 138 है, यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आई है। प्रदेश स्तर पर हाईस्कूल की परीक्षा में 115 बच्चों में 34 छात्र हैं, 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट की टॉप की सूची में देखें तो छात्र 9 है, छात्राएं 14 हैं। ये संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत करती हैं और ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अंक प्राप्त करने के सामर्थ्य भी रखती हैं। मेरा मानना है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। ये इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश बहुत स्पष्ट आ गया हम सबके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र लिए और उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण समय सीमा के भीतर हो, विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। सीएम योगी ने कुछ बच्चों से शिक्षा के बारे में भी पूछा और अभिभावकों से कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा ही सशक्त भारत की नींव है। प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक 72 जिलों के 1011 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई, जिसमें लगभग 90% अभ्यर्थी शामिल हुए। यह परीक्षा योगी सरकार की पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली का एक सफल उदाहरण है, जिसकी निगरानी AI, फेस रिकग्निशन, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, 22,000 CCTV कैमरों और एक लाइव कमांड कंट्रोल सिस्टम से की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कुल 4,44,958 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से लगभग 90% ने दोनों पालियों में भाग लिया। योगी सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए रॉकेट लर्निंग मॉडल लागू कर रही है। वाराणसी जिले के लगभग 3700 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, 1,20,000 बच्चे और 15,000 अभिभावक इस अभियान से जुड़े हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की पहल पुस्तक के आधार पर वर्ष भर का विषयवार पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों से बच्चों में स्कूल के प्रति रुचि बढ़ रही है और ड्रॉप आउट की संभावना कम हो रही है। पीलीभीत जिले में आज एक जिला एक नदी योजना के तहत ग्राम पंचायत शेरपुर मकरनपुर के चंदुया घाट पर पुनरुद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने फावड़ा चलाकर खुदाई का श्री गणेश किया। इससे पहले बंगाली समुदाय के लोगों ने विशेष शंख ध्वनि निकालकर पूजा अर्चना की। श्रमदान के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और श्रमदान किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: और 1:04 हो गए हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें, लेकिन उससे पहले मेरी भी सुन लीजिए। और सुनना ये है आपको कि आपको बताना है कि आपके घर में क्या कोई चुगलखोर है, क्या कोई स्निचर है? अगर है तो आप हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन के ऑडिटोरियम में मुनक़दा होनहार तलबा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं पूरे नतायज को देख रहा हूँ। खास तौर पर आज यहाँ मुनक़द तकरीब में जहाँ 223 तलबा को इजाज़ से नवाजा जा रहा है, जिनमें से 85 लड़के और 138 लड़कियाँ हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लड़कियों ने मेरिट हासिल किए, जबकि लड़कों ने कम मेरिट हासिल की है। ये नंबर बताते हैं कि लड़कियाँ ज्यादा मेहनत करती और मेहनत के जरिए अच्छे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखती हैं। ये लड़कियों के लिए भी एक तहरीक होना चाहिए कि लड़कियां घर में अपने खानदान की किफालत करते हुए भी अच्छे नंबर हासिल कर रही हैं।
1: इस समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहाँ पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और देश और समाज को भी आगे बढ़ाएगी। इस रिजल्ट के माध्यम से एक संदेश हम सबके सामने है।
0: कई अजला में तूफान, बारिश और खराब मौसम के वाकयात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर, मुतालिका महकमों को मुसलसल चौकसी बरकरार रखने और किसी भी आफत की सूरत में फौरी कार्रवाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ महकमे शहरी दिफा के काम का जायजा लिया और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत, आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नागरिक सुरक्षा की भूमिका केवल युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा प्रबंधन, राहत एवं बचाव, जन जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमताओं को और मजबूत किया जाए। स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप किया जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: दरियस्ता उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की एक और मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि होमगार्ड्स तंजीम रियासत की दाखिली सलामती, अमन अमान, डिजास्टर मैनेजमेंट और अवामी खिदमात का एक अहम सतून है। बदलते वक्त और नए चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए इस तंजीम को ज्यादा काबिल, तरबियत याफ्ता, तकनीकी तौर पर माहिर और जदीद बनाया जाना चाहिए। 1991 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा को रियासत का परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया है। जनाब कृष्णा पहले कारगुजार डीजीपी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूरी के बाद महकमे दाखिला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल

दूरी के बाद महकमे दाखला ने मिस्टर कृष्णा को तकरीरी का हुक्म जारी किया। वो जून 2029 तक इस ओहदे पर फायज रहेंगे। उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर राजीव कृष्णा ने कल वक्ती पुलिस कमिश्नर के तौर पर तकरीरी पर कहा कि वजीर आला की रहनुमाई में उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी और हुकूमत की तरजीहात को पूरा करने के लिए अथक मेहनत कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार उत्तर प्रदेश में समाजी तरक्की की बदलती हुई तस्वीर को जाहिर करते हैं। 2015-16 और 2023-24 के दरमियान आदाद व शुमार का मवाजना जाहिर करता है कि रियासत ने सेहत तालीम खवातीन को बाख्तियार बनाने खानदानी मनसूबा बंदी माँ और बच्चे की सेहत और बुनियादी ढांचे में नुमाया पेशे रफ्त की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क्यादत में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सेहत खिदमात की तौसी समाजी तहफ़ की स्कीमों के वसी पैमाने पर निफाज खवातीन के बहबूद के प्रोग्रामों बुनियादी ढांचे की तरक्की का असर अब कौमी सतह के सर्वे में भी नजर आ रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज से नाफिजुल अमल पेट्रोल डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बरामदात पर विंड फॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये फी लीटर कर दिया है। डीजल पर टैक्स कम करके 13.50 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में चंद मकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अलग थलग मकामात पर आसमानी बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल वज़ीर आला ने रियासत के कई अजला के लिए वार्निंग जारी की है। उन्होंने अजला को हिदायत की है कि वह तूफान बारिश ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के मुतासरीन को फौरी इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए और शहरियों की हिफाजत उसकी अव्वलियन तरजीह है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

1:16 हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात तरन्नुम है आपके साथ. राज हमने आपसे सवाल ये किया है कि क्या आपके घर में कोई चुगलखोर है, और इतने सारे मेल आ गए हैं, यानी हर घर में एक चुगलखोर का होना बहुत ज़रूरी है. ये सारे जो मेल आपके आए हैं जो आपने आंसर किया है हमें, उसको ज़रूर हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक आप तक.

1:16 हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात तरन्नुम है आपके साथ. और आज हमने आपसे सवाल ये किया है कि क्या आपके घर में कोई चुगलखोर है, और इतने सारे मेल आ गए हैं, यानी हर घर में एक चुगलखोर का होना बहुत ज़रूरी है. ये सारे जो मेल आपके आए हैं, जो आपने आंसर किया है हमें, उसको ज़रूर हम पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक आप तक.

मेल कर रही हूँ, मेरे घर में मेरा भाई चुगलखोर है, अगर कोई चीज़ खाओ तो मम्मी को बता देता है, मगर मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं और मुझे कुछ नहीं कहती हैं। अक्सर ऐसे ही होता है भाई कि अगर भाई है तो वो बहन को परेशान करेगा, बहन है तो भाई को परेशान करेगी, लेकिन बहनें बहनें बड़ी चालाक होती हैं। मतलब बहनें बहनें आपस में तय कर लेती हैं कि ये बात इसको नहीं बतानी है और वो बात मम्मी पापा को नहीं बतानी है। ये चीज़ एक बहुत अच्छी है, लेकिन अब घर में कोई अगर ऐसा है तो भाई क्या किया जाए। महेंद्र दीपन जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं आदरणीय आरजे तरन्नुम मैम जी, बहुत बहुत नमस्ते, मैं महेंद्र दीपन राजस्थान के नागौर ज़िले के गांव रूड़ से हूँ। आपका प्रोग्राम होटो पे तेरी बात सुनकर दिन बन जाता है और इनको मेरा जो होस्ट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र। लिख रहे हैं कि आज का आपका सवाल बहुत ही मज़ेदार है कि घर में चुगलखोर कौन है। तो सच बताऊँ, मेरे घर में मेरी लाडली बेटी मोनिका दीपन से बड़ी कोई चुगलखोर नहीं है। अच्छा, लिख रहे हैं कि वो मेरी सबसे प्यारी और नटखट साथी है, लेकिन साथ ही मेरी सबसे बड़ी राजदार भी है। क्या बात है, अक्सर ऐसा होता है, बल्कि अक्सर क्या, हमेशा ऐसा होता है कि जो बेटियां होती हैं वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा चाहती हैं। और ये भी आपके घर में है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजदार हैं ये थोड़ी अलग बात है। अगर घर में मैं ऐसा कुछ कर लूँ जो मैं अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता तो मेरी बेटी की प्यारी नज़रें मुझे तुरंत पकड़ लेती हैं। बस फिर क्या होना है, वो तुरंत अपना सौदा पक्का करने के लिए मेरे पास आती है और मासूमियत से बोलती है, पापा मुझे मेरी पसंद की चीज़ ला कर दो वरना मैं मम्मी को सब बता दूंगी। और ये जो प्यारी सी ब्लैकमेलिंग है, मुझे हार मानकर उसकी बात मानने पर मजबूर कर देती है। सच कहूँ तो उसकी इन्हीं शरारतों से घर में जो रौनक है वो बनी रहती है। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। सुल्तान रजा साहब का मेल आ गया है, सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तरन्नुम अप्पी और मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत मिस करती है। आहा क्या बात है, वालेकुम अस्सलाम। और लिख रहे हैं आपकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से हैं, लिख रहे हैं जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा, संजीदा भी, सहाना भी, घर वालों ने आपको बुलाया है। और आज के विषय में कैसे ले लिया, सबकी पोल खुलवा देंगे आप क्या? फिलहाल मेरे घर में मैं अब नाम नहीं लूँगा जो है, वरना लड़ाई हो जाएगी। और घर पर आज छोटे भैया की बीवी है, वो कभी कभी ऐसी बातें करती हैं, इधर की उधर करके लड़ाई कर देती हैं। अच्छा हाँ, देखिए चुगलखोरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चुगलखोरी करिए और आप उसको लड़ाई करवा दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत ख़राब बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी मज़ेदार सी चुगलखोरी कोई करता है तो फिर बड़ा मज़ा आता है। और सच में ये सारी जो चीज़ें होती हैं घर में, देखिए चुगलखोरी भी होती है, ब्लैकमेलिंग भी होती है, और कह सकते हैं कि घूस जो है वो भी ली दी जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं बचपने में होती हैं या फिर बड़े होने पर भी होती हैं, तो अच्छा लगता है। और इस तरह की जो हंसी खुशी की बातें होती हैं वो होना अलग बात है। गुलफशा सिद्दीकी जी का मेल आ गया, लिख रही हैं कि मैं संडीला से हूँ और हर घर में एक चुगलखोर है जो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सबसे बड़े चुगलखोर हम खुद होते हैं। अगर हम अपनी बात सबके सामने ना करें तो वो चुगली कर ही नहीं पाएगा। ये बड़े पते की बात कर दी आपने भाई, लेकिन ऐसा हो कहाँ पाता है। कहा जाता है ना, औरतों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है तो वो किसी न किसी को बताती ज़रूर है। और अक्सर ऐसा होता है कि लालच के चक्कर में भाई बहन की चुगलखोरी कर देते हैं या बहन भाई की चुगलखोरी कर जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे लग जाती है आग। लेकिन आग अगर मोहब्बत की हो तो फिर उसको बुझने नहीं देना चाहिए। 1:23 प्रोग्राम, लीजिए 24 मिनट हो गए प्रोग्राम चल रहा है, होटो पे तेरी बात, सुनते रहिए द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: करियर पर है ध्यान,
5: स्पोर्ट्स में करना है ना?
4: पॉजिटिव है फैशन,
5: क्रिएटिव है पैशन,
4: टेक्नोलॉजी में रुचि,
5: बने पर्सनालिटी ऊंची,
4: फॉलो करें ट्रेंड्स,
5: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
4: ओनली ऑन यूथ वेव,
5: यूथ की बात यूथ के साथ,
4: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
5: धड़कन लखनऊ की।
6: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

और सच में मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि बिल्कुल सावन की एकदम तैयारी शुरू हो चुकी है और फिलहाल तैयारी शुरू हो चुकी है नेक्स्ट मेल पढ़ने की. और पढ़ लेते हैं नेक्स्ट मेल. आ गया है बबीता राव जी का. एड्रेस बेली कला गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से मेल कर रही है. मैम जी आपको 12 बजे से सुन रही हूँ. फैब्यूलस प्रोग्राम लग रहा है. आहा क्या बात है. बहुत सारी तारीफें इन्होंने लिखी हैं. लिख रहे हैं कि मैम जी मेरे घर पर चुगलखोर तो मैं खुद ही हूँ. क्या बात है बबीता. लिख रही है कि मेरे भैया और दी जो बात कहेंगे वो घर पर मम्मी पापा को ना बताना वो मैं सबसे पहले बताती हूँ. और घर पर पापा जी हों भैया हों या दी हों या किसी भी मैं वॉट लगाने में सबसे आगे हूँ. अच्छा बबीता. बहुत सारे इन्होंने जो हार्ट हैं वो भेजे हैं और लग तो नहीं रहा कि आप इतनी चुगलखोर हैं लेकिन अब आपने खुद से कबूल दिया है कि आप चुगलखोर हैं तो इसका मतलब आप चुगलखोर हैं. और नेक्स्ट जो मेरे पास मेल आ गया है वो आया है बाबू अंसारी जी का मेल आ गया है. बाबू अंसारी जी ने कहाँ से मेल किया है. बाराबंकी से हैं. लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम आप कैसी हैं. आप टॉपिक के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा भाई है शाहिद जो कोई भी बात हो वो इधर से उधर कर देता है और बहुत ही प्यारी बातें होती हैं. अच्छा अच्छी बातें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिलती है. तो बाबूजी बहुत बहुत बाबू अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मेल किया. रामराज जी का मेल आ गया है. लिख रहे हैं तरन्नुम बिटिया को प्यार भरा नमस्कार. रामराज जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप. और ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से मेल कर रहे हैं रामराज राजू भानु शंकर भैया पप्पू पासी मनीष नीरज मधु बजरंगी काका. सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरा तरन्नुम बिटिया जब आप कहते हैं ना रामराज जी बड़ा अच्छा लगता है और आप रहे और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे बस यही हम चाहते हैं. और लिख रहे हैं कि हमारे घर में चुगली खोरी करने वाला चुगलखोर घर में नहीं है लेकिन हमारे गांव में बहुत है चुगली करते हैं इसलिए अपना नाम ऊंचा करने के लिए और दूसरों की नज़रों में ऊंचा बनने के लिए चुगली करते हैं. अच्छा मतलब चुगलखोर हैं हर तरफ हैं कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर लोग चुगली ना करते हों. बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मेल किया. सुधाकर जाधव जी का मेल है. लिख रहे हैं हमारे घर के बाजू में एक शिजारी रहती है वो बहुत चुगली खोर है बहुत औरत ने जाग देती है. और बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जाधव जी आप की थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो हम लोगों से अलग है समझ में नहीं आ पाती लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया. बसंत कुमार सिन्हा जी हैं. लिख रहे हैं घर में चुगलखोर तो देखिए सभी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा आदमी होता है जो किसी की चुगली करना करता है लेकिन ये गलत बात है. मैं रेडियो सुनता हूँ मेरी चुगली कर देती है कि मैं रेडियो सुनता रहता और अजय रिमी तानु श्री गुप्ता और नन्हे मुन्ने ने भेजा है ये मेल. कहाँ से. कैलकटा से भेजा है बसंत कुमार सिन्हा शॉ ने. बहुत बहुत धन्यवाद जी बसंत जी और अच्छा लगा कि आपने हमें मेल किया. 1:37 हो गए हैं और अब वक्त हो गया है कि भाई इस तरह की जो चुगली वाली बातें हो रही हैं और लोग बता रहे हैं कि लोग अक्सर घर में घुस भी चल जाते हैं ना कि ये बात मत बताना ये लो इतने पैसे रख लो ये लो ये आम खा लो ये लो ये कर लो वो कर लो तो तुम ऐसा कर लो. तो अब सौदा जो है ना वो एकदम पक्का होना चाहिए और खरा होना चाहिए भले ही कोई आपकी चुगली करे या आपकी चुगली ना करे.

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
5: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

और धन टनन तो चला गया और अब नेक्स्ट ट्रैक भी आने वाला है आप तक, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट जो मेल आ चुके हैं उनका क्या, वो भी तो भाई पढ़ना है हमें, क्योंकि 1:47 हो चुके हैं. उसके बाद तो जो मेल है ना उनकी झड़ी लग जाती है, मतलब ऐसी बरसात होती है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कि बस पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते उसमें भी लोग इतने नाराज़ हो जाते हैं, इतने नाराज़ हो जाते हैं कि एक दूसरे से चुगली तो ज़रूर करते होंगे कि देखा आज तरनू आई थी लेकिन हमारा मेल नहीं पढ़ा, हम ही को नज़रअंदाज करती हैं, ऐसा करती वैसा करती है, सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाती हैं. बस कैसे पता चल जाती हैं ये मत पूछिएगा. फिलहाल जो अभी मेल आप लोगों ने की है उनको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं. अहमद नवाब का मेल आ गया है, लिख रहे हैं, हेलो गुड आफ्टरनून अप्पी, इनको सॉन्ग बड़े अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी सी हमको एक सलाह भी दी है कि पॉप टाइम प्रोग्राम करिए, वो आपके सॉन्ग्स धमाल कर देंगे. अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको, बिल्कुल करेंगे पॉप टाइम. और आगे लिख रहे हैं कि आप मुझे अपना बॉडीगार्ड रख लीजिए, एकदम फ्री सेवा करूंगी आपकी. क्या बात है अमन. और लिख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक आपने लिया है वो उसको दिल इनका खुश हो गया है और मेरे घर में 3 लोग हैं, बड़ी चच्ची, मंजली चच्ची और मेरी खाला अम्मी, टॉप लेवल चुगलखोर. और हम तो फ़ोन ही नहीं करते हैं तीनों को और हम 2 भाई बहन हैं, दोनों में से कोई चुगलखोर नहीं है. मेरा भाई मुझसे 8 साल छोटा है, मेरी इज्जत करता है और अप्पी से डरता भी है. आपने बना के ऐसा रखा होगा अपना ऑरा कि आपसे लोग डरते हैं अमन, और बहुत अच्छा लगा.

के आपने हमें मेल किया. वकील अहमद साहब जी हैं, मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अगर घर में कोई बात हो तो चुगली चाची करती हैं और हमारे यहाँ बारिश हो रही है. कहाँ बारिश हो रही है भाई? सीतापुर. साहिबा अंसारी हैं, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी, पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी और अमन नवाब. ये देखिए सारा जो एक गिरोह है ये सब वहीं पर हैं, एक दूसरे से मेल करते हैं. बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग एक दूसरे को मेल में अपने नाम शामिल करते हैं, बड़ा ही एक यूनिटी जो है वो दर्शाता है. रामेश्वर जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं तरंगम बहन जी को मेरा सा प्रेम नमस्कार. रामेश्वर हमें हमेशा तरंगम कहते हैं, कानपुर देहात से मेल कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं. इनको प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है और लिख रहे हैं कि हर घर में एक चुगलखोर होता है. लेकिन रामेश्वर जी आपने ये नहीं लिखा कि आपके घर में कौन चुगलखोर है. कहीं ऐसा तो नहीं कि इशारा आप ही की तरफ है. फिलहाल ग्राम पोस्ट मुंगी सापुर कानपुर देहात से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधु, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया. बहुत बहुत धन्यवाद जी कठेरिया फैमिली को कि आपने हमें मेल किया. और बबीता राव जी हैं और लिख रहे हैं कि मेल कर रही हैं, फिर से कर रही हैं कि गाँव पास पड़ोस वाली चुगली से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ. और आपको लगता है कि मैं इन सब में रहती हूँ ना? कभी नहीं. हमें लगता है ऐसा है कि आप ऐसे नहीं करती हैं. फिलहाल अब देखिए चुगली की बातें भी हो रही हैं और मेल की बातें भी हो रही हैं, गाने की बातें भी हो रही हैं, खाने की भी बातें हो रही हैं और साथ ही साथ वक्त जो है उसकी भी बातें हो रही हैं. सारी बातें तो ऐसी ही चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आ गया है आप तक. और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हॉट मेल तरन्नुम के साथ.

जी हमें पता है कि आपका जो दिल है वो रेनबो ने चुरा के रख लिया है, और इसीलिए आप लोग लगातार हम लोगों को मेल करते हैं और आपके जो मेल हैं उनको हम लोग शामिल भी करते हैं। और अब वक्त हो गया है कि एक और ट्रैक आप तक पहुंचा दें और इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। तो प्रोग्राम होटो पे तेरी बात को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाज़त तरन्नुम को। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है हॉट मेल, और ऑलरेडी बहुत सारे मेल जो हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, बस पढ़ना उन्हें बाकी है और आपके जो रिक्वेस्टेड नंबर हैं उनको भी प्ले करना बाकी है। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की, बोले तो FM रेनबो।

नमस्कार। दोपहर के 2 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में आयोजित समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कि विद्यार्थी सोशल मीडिया में न्यूनतम समय लगाएं, सोशल मीडिया के ज्यादातर तथ्य झूठे होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे यहाँ ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। राजकीय इंटर कॉलेज हो या प्रबंधकीय व्यवस्था में सहायता प्राप्त विद्यालय या संस्कृत के विद्यालय, इन सभी विद्यालयों के लिए अनुदान की व्यवस्था सरकार ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दर्शन में प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की, उनके प्रार्थना पत्र लिए और उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को मुख्यमंत्री ने सुना और संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण समय सीमा के भीतर हो, विलम्ब होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कुछ बच्चों से शिक्षा के बारे में भी पूछा और अभिभावकों से कहा कि बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा ही सशक्त भारत की नींव है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार आज अमरोहा पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की असली ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहकर संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपये रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इससे 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जी 2:03 हो चुके हैं, प्रोग्राम हॉट मेल लेकर हाजिर है तरन्नुम। पहले ये ट्रैक, उसके बाद पढ़ते हैं आप सभी के मेल। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

और जो गाना पुराना था मतलब चुनर चुनर, वो गाने में मेरे हिसाब से ये जो गाना हमने प्ले किया अभी की है जवानी है तो इश्क होना है ट्रैक, फिल्म का ये ट्रैक था, तो जो पुराना गाना है वो भाई लाजवाब है। इसी तरह जो रेनबो है, रेनबो की जो बराबरी है वो शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि जो रेनबो है वो काफ़ी पुराना है और लोगों के दिलों में इस तरह से दिल बनकर बैठ गया है कि उसको दिल से निकालना बहुत ही बड़े दिल की बात है। फिलहाल आप लोगों के जो मेल आ चुके हैं उनको हम शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए, और मेल पढ़ते हैं। उत्तम कुमार भगत जी का मेल आ गया है, पाकुड़ झारखंड से हैं ये। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसी तासु अडवानंद, सत्यमानंद और बोड़ा गाहची पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, बहुत बहुत धन्यवाद गाने की फरमाइश के साथ उन्होंने मेल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने हमें मेल किया। अहमद फुलवाले जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के जो मेल आते हैं उनसे तो फिर जो हमारा स्टूडियो है बिल्कुल रोशन और मुनव्वर हो जाता है। और साथ ही साथ आगे लिख रहे हैं कि भाई आप नज़रअंदाज मत करिएगा, छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफारजू जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, कॉपसड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं बिटिया आमना नसरीन, आसमा परमीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया जी मेल करने के लिए। सुधांशु इसका मेल है, राधे राधे लिख रहे हैं और लिख रहे हैं भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटांजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गाने की फरमाइश की है इन्होंने, लेकिन जो गाने की फरमाइश आपने की है सुधांशु उस तरह का तो जो मौसम है वो तो है ही नहीं। अच्छा आगे दूसरा भी गाना लिखा है इन्होंने और दो तीन इन्होंने गाने लिखे हैं, गाने की फरमाइश अच्छी है, ज़रूर प्ले करेंगे आपका ट्रैक हम। भाई मूसा शेख का मेल आ गया है और भाई मूसा शेख जी आपने हमें आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, नो सब्जेक्ट लिख के आ रहा है। इसके अलावा जो मेरे पास मेल आया है बिट्टू गगनीजा जी का, लिख रहे हैं राम राम जी, राम राम आपको भी बिट्टू जी, कोई भी गाना सुनवा दीजिए। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। आपकी पसंद का ट्रैक हम जरूर प्ले करेंगे। अकरम हुसैन प्रिंस का मेल आ गया है और इसके अलावा सतीश शनेजा जी का भी मेल आ गया, नमस्कार शालिनी बैना जी, इनको शालिनी की आवाज़ लग रही है, शालिनी नहीं है सतीश जी, ये तरन्नुम है इधर, लेकिन आपने हमें मेल किया तो चाहे शालिनी हो चाहे तरन्नुम हो चाहे कोई भी हो आप लोगों का मेल हम ज़रूर शामिल करेंगे। गाने की फरमाइश चंडीगढ़ सिटी

की है इन्हें, सतीश अनिजा बिबलानी जा, धन्यवाद। धन्यवाद सतीश जी, आपको भी बहुत बहुत। नरेश जी का भी मेरे पास मेल आ गया है। नरेश जी लिख रहे हैं, नमस्कार जी, आपको मान योग्य आरजे जी, दीदी जी, प्लीज़ पूरे नाम पढ़ना। हमेशा इनकी ये फरमाइश रहती है, गाना बजे या ना बजे लेकिन इनके जो नाम है ना वो पूरे पढ़ना चाहिए। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाड़ू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, शुक्रिया शामिल करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें मेल कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर जी का मेल आ गया, ग्राम करेली जिला बरेली से है। मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी, कोई भी गाना सुनवा दीजिए चलेगा। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा, कोई भी गाना थोड़ी ना सुनवाएंगे, जो आप लोगों की पसंद है, जो आप लोगों ने फरमाइश की है वो गाना हमने क्यों करके रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि वो हम लोग थोड़ा सा छुपा के रखते हैं कि किसकी पसंद के ये गाने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब किसी का नाम लो तो फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए बिना नोक झोंक के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी गुस्से के ट्रैक आप तक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

और भाई जल्दी से केयर कर लेते हैं, आप लोगों ने जो हमें मेल किए हैं उनको पढ़ लेते हैं. और बहुत सारे मेल हैं हमारे पास आ चुके हैं. 2:17 का वक्त भी हो चुका है और सबसे पहले जो इस लम्हे जो शुरुआत करते हैं मेल पढ़ने की, वो मेल आया है नवाब खान साहब का. मेल कर रहे हैं मुंबई से, वर्ली मुंबई से हैं नवाब खान. इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, एनी सॉन्ग, बहुत खूबसूरत सा मेल रोज़ के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें मेल किया. हितेंद्र दास जी का मेल आ गया है, लिख रहे हैं, हेलो आरजी जी, नमस्कार, हाउ आर यू? वेरी फाइन हितेंद्र जी, आप भी उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे. आसाम से मेल किया है और गाने की फरमाइश नहीं लिखी है, लेकिन हम समझ गए हैं कि आपको गाना सुनना है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के लिए ही है. संदीप मक्कड़ साहब का मेल आ गया है, गाने की फरमाइश की है. ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से हैं, मेल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी मेल करने के लिए. अब्बासी का मेल आ गया है, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सोहान, अरजान अबान और अब्बासी परिवार के जितने भी मेम्बर हैं उनकी तरफ से मेल है. बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए. आफताब अंसारी का मेल आ गया है, प्यारी बहना तरन्नुम जी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और सबको खुशियां बांटते रहिए. क्या बात है, आप भी ऐसे ही खुश रहिए और सबको खुशियां आप देते रहिए. शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए. और दोबारा मेल आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ इस प्रोग्राम में आप एक ही बार मेल कीजिएगा, आपने बहुत बार मेल कर दिया है. विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर पोस्ट, रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर, हॉट मेल प्रस्तुत करने वाली तरन्नुम बहन जी को शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून. आज का मौसम बहुत अच्छा है, नो डाउट विनीत जी, आज का मौसम बहुत अच्छा है और गाने भी इनको अच्छे लग रहे हैं. और धन्यवाद आपका अच्छे गाने बजाने के लिए. कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको ये नाम लेना चाहते हैं, भाई आपने नाम तो लिया नहीं, अच्छा लिया है, रिंकी पिंकी हैं.

परवीन अंसारी सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, ओंकार सीतापुर से, आज़ाद सिमरी से। और गाने की फरमाइश इन्होंने की है, ज़रूर प्ले करेंगे आपकी पसंद का ट्रैक। तुलसी मस्कीन जी का मेल आ गया है। होस्ट तरन्नुम जी, आप आई बाहर आई, आहा क्या बात है, क्या बटर लगा रहे हैं, मज़ा आ गया बिल्कुल। आगे लिख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि 2-3 मेल या 4 मेल करें, उसको मत शामिल करिए। अच्छा, ये बिल्कुल सही आपने बात कही है, लेकिन अब आप भी एक ही बार ही मेल कीजिएगा। नाइस सॉन्ग इनको लगा, चुनर चुनर जो प्ले किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी जी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचित खुराना, केशुरिधान खुराना, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। शाहरून नूर अंसारी जी का मेल, कोई भी गाना सुनवा दिए। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से हैं शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजी प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। अक्रम हुसैन प्रिंस साहब का भी मेल आ गया है, सीतामढ़ी बिहार से, नूर महल महसौल, मुसरत जहाँ नाज शिक्षिका हैं, तलस जहाँ नाज, फरज जहाँ नाज, रिफत जहाँ नाज, नुजरत जहाँ नाज, शाजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, और हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें। देखिए आप लोग मेल करें या ना करें, लेकिन आप लोग हमेशा हम लोगों के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको हम शामिल रखते हैं, और बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमें मेल करते हैं। बबलेश पनवार जी का मेल आ गया है, पारस मणि रेडियो श्रोता संघ, गांधी चौक बाड़मेर, राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अच्छा गाने का बोल है, हमें लगा इन्होंने सलाम भी भेजा है, बहुत अच्छा लगा आपने हमें मेल किया। संजय ढिंग्या जी हैं मेल कर रहे हैं, बागपत से, उत्तर प्रदेश से, संजय ढिंग्या, नमन ढिंग्या, पा ढिंग्या, और गाने की फरमाइश उन्होंने की है। गाना ज़रूर प्ले होगा, लेकिन उससे पहले एक किसी ने गाना पसंद किया था और गाना भाई सुनवाना मेरा पूरा पूरा फ़र्ज़ है कि हम वो गाना आप तक पहुँचाएँ, तो चलिए पहुँचा देते हैं।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

और ट्रैक चला गया, लेकिन मेल जो है वो लगातार हमारे पास आ रहे हैं। 2:27 का वक्त, प्रमिला जैन जी का मेल आ गया है मेरे पास। वीरम गांव गुजरात से हैं अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भावेश कुमार भावसार, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने हमें मेल किया। और केम छो आगे और क्या पूछना है ये थोड़ा सा और सीखेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे। उत्तम कुमार भगत जी का मेल आ गया है। तरन्नुम जी आदाब, कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छी होंगी। जी बिल्कुल अच्छे हैं उत्तम कुमार जी, और आप भी बहुत अच्छे होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पाकुड़ झारखंड से आपने हमें मेल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाकरे का मेल आ गया है मेरे पास। शाहजी नगर देंगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। गाने की फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए, और आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। तेज बहादुर यादव जी का मेल, तरन्नुम मैम जी को प्यार भरा नमस्कार, सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं तेज बहादुर जी, आपको भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। और बहुत अच्छे इनको सारे प्रोग्राम लग रहे हैं, और किसी भी सदा बहार गीत में इन्हें शामिल करने की गुजारिश की है। गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं और गुरुग्राम हरियाणा में सुन रहे हैं तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित और बेबी वानिका। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। सुदर्शन शाह का मेल आ गया है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों ने हमें मेल किया। दिलीप कुमार जी का मेल, मूंदी चक भागलपुर बिहार से हैं दिलीप कुमार सोनी। गाने की फरमाइश के साथ मेल किया दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, कैसे हैं आप? संदीप मक्कड़ जी का मेल आ गया है। तरन्नुम जी गुड आफ्टरनून, राम राम, राम राम आपको जी। संदीप मक्कड़ जी, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। गगनदीप थांडी

मेला गया है। और प्रसारक साहिब जी को स्नेह भरा नमस्कार, आपको भी प्यार भरा मेरा नमस्कार आदाब। कैसे हैं आप? टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वामिका एंड वाणी थांडी, बहुत बहुत धन्यवाद मेल करने के लिए। संदीप मक्कड़ अगेन मेल कर रहे हैं, संदीप जी आपका मेल शामिल हो गया। फागुराम यादव जी का मेल आ गया है, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मेल किया। आपकी जो फरमाइश है उसका हम कोशिश करेंगे गाने को प्ले करने के लिए। शंकर लाल जायसवाल जी हैं नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से हैं, शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए, ज़रूर आपके गाने की फरमाइश पूरी होगी। आफ्ताब अंसारी जी का भी मेल आ गया है, आफ्ताब साहब हम शायद आपका मेल शामिल कर चुके हैं और इसलिए प्लीज़ आप हमें दोबारा मेल मत कीजिए। मोहसिन हाशमी जी का मेल आ गया है, आगे इन्होंने क्या लिखा है, अपनी पसंद का कोई भी गाना सुनवा दें। मोहसिन हाशमी जी आपने कहाँ से हमें मेल किया ये आपने हमें मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम आपका जो एड्रेस है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। हितेंद्र दास जी का, हेलो आरजे जी नमस्कार, आसाम से एक बार फिर से मेल किया हितेंद्र जी, आपका मेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं इसलिए प्लीज़ अब मेल मत कीजिए। इसके अलावा जो मेल है बहुत सारे हैं, शरफुद्दीन अंसारी का मेल आ गया है, आदाब किसी भी गीत में शामिल करें, बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुनीत रमेश साहू, और डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा, दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य सारिमपुर बक्सर से हैं, राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। अब आप लोगों ने जो गाना पसंद किया उसमें से एक गाना है, और ये जब गाना आया था और जब पिक्चर आई थी तो ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई थी, इसके जो डांस नंबर्स हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है, जो डांस के स्टेप्स हैं वो भी सब बहुत ज़्यादा हिट हुए थे। अब थोड़ा सा जो सीक्रेट था ना उसको रिवील करते हैं और पहुँचाते हैं ट्रैक आप तक।

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ।

जी हाँ, आंखों से आपने क्या कहा ये तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपने दिल से जो कहा और आपने लिखा वो हम तक पहुंचा दिया, वो हम जरूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रणधीर गुप्ता जी का भी मेल आ गया मेरे पास, लिख रहे हैं कि भाई कैसे हैं आप और गाने की फरमाइश की है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हम आपने हमें मेल किया और हम आपकी जो फरमाइश है उसको ज़रूर हम शामिल करेंगे। साई गायकवाड़ जी का मेल आ गया, हॉटमेल सादर करने वाली तरानू दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साई जी, आप लोग की जो मोहब्बत की जो लैंग्वेज होती है ना उसको हम लोग समझ जाते हैं। गुड आफ्टरनून जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। गाने की फरमाइश की है, ओम रेडियो श्रोता संघ कॉलोनी नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और इसके अलावा जो मेल आ गया सुरेश नारंग जी का मेल आ गया है, बहुत ही खूबसूरत सा मेल भेजा है, खूबसूरत से सजा के भेजा है। और रिस्पेक्टेड जी लिख रहे हैं कि अच्छा सीधे इन्होंने बात की है, बस रिस्पेक्टेड लिखा, गाने की फरमाइश कर दी है, प्यारा सा गीत सुनवाना है। सहारनपुर से हैं अनु, मोना, अलका, विक्की, आशा, सोनाली, एस के नारंग, आज ये गीत सुनवा दिए जी। और ये भी लिखा है कि इन्होंने कौन से फ़ोन से हमें मेल किया है। दिनेश वर्मा जी का भी मेल आ गया है, दिनेश वर्मा जी रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार साहब का मेल आ गया है, किसी भी गाने में शामिल करने के लिए कह रहे हैं, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं, अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, तहे दिल से शुक्रिया आपका, तहे दिल से आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया। पवन कुमार जी का मेल आ गया है, सिंहपुर सिधौली सीतापुर से, घर पर हूँ, कॉलेज बंद है, मैम आप कैसी हैं? बिल्कुल अच्छे हैं पवन, उम्मीद है आप भी बहुत अच्छे होंगे, इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कोई भी गाना सुनवा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। दीपेश वर्मा जी का है, हमेशा की तरह जय जोहार कर रहे हैं, गाने की फरमाइश कर रहे हैं, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूर्ण वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गाने की फरमाइश बहुत अच्छी आज आपने की है, गाना ज़रूर प्ले होगा। सुरेश नारंग जी अगेन मेल कर रहे हैं, सुरेश जी आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं। रोजी डिकैस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हैं, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल वेलस डिकैस्ट्रो, बहुत बहुत धन्यवाद जी, गाने की फरमाइश इन्होंने भी की है और आपका गाना हम ज़रूर प्ले करेंगे। ताज मोहम्मद साहब का भी मेल आ गया है, ताज मोहम्मद साहब आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, फिर से लिखा है भाई, ऐसे होता है जब इंसान अपनी मोहब्बत करता है अपने शहर से, अपने वतन से और अपने जो भी आसपास के, कहते हैं ना कि एक अगर कोई जानवर भी मिल जाता है अपने मोहल्ले का तो उसको देख के, अगर आप कहीं बाहर हैं तो उसको देख के जो खुशी होती है उसको लफ्ज़ों में पिरोना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो गाने आप लोग हमें भेजते हैं उनको भी बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्ट करना और कोई भी एक ट्रैक आप तक पहुंचाना, लेकिन एक जो ट्रैक है वो इसमें से हमने चूज़ किया, प्ले कर दिया और पहुँचा दिया आप तक। टाइम आपको बता दें 2:42, प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल, तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो एफएम रेनबो।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी, घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और कभी कभी ऐसा लगे कि जाऊं मैं तुझे छोड़ के, लेकिन सच में ऐसा लग रहा है कि आपको इस प्रोग्राम से छोड़ के जाने के लिए हमें कहना होगा, लेकिन जाते जाते हम आपके जो मेल है

को जरूर पढ़ेंगे। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से मेल आ गया है। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्ण और पीहू स्वर्णकार धन्यवाद कर रहे हैं। लालगिरी जी का मेल आ गया है, नवी हसन साहब का मेल आ गया है, पंकज शर्मा जी का भी मेल आ गया, गुड मॉर्निंग जी। और गाने की फरमाइश लिखी है मॉडल टाउन करनाल से हैं, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, बहुत सारे लोगों के नाम भेजे हैं। जय के मेल आ गए हैं और बहुत देर में जय को होश आया कि भाई इस प्रोग्राम में मेल करना है और उन्होंने इकट्ठा फ़ोन पे मैसेज टाइप किया और हमें मेल कर दिए हैं। कम से कम 10 मेल इन्होंने किए हैं। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन खुरवाल, दीपांशु खुरवाल, गाने की फरमाइश तो बड़ी ज़बरदस्त की है। बहुत सोच रहे होंगे तब इन्हें लगा कि 2:55 हुए हैं तो चलो भाई मेल कर देते हैं। राजकमल यादव जी का मेल आ गया है, ग्राम बरैया पोस्ट सूरतगंज बाराबंकी से, नमस्ते मैम जी, कैसी हैं आप, मुझे ये गाना सुनना है, रमजान मास्टर सिलाई करते हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। राधे कुमार विद्यार्थी जी हैं मेल कर रहे हैं, कहाँ से, गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, बुल्की वाली और फलना झा का हमारे पास मेल आ गया। निसार अली साहब का भी मेल आया है, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू आगे लिख रहे हैं कि आपका हर पल खुशियों से भरा हो। सुनील पाठक जी का भी मेल आ गया है, कहाँ से मेल कर रहे हैं, प्रिय प्रस्तुतकर्ता मैडम तरन्नम जी, सादर प्रणाम जी, प्यार भरा प्रणाम आपको भी हमारा। और कहाँ से, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और साथ ही साथ भाई सुच्चा सिंह पाठक, बहुत बहुत धन्यवाद जी मेल करने के लिए। और अब 2:56 हो गए हैं तो भाई अब इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। तरन्नुम को मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जिसका नाम है सतरंगी दुनिया। सुनते रहिए सतरंगी चैनल, बोले तो रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार। दोपहर के 3 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। उन्होंने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता देश की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। गोरखपुर में धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर गीडा के रूप में विकसित होगी। करीब 7000 एकड़ में विकसित होने वाली इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में 100 एकड़ से अधिक भूखंडों का आवंटन हो चुका है और अब दूसरे चरण के आवंटन के तहत 400 एकड़ से अधिक औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक का कहना है कि ये टाउनशिप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप है और यहां रेल कनेक्टिविटी भी होने जा रही है। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश ने मई 2026 में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 8728 करोड़ रुपए का जीएसटी राजस्व संग्रह किया है, जो मई 2025 के 7732 करोड़ रुपए की तुलना में 13% अधिक है। ये वृद्धि राज्य में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक विस्तार तथा कर अनुपालन में सुधार को दर्शाती है। इटावा में कल देर शाम आई तेज रफ्तार आंधी से एक दिल के केशवपुर गांव और भरथना क्षेत्र में दीवारें गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया कि एसडीएम लेखपाल तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर समीक्षा की है। शासन के निर्देश पर तत्काल मुआवजा भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लगभग 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिनका उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इसी क्रम में प्रदेश के जिलों में मेधावियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। चंदौली, वाराणसी, फरक्खाबाद, पीलीभीत, बलरामपुर में जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी ने छात्रों को स्मृति चिन्ह सम्मान राशि वितरित करते हुए उन्हें निर्धारित लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़, घंटे तरन्नुम के साथ।

जी तीन तीन हो चुके हैं इससे पहले कि हम कहें कि तीन पांच करने चलते हैं तो आप भी नाराज हो जाएंगे। और फिलहाल शो को शुरू कर देते हैं। 3:03 हो चुके हैं। प्रोग्राम सतरंगी दुनिया लेकर हाजिर है तरन्नुम। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो पहुंचाएंगे हम आप तक। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

कैसे कैसे को दिया है, वैसे वैसे को दिया है, उसको क्यों दिया है, इसको क्यों दिया है, ये सारी बातें तो भाई एक किनार है, लेकिन एक चीज़ है जो खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, जो भी आप कहते हैं, सबको दी है, और वो है खूबसूरत सा दिल। और हमेशा लोग कहते हैं कि भाई दिल बड़ा नाजुक होता है, दिल जो है वो किसी की सुनता नहीं है, दिल है कि मानता नहीं, दिल जो है वो बहुत ही बेदिल हो जाता है, मतलब दिल को लेके करोड़ों तरह की तो अरबों तरह की बातें होती हैं, और दिल जो है वो बहुत नाजुक है, दिल को बहुत ही कुम्हलाना नहीं चाहिए, दिल को मुरझाना नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दिल जो है वो कितना काम का है ये तो लोग सोचते नहीं है। आप कहेंगे भाई इसमें काम की क्या बात है, भाई दिल धड़क रहा है तो दिल धड़क रहा है, लेकिन दिल जो है वो उसका और क्या काम है, दिल का काम है कि दिल को समझाएं, दिल ही तो बताता है ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अच्छी अच्छी बातें दिल में आती हैं, लेकिन दिमाग जो ऊपर बैठ के आदेश देता है ना, नहीं नहीं ये नहीं करना है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, तो काफ़ी चीज़ कह सकते हैं, काफ़ी जो हमारी लाइफ होती है वो एक्टिंग में गुजर जाती है। एक्टिंग मीन्स कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कहते हैं, क्योंकि कभी कभी समाज का, माशरे का भी ध्यान रखना पड़ता है, और कभी कभी क्या है कि फैमिली का ध्यान रखना पड़ता है, कभी रिश्तों की दुहाई है तो कभी कुछ है। एनीवेज दिल तो दिल है, लेकिन दिल को क्या आप जानते हैं कि सिर्फ दिल का काम खून को पंप नहीं करना है, सिर्फ वही नहीं करता है कि वो खून को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, बल्कि इतना दबाव बनाता है कि अगर खून को फेंकने को कहा जाए ब्लड को, तो वो 30 फीट दूर तक ब्लड को फेंक सकता है, और एक नॉर्मल इंसानी दिल जो है वो दिन में 1,00,000 बार धड़कता है, जरा सोचिए, और लगभग 7,000 से 8,000 लीटर खून पंप करता है बिना रुके, बिना छुट्टी के, और रोज एक छोटे टैंकर जितना ब्लड वो शरीर में, हमारी बॉडी में घुमा देता है। अब आप सोचिए जरा कि कितना नाजुक है दिल, और कितना कमजोर है ये दिल, और कितना दिल ये बेचारा क्या कह सकते हैं इसको कि ऐसा है वैसा है, लेकिन काम आप देखिए ज़रा, काम बिना थके बिना रुके कितना करता है। अब ये हमारा और आपका फ़र्ज बनता है कि हम दिल को किस हद तक हेल्दी रखते हैं, वेल्दी रखते हैं और फाइन रखते हैं।

और 3:12 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया। और इस प्रोग्राम में मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसे जो फैक्ट होते हैं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं, कभी कभी ये होता है कि हम लोगों के जहन में वो चीज़ नहीं आ पाती है, कभी कभी ये भी होता है कि लोग जो दूसरे बताते हैं वो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है। और अक्सर इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अगर रहने की बात करें, खाने की बात करें, तो ना मालूम कितने ज़्यादा खाने हैं जो लोग खाते हैं, ना मालूम कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लोग पहनते हैं, कितनी तरह के ट्रेडिशन है, कितनी तरह की चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हो रही हैं। अब अगर रहने के देखिए बात करें तो एक जगह इस दुनिया में ऐसी है जहाँ लोग ज़मीन के अंदर रहते हैं, नहीं मतलब मरने के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, जिंदा रह के वो लोग ज़मीन के अंदर रहते हैं। और इतनी गर्मी होती है यहाँ कि यहाँ पे लोगों ने अपने घर, होटल और चर्च ये सारे अंडरग्राउंड बना लिए हैं, और इस शहर को अंडरग्राउंड टाउन कहा जाता है। और यहाँ के जो घर हैं ना, वो भी चट्टानों को खोद कर बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं आपको बता दें, कूबर पेडी ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं कि ज़मीन के अंदर घर है, सोचिए रेस्टोरेंट है, होटल है, चर्च है। अब ज़रा सोचिए कि ज़मीन के अंदर अंदर ये लोग सब चल रहे होंगे, ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है इन लोगों को पता ही नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या है कि भाई ज़मीन के ऊपर रहते हैं लेकिन अंदर की कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती। तो ये दुनिया है, और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया गोल है। दुनिया गोल में, जब दुनिया गोल गोल घूमती रहती है, तो ना मालूम कितनी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में गोल गोल घूमती रहती हैं और लोगों को घुमाती भी रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है हमारे पास, लेकिन उससे पहले दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो FM,
2: जरा मेरी फरमाइश का गाना सुना दीजिए।
3: What is mobile number? What is your style number?
4: What is your style number? करो क्या dial number?
5: हेलो, आप असम रेनबो से बोल रहे हैं?
1: जी हाँ, अपनी फरमाइश का गाना बताएं। अगर आप भी चाहते हैं FM रेनबो से बात करना फरमाइशी गानों के साथ, तो सुनना ना भूलें कार्यक्रम हेलो FM हर रोज शाम 7 बजे।

अब देखिए इश्क जो है वो तो जो ये मतलब गाने में कह रही है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इश्क जो होता है वो कहाँ से होता है भाई? दिल बताता है कि सामने वाला इंसान अच्छा लग रहा है, सामने वाले की कुछ बातें अच्छी लगने लगती हैं, दिमाग में भी वो सिग्नल्स जाने लगते हैं, दिमाग भी कहने लगता है कि हाँ भाई ये सही तो है मामला। उसके बाद फिर दिमाग बार बार सोचता रहता है, फिर दिमाग ये कहता है कि भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन दिमाग जो है वो ये सारे जो मेल हैं जो मैसेजेस हैं दिल के वो तो भेजता है इमोशंस के, लेकिन दिमाग जो है वो एक काम और भी बहुत अच्छा करता है, पता है आपको? और वो काम ये है कि अगर इंसान किसी बहुत ज़रूरी काम में या फिर ख़तरे में होता है तो आप देखिए दिमाग कितनी तेज़ी से काम करने लगता है। और हमेशा कहा भी यही जाता है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का 101% यानी 100% इस्तेमाल करते हों, 25% से ज़्यादा इस्तेमाल एक नॉर्मल इंसान जो है वो अपने दिमाग का करता ही नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा मेडिकल कहती है, साइंस कहती है। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब बहुत ज़रूरी काम है या अचानक से कोई ख़तरा आ जाता है तो दिमाग कुछ वक्त के लिए जो हमारे दर्द के सिग्नल्स होते हैं जो दिमाग तक पहुंचते हैं, अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, सर में दर्द है, क्या किया जाए? लेकिन जब इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है और या फिर काम जो है वो करना ही करना है तो फिर कुछ समय के लिए दर्द के जो सिग्नल्स होते हैं उनको दिमाग क्या करता है, दबा देता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो काम करती रहे। इसी वजह से कई बार चोट लगने के बावजूद दर्द बाद में महसूस होता है, मतलब दर्द जो है वो हमेशा चोट की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उससे नहीं बल्कि दिमाग की जो प्रायोरिटी होती है उससे तय होता है। हमारा दिमाग सिर्फ सोचता नहीं बल्कि हालात के हिसाब से हमें बचाने का फैसला भी करता है। हे कितना अच्छा है दिमाग हमारा। अब ये बात अलग है कि है कि नहीं है, ये भाई हम नहीं बता सकते हैं कि दिमाग है कि नहीं है मेरे पास, वो सब आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल ये ज़रूर है कि हम एक ट्रैक है उसे प्ले करते हैं आपके लिए। 3:26 प्रोग्राम सतरंगी दुनिया, सुनते रहिए सतरंगी चैनल, बोले तो रेनबो।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: ओ दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है,
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन,
2: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का,
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।

और 3:36 हो चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि जब छोटे होते थे तो बहुत सवाल करते थे घर में कि भाई ये बताइए कि ये जो हवाई जहाज़ है ये कैसे उड़ता है, इसके अंदर कौन बैठता है, इसकी सीट कितनी होती है, ये सारे मतलब स्टूपिड से सवाल होते थे। और स्टूपिड क्या बल्कि बच्चे जो होते हैं वो बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि जब एरोप्लेन उड़ता है और अक्सर बच्चे भी बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं। जैसे अभी किसी ने एक बच्चे ने हमसे सवाल किया कि बताइए कि ये ग्रीन लाइट और रेड लाइट एरोप्लेन में क्यों लगी होती है, क्योंकि ऊपर भी क्या ऐसे ट्रैफिक होता है, ऊपर भी क्या ऐसे रेड सिग्नल्स होते हैं, ग्रीन सिग्नल्स होते हैं। तो दिमाग में आया कि भाई बात तो सही है, होती है क्या लाइट ऐसी। बहुत ध्यान दिया तो जो उसके पंख होते हैं उस पर लाइट देखी, लाइट ग्रीन दिखी और रेड दिखी। तो ज़्यादातर जो कमर्शियल एरोप्लेन है उनमें एक पंख पर हरी लाइट होती है और दूसरे जो पंख उनका कहलाता है उस पर रेड लाइट होती है। तो ये बाएं तरफ क्यों होती है रेड लाइट है, और जो हरी वाली लाइट है ये दाहिने तरफ क्यों होती है। दरअसल ये इसलिए होती है क्योंकि जो प्लेन है वो किस डायरेक्शन से आ रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरे जो प्लेन्स होते हैं उनके पायलट को समझाने में मदद करती है, ताकि आसमान में ही कोई बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हरी और लाल रंग ये बड़ा काम का होता है। मतलब लाल रंग आप देखिए शादी में भी लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लाल रंग गुस्से को भी कहा जाता है, लाल रंग कहा जाता है शोखी भरा होता है, और हरा बहुत ही कूल कलर कहा जाता है। हरा कहा जाता है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत टेंशन में हैं, अगर आप हरियाली देखना शुरू कर देते हैं तो जितने भी आपका स्ट्रेस दिमाग में आ रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, वो सारे के सारे अपने आप दिमाग से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। यानी वो बहुत ही बढ़िया जो है को एक मैसेज देते हैं हरियाली। और हरियाली देखिए, अगर हरियाली की बात की जाए तो अभी कहा जा रहा था कि भाई नौतपा चलेगा, इतनी गर्मी होगी कि लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हर आदमी डर रहा था नौतपा शुरू हो गया क्या होगा। लेकिन अब देखिए 2 दिन से मौसम कितना चेंज है। तो कुदरत और ऊपर वाला जो चाहे वो कर दे, हम और आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ शुक्र कर सकते हैं। फिलहाल अब एक और ट्रैक आ गया है आप

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

और एक नंबर और है जो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और वो नंबर ऐसा होता है कि जो हमारे दिल को दिमाग को सेहत देता है, सुकून देता है, और वो नंबर होता है घड़ी का नंबर। और घड़ी जो होती है वो कभी कभी सुकून इसलिए देती है क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक ब्रेक टाइम होता है। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में जब ब्रेक मिलते हैं तो इंसान थोड़ी देर के लिए सोचता है कि कहाँ चलते चले जा रहे थे, और अब थोड़ा सा ब्रेक का टाइम होना ही होना है। फिलहाल 3:50 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे और भी जो फैक्ट होते हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। लेकिन इसमें से भी एक चीज़ और है जो शेयर करना बहुत ज़रूरत है, और वो ज़रूरी क्या है, अक्सर होता है ना द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी किसी को पाने की कला होती है, किसी को छोड़ने की कला होती है, और जब ये आप छोड़ देने की कला सीख जाते हैं तो ज़िंदगी में चाहे कितनी परेशानियां हों, चाहे कितनी टेंशन हो, चाहे कुछ हो, जब छोड़ देते हैं आप, यानी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सीख जाते हैं आप, तब फिर आपको लगता है कि ज़िंदगी कितनी ईजी है, कितनी सहल है, कितनी सरल है। और सहल और सरल कैसे बनती है, जब बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करना शुरू करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी ज़िंदगी हमें वो सब नहीं देती जिसकी हमने उम्मीद की होती है। कभी कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, कभी कोई ख्वाब टूट जाता है, तो कभी किसी की याद हमारी रूह में इतनी गहराई में बस जाती है कि हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि छोड़ देना आसान नहीं होता लेकिन ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अगर छोड़ने की कोशिश करें और छोड़ देने की हम आर्ट सीख जाएं, तो काफ़ी हद तक जो है हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे छोड़ने की अगर हम बात करें तो आदत है, मान लीजिए हाइपर थिंकिंग, या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आपको लग रहा है कि भाई इस आदत को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप कैसे छोड़ेंगे उसको, आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए, कहीं और आप कुछ सोचिए, कुछ ऐसा करिए कि जो आपको लगे कि हाँ लाइफ में ये सारी चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी हैं। जब उस तरफ आपका दिमाग जाए, उस तरफ आपका जहन जाए, तो आप हमेशा दिमाग को कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए, और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सच में वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी, और वो आपको कहते हैं ना कि छोड़ देने की जो आर्ट है वो आप सीख जाएंगे। उसी तरह ज़िंदगी में क्या होता है ना कि किसी चीज़ की लत इंसान को लगी होती है, लत इन द सेंस कि कोई भी चीज़ का नशा है। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का नशा है और आपको लगता है कि भाई ये हमसे छूट नहीं रहा। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हमसे छूटती नहीं, बताओ कैसे क्या करें, आदत इतनी हो गई है। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि आपको ऐसा करना है तो फिर आप वैसा ही कर पाएंगे। तो फिलहाल 3:53 हो गए हैं। अब छोड़ देने की कला तो भाई सीखना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर बुक्स भी आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जब हम अपनी लाइफ में पढ़ते हैं, अपनी लाइफ में साक्षर बनते हैं उस चीज़ों को सीख के, तो भी भाई बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करने लगते हैं। और रेनबो भी इसी तरह अच्छी अच्छी जो आवाज़ें हैं आप तक वो लेकर हमेशा आते हैं। फिलहाल 3:53 हो गए हैं, प्रोग्राम सतरंगी दुनिया को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाज़त तरन्नुम को। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और वक्त, इनफैक्ट जुमेरात को हमारी आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है, यानी थर्सडे को फिर से हम आपसे मिलते हैं अगले कुछ घंटे चंद्रकला आपके साथ रहने वाली हैं। तो चलें, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रहने दीजिए।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को 75 जिलों के निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज की ओर से सोमवार को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। चार बजकर के 4 मिनट हुए हैं और ये समय है आपका अपना प्रोग्राम यूथ वेव का। नमस्कार और खूबसूरत खुशनुमा शाम के साथ आपका स्वागत है अपने प्रोग्राम यूथ वेव में। मैं आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई हूँ और प्रोग्राम यूथ वेव जिसमें बात होती है आपकी, हमारी, हम सभी युवा हैं और आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, आपका दिल हमेशा युवा ही रहेगा। जो ये दिल है ना, बच्चा है ना। खैर, ये सारी बातें तो चलते रहेंगे लेकिन जो प्रोग्राम यूथ वेव है उसमें बात होती है यूथ की, उनके करियर की, उनके काम आने वाली सारी बातों की, स्किल्स की, और ऐसे खूबसूरत और ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेगमेंट्स हैं प्रोग्राम यूथ वेव में कि जो आपके हर हाल में काम आते हैं। लेकिन आज जो सेगमेंट है वो कौन सा है? स्किल डेवलपमेंट। भाई, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो फिर तो बहुत अलग अलग इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे अलग अलग एरियाज की तरफ नजर जाती है। बात करने वाले हैं हम आज ढेर सारी और जरूरी बात प्रोग्राम यूथ वेव में। लेकिन आपको ट्यून इन करके रखना है 100.7 FM रेनबो लखनऊ, इसलिए क्योंकि आपके काम की बात होने वाली है और आपके काम की बात को आपने सुनने के लिए ट्यून इन तो करके रखना पड़ेगा ना। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं।

वैसे जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये खूबसूरत सा जो प्रोग्राम है ये आपको कुछ और ज़रूरी बात के बारे में बात बताता है. और मैं आपको सेगमेंट देखिए स्किल डेवलपमेंट बता रही थी. ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है क्योंकि सारे मुद्दे जो होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं. लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं है आज का सेगमेंट. जो है वो है आपका, क्या है, स्टार्टअप इनपुट है. और स्टार्टअप के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं. और स्टार्टअप सुनते ही आज के समय में यूथ के मन में आता है कि हाँ भाई, स्टार्टअप सबसे बढ़िया आइडिया है. बिजनेस हो या स्टार्टअप हो, कुछ एक बहुत बेस्ट आइडिया है. इसके अलावा जो है ना बाकी चीज़ें थोड़ी सी एवरेज लगती हैं. स्टार्टअप थोड़ा सा ट्रेंडिंग में भी है. और आजकल जो नई जनरेशन है, या यूँ कहेंगे कि आप, हम सभी जो हैं, हम लोगों के बीच ये टर्म स्टार्टअप बहुत ही ट्रेंड करता है. और कोई बोलता है कि अपना स्टार्टअप किया है तो बड़ा क्लासी सा लगता है. तो बात करें आज के यूथ की, तो आज का यूथ सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं है. और आपने तो सुना भी होगा घर में, भाई मैं नहीं करने वाला किसी नौकरी वोकरी, सरकारी नौकरी, इन सब चीज़ों की तैयारी. बल्कि आज का यूथ जो है ना, उसकी थिंकिंग ऐसी है कि नए अपॉर्चुनिटीज दूसरों के लिए पैदा करने वाला बन रहा है. और एक और दुनिया पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर लोग अपनी सेहत को लेके पहले से कहीं ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं.

ऐसे में अच्छा जो मैंने बात बोली आपको समझ आई कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं फिर से आपको बता दूं, स्टार्टअप के बारे में बात करनी है, लेकिन आज स्टार्टअप जिस तरीके से ट्रेंडिंग करियर है उसी तरीके से इस समय दो चीज़ें बड़ी ट्रेंड कर रही हैं, इको फ्रेंडली चीज़ें और इन्वायरमेंट को सेव करने की, और दूसरी चीज़ हेल्थ और फिटनेस बहुत ट्रेंडिंग है इस समय। तो खैर दो सेक्टर ये उभर करके सामने आए हैं, सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, इसके अलावा हेल्थ और फिटनेस की जितनी भी सर्विसेज हैं उनको यूज़ करना, उनकी ज़रूरत ज़्यादा है मार्केट में। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी आप बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और आज हम यही जानने वाले हैं कि आज का युवा इन सेक्टर्स में कौन कौन से स्टार्टअप कर सकता है, और भविष्य के जो बिजनेस हैं उसकी क्या मतलब इमेज बनती है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, इस समय ट्रेंडिंग जो वर्ड्स हैं और ट्रेंडिंग चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, हेल्थ है, और बहुत कॉन्शियस रह रहे हैं लोग डाइट के लिए, और अगर बैग्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े और फैब्रिक वो सब चीज़ें लोग आजकल जो ट्रेंड है उस हिसाब से चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इन सारे पॉइंट्स को लेकर के किस तरीके से स्टार्टअप किया जा सकता है।

0: बस जहां आपको एंट्री करनी है उसी दिशा में आपको प्रोग्राम यूथ वेव आज लेके जाएगा, और जहां नहीं जानी वहां के लिए है आज के लिए नो एंट्री।
1: हाय हाय

बिल्कुल, और इश्क की गली बिच जो है वो एंट्री बिल्कुल ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो काम है, जो फोकस है, जो दिमाग है, वो एक ही जगह रहने वाला है, वो रहने वाला है स्टार्टअप पे। मैं सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बिजनेस के बारे में बात कर रही थी आपसे। ये ट्रेंडिंग है इस समय और इस बारे में सोचा जा सकता है। और सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब क्या है? मतलब ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय जो मुनाफे के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करे। आज दुनिया प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को समझ रही है, इसलिए लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहते हैं जो नेचर को नुकसान न पहुंचाए। प्लास्टिक के ऑप्शंस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सरकार भी पर्यावरण के जो फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दे रही है। जो विदेशी मार्केट्स हैं वहाँ भी इंडियन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आने वाले सालों में ग्रीन बिजनेस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में शामिल हो सकता है, समझ रहे हैं आप? तो इसी बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो बात करने वाले हैं हम, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस बात पे, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं और अगर इन सेक्टर्स को लेकर आप स्टार्टअप करने की सोचते हैं तो फ़ायदा हो सकता है बॉस, मतलब अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो बस यही कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं और क्या क्या स्टार्टअप आइडियाज़ हो सकते हैं, वो सब मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं। फिलहाल एक खूबसूरत सा ट्रैक आपको सुनना पड़ेगा। इस ट्रैक को सुनने के बाद आपको ठीक 4:25 पे सुनने होंगे रोज़गार समाचार, जो कि बहुत ज़रूरी है। और रोज़गार समाचार सुनने के बाद फिर हम वापस आएंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे ये सस्टेनेबल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में और इन बेहतरीन स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में। ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सोचने पे मजबूर होने वाले हैं, तो ये मजबूरी आपकी जो है वो बनी रहे अच्छी वाली। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। जल्दी आते हैं वापस।

0: रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वरिष्ठ तकनीकी सहायक शर्करा प्रौद्योगिकी के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिन्हें चयन होने की स्थिति में तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है। आवेदन उचित माध्यम से भेजे जाने चाहिए और उसके साथ ये दस्तावेज संलग्न होने चाहिए। बायोडाटा दो प्रतियों में, पिछले 5 वर्षों के ACR, नियुक्ता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पात्र उम्मीदवारों के आवेदन इस पते पर पहुंचने चाहिए। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कल्याणपुर कानपुर 208017। पद का विवरण पात्रता शर्तों आदि के लिए देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की वेबसाइट nsi.gov.in। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अवर श्रेणी लिपिक, सिविलियन मोटर ड्राइवर सामान्य ग्रेड, बहुकार्य कर्मचारी आशुलिपिक ग्रेड 2, पर्यवेक्षक नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रशासक, हार्डवेयर प्रशासक, लाइनमैन, नाव निर्माता और तकनीकी परिचारक मुद्रण मशीन ऑपरेटर। कुल पदों की संख्या 78 है। आरक्षित पदों की जानकारी, योग्यता, वेतनमान और अन्य शर्तों के लिए देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की वेबसाइट www.ids.nic.in। भारत सरकार का उपक्रम बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। उपप्रबंधक विपणन, सहायक प्रबंधक वाणिज्यिक, उपप्रबंधक सहायक प्रबंधक फीको प्रकार्यात्मक, मुख्य प्रचालन अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, अधिकारी प्रचालन, अधिकारी ट्रैवल, कनिष्ठ अधिकारी ट्रैवल यूनिट हेड, कनिष्ठ अधिकारी आयात प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी विद्युत और रखरखाव, अधिकारी उत्पादन, सहायक प्रबंधक बिक्री और विपणन, अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा और वित्त, अधिकारी बिक्री और विपणन तथा कनिष्ठ अधिकारी लेखा और वित्त। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। केवल इन पदों को छोड़कर ये पद हैं अधिकारी वाणिज्यिक, अधिकारी लेखा एवं वित्त और अधिकारी बिक्री एवं विपणन, जिनके लिए पदों की संख्या 3 है। विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, आयु में छूट तथा आवेदन प्रक्रिया की जानकारी के लिए देखिए बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट www.bamarlorry.com/careers/current openings। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

वेव में फिर से और फिर से आपका स्वागत करने के बाद हमें अचानक से एहसास हुआ कि भाई आधा घंटा तो निकल गया यूं ही बातों बातों में एंटरटेनमेंट में। जल्दी से बिना देरी के हम अपने मुद्दे की तरफ आगे बढ़ें और आज सोमवार है और हर सोमवार यूथ वेव में सेगमेंट होता है स्टार्टअप इनपुट्स। और आज स्टार्टअप इनपुट सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ दो ट्रेंडिंग आइडियाज। और वो दो ट्रेंडिंग आइडियाज हैं, मैंने आपको भी बताया था, इको फ्रेंडली स्टार्टअप आइडियाज हैं और दूसरा हेल्थ और फिटनेस। तो इको फ्रेंडली स्टार्टअप आइडियाज के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कहाँ कहाँ तक हमारा दिमाग पहुंच सकता है। आप सोचिए, मैं खुद बता रही हूँ, एज अ कस्टमर मैंने बहुत समय ऐसी चीज़ों की डिमांड की है, ऐसी चीज़ों को खरीदने की सोच रखी है जिससे नेचर को, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। देखिए, इको फ्रेंडली स्टार्टअप आइडियाज में सबसे पहले तो बैम्बू, बांस को ना भविष्य का ग्रीन गोल्ड कहा जा रहा है। आपको पता है बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, इन्वायरमेंट को नुकसान तो क्यों ही पहुँचाएगा, बिल्कुल नहीं पहुंचाता है। लेकिन इससे बन क्या सकता है, हम बांस की बात क्यों कर रहे हैं इसमें, बैम्बू से क्या है, क्या मतलब क्या स्टार्टअप आइडिया हो सकता है। पता आपको, बैम्बू से टूथब्रश, पानी की बॉटल्स, प्लेट, कटोरी, फर्नीचर और डेकोरेशन का ढेर सारा सामान। और वैसे भी आपका कुछ नया और सोचने का मन करे, कुछ और नया बनाने का करे तो आप बना सकते हैं। लेकिन आपने ऑलरेडी मार्केट में देखा होगा कि बैम्बू से तो ढेर सारा सजावट का सामान ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा कपड़े और जूट के बैग, आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो प्रतिबंध लगा उसके बाद कपड़े और जूट के बैग की जो मांग है, डिमांड है, लगातार मार्केट में बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप किसी बड़े मॉल में चले जाइए या किसी बड़ी दुकान पे चले जाइए, वहां आपको इको फ्रेंडली बैग्स मिलते हैं, जूट के बैग्स मिलते हैं या पेपर बैग्स मिलते हैं या जो भी डिलीवरी आपको मिलती है घर पर, वो भी आप देखते होंगे कि वो इको फ्रेंडली आपको मिलती है। इको फ्रेंडली समझ रहे हैं आप, या तो आपको वो पेपर बैग्स मिलेंगे या जूट बैग्स मिलेंगे या क्लॉथ्स के बैग मिलेंगे। कस्टम प्रिंटेड बैग्स हो गया, कॉरपोरेट गिफ्ट बैग्स हो गया, शॉपिंग बैग्स हो गया, स्कूल बैग्स हो गया, हर तरह तो हमें बैग ही चाहिए। ऑफिस जाने के लिए बैग चाहिए, सब्जी लाने के लिए बैग चाहिए, हर तरह तो हमको चाहिए ही बैग। तो बस इन सब की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही हैं। ट्यून इन करके रखिए और बेहतरीन आइडियाज आपको बताऊंगी मैं। और अगर आपको स्टार्टअप के बारे में सोचना है और इन दो ट्रेंडिंग आइडियाज के साथ अगर सोच रहे हैं तो मैंने आपको बोला है कि 100% प्रॉफिट डबल होने की गारंटी है। खैर, ट्यूनिंग करके रखिए 107.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की चंद्रकला के साथ।

0: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: बेशक प्यार हो ही जाएगा। 4:30 हुए हैं और रोजगार समाचारों के बाद वापस मिलने का आपसे वादा था और लीजिए हम हो गए हाजिर और स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम में।

भाई कुछ चीज़ें जब मन की मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मतलब धीरे धीरे रास आने लगे, धीरे धीरे पसंद आने लगे, कुछ चीज़ें ऐसी जो मिले अचानक से और ज़िंदगी के साथ घुलते मिलते जाए और पहले पहले ऐसा ना लगे कि कुछ बहुत ही अच्छा है, पर धीरे धीरे उस चीज़ के साथ रहते रहते उस चीज़ की आदत हो जाए और वो कुछ अच्छी लगने लगे, तो कितना खूबसूरत होता है वो एहसास। कोई सामान, कोई ऐसा ड्रेस, कोई सा भी सामान, कोई ड्रेस, कोई किताब, कोई भी यूज़ का सामान जो आप लेकर

0: के आए पहली बार और आपको ऐसा लगा हो कि क्यों ही खरीद लिया मैंने, यूजलेस है क्या, या फिर आपको अफसोस हुआ हो कि नहीं मतलब बेवजह ही क्यों ले आई, यूं ही समझ ना आया हो उसको खरीदने का, उसको लाने का कारण, लेकिन धीरे धीरे आपके इस्तेमाल में आने लगी हो और आपको कंफर्टेबल महसूस कराने लगे, कितनी अच्छी फीलिंग आती है नहीं, ऐसा लगता है अपुनिच भगवान है क्या, मतलब मैं पहले से कैसे जान लेता हूँ कि मतलब ये मेरे काम आने वाला है, मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा ही कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ और आपने भी किया होगा। जब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन बोला गया, उसके बाद जो हमने कपड़े के थैले बनाए, झोले कपड़े के झोले जो वो बनाए हमने मार्केट से सामान लाने के लिए, और जो डेली सोप का हमारा सामान होता है वो लेकर के आने के लिए, और सब्जियां लाने करके लिए, भाजी तरकारी लाने के लिए, उसके लिए जो झोले बनाए, वो झोले एक बार बनाए और वो इतने मजबूत झोले बने कि उनको धूल धाल के कपड़े के झोले उनको धुल के दोबारा इस्तेमाल होने लगे, और जब अब सब्जी लेने के लिए या तरकारी लाने के लिए या फिर डेली सोप का सामान लाने के लिए हमें मार्केट जाना है, स्टोर जाना है ग्रोसरी के लिए, तो तब हमें कोई थैले पन्नी बर्तन ढूंढने नहीं पड़ते हैं। हमें पता होता है ये थैला तो हमारी ग्रोसरी के लिए है और ये थैला तो हमारी सब्जी के लिए है। और यकीन मानिए, मेरी जब से ऐसी आदत हुई है मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ऐसा वाला फीलिंग आती है कि मतलब बहुत बहुत ही मतलब बेस्ट है ये, जब चीज़ें डिसाइडेड हों और अपने मन के मुताबिक हों और कंफर्ट हो मेन चीज़ ये है, उनको लाने ले जाने में, उनके साथ एडजस्ट करने में, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है भाई, काम तो करना ही है तो सुकून से कंफर्ट से क्यों ना किया जाए। अब मैंने आपको कपड़े और जूट के बैग के बारे में बताया था, ये वही कहानी है। जूट के बैग दिखने में क्लासी भी लगते हैं और अगर ख़राब हो जाते हैं तो वो डस्टबिन में भी चले जाते हैं, तो भी वो एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करते। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने के साथ पैकेजिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको तो पता ही है, दिन भर में 3-4 पैकेट तो आपके आ ही जाते हैं मिनट्स वाले। अब कंपनीज भी ऐसी पैकेजिंग चाहती है जो इस्तेमाल के बाद मिट्टी में आराम से मिल जाए। पेपर पैकेजिंग, कॉर्न स्टार्च पैकेजिंग होती है, बैगास जो गन्ने के जो अवशेष होते हैं उससे बनता है, उसके जो कंटेनर्स बने होते हैं उससे। इसके अलावा ऑर्गेनिक और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक साबुन की डिमांड बहुत है मार्केट में, हर्बल शैम्पू की डिमांड में बहुत मार्केट है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसके अलावा जो नेचुरल स्किन केयर है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। इसके अलावा केमिकल फ्री जो होममेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी है। अच्छा, आपको पता है एक इंटरेस्टिंग सब फैक्ट, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा हेल्थ के मामले में सर्च की जाने वाली चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, उनमें सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ें हैं हर्बल प्रोडक्ट्स एंड होममेड, और उसके साथ ही ऑर्गेनिक। ये तीन जो वर्ड्स हैं, ये तीन जो टर्म्स हैं और ये ट्रेंडिंग है, हर्बल, ऑर्गेनिक और होममेड। होममेड चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अपसाइक्लिंग बिजनेस किया जा सकता है। अपसाइक्लिंग बिजनेस या जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक साबुन, हर्बल शैम्पू, जो नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा केमिकल फ्री जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं वो, इसके अलावा अपसाइक्लिंग बिजनेस में जैसे पुरानी चीज़ों को नया और यूज़फुल बना करके बेचना। अच्छा, आप कभी शाम के समय गंज के मार्केट में चले जाइए, गंज की सड़कों पर चले जाइए, उस शाम में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे स्टॉल्स छोटे छोटे लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगते हैं। उन्हीं स्टॉल्स में से 2-3 स्टॉल्स हमने रिसेंटली देखे, एक लड़की घर से वेस्ट मटेरियल का बहुत ही खूबसूरत स्टॉल लगाए हुए थी, जिसमें उसने रखे हुए थे प्रोडक्ट्स ऐसे जो वेस्ट मटेरियल से बनाए थे, और ढेर सारे पेन स्टैंड्स, बैग्स और ढेर सारी चीज़ें थी। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। वैसे ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, सोचने पे मजबूर करूँगी, तो ये खूबसूरत सा गाना आप सुनिए, तुरंत आते हैं।
1: हाँ यार, सौदा सौदा, ओहो,
2: दोनों डील करा सेल,
3: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

और इसी तरीके से अगल बगल चलने के लिए और सक्सेसफुल चलने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में. हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है. और कोविड के बाद लोगों ने समझा कि जो हेल्थ है ना वही सबसे बड़ी पूंजी है और यही कारण है कि हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री तेज़ी से आगे बढ़ रही है. बढ़ती लाइफस्टाइल डिजीज़, मोटापा, स्ट्रेस, पीसीओडी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी ये जो प्रॉब्लम्स है इनसे ना बहुत सारे आइडियाज़ आ गए हैं. लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस तो हो ही गए हैं. हेल्थ और फिटनेस स्टार्टअप आइडियाज़ में पहला जो आइडिया है वो ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग है. आप अगर थोड़े से फिट और खूबसूरत दिखते हैं, नहीं मतलब सिर्फ दिखना ही ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो मतलब फिटनेस कोच रख सकते हैं अपने अंडर. लाइव वर्कआउट क्लासेस, पर्सनल ट्रेनिंग, होम वर्कआउट प्रोग्राम, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है. योगा क्लासेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है. योग भारत की वैसे तो पहचान है और आज पूरी दुनिया इसको अपना भी रही है. ऑनलाइन योगा क्लासेस हो गया, कॉरपोरेट योगा सेशन हो गया, सीनियर सिटीजन योगा हो गया. इसके अलावा डाइट और न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी बहुत चल रही है इस समय, बहुत बहुत बहुत. वेट लॉस प्लान, पीसीओडी डाइट प्लान, डायबिटिक डाइट हो गया, स्पोर्ट्स जो न्यूट्रिशन हो गया वो है. हेल्थ और इसके बारे में अगर बात करें तो आगे चलें अगर हेल्दी फूड डिलीवरी बिजनेस आइडियाज़ में ये है कि हेल्दी टिफिन, लो कैलोरी मील, सलाद बार, इसके अलावा प्रोटीन स्नैक्स, फिटनेस कंटेंट

में आप YouTube पर चैनल बना सकते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे फिटनेस पेजेस बना सकते हैं, हेल्थ पॉडकास्ट बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप। और महिलाओं के लिए हेल्थ कोचिंग ये सबसे ट्रेंडिंग है। इसमें आपको मिलने वाला है पीसीओडी मैनेजमेंट के लिए, मतलब बहुत बहुत स्कोप है अगर आप पीसीओडी मैनेजमेंट के लिए कुछ कर सकें। प्रेगनेंसी फिटनेस हो गया, पोस्ट प्रेगनेंसी वेलनेस हो गया, मेनोपॉज हेल्थ हो गया, इसके अलावा ढेर सारे और आइडियाज हैं। आप सोचिए इस समय जो जमाना है वो ट्रेंडिंग का है, और ट्रेंडिंग चीजें मैं आपको फटाफट फटाफट एक कट में बता चुकी हूँ। आपके लिए जो सक्सेस के मंत्र है ना, वो अगर मैं बताऊं कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है प्रॉब्लम को पहचानना, क्या है दिक्कत, उसका समाधान देना। और मंत्र जो आपका सक्सेस का वो है कि छोटे लेवल से आप शुरुआत करिए, छोटा चैनल खोलिए, छोटे सेशन शुरू करिए, या छोटा सा स्टार्टअप करिए, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करिए, जो ग्राहक है उसकी प्रॉब्लम को समझिए और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। लगातार सीखने की जो कला है वो होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, और जो लोकल मार्केट है वहां से शुरुआत करके आप नेशनल लेवल फिर इंटरनेशनल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा समय की जरूरत को पहचानना है। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ अवेयरनेस है, ये सिर्फ सोशल मुद्दे नहीं है बल्कि बहुत बड़े बिजनेस आइडियाज भी हैं। अगर आप सही स्कीम देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इनोवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई आपका सफल उद्यमी बनना जो है ना वो एकदम तय है। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर हम भेजना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आप इसे सुनिए या तुरंत वापस आते हैं।

बिल्कुल 4:55 हो गए हैं और दुनिया में आने के बाद भी ढेर सारे स्टार्टअप आइडियाज हैं. अगर उनके बारे में नहीं सोचा स्टार्टअप करना है और इन आइडियाज के बारे में नहीं सोचा, इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सोचा उनको बनाने के बारे में, तो क्या किया. जो ट्रेंडिंग है, समय की डिमांड है, उसके बारे में नहीं सोचा तो फिर तो सब व्यर्थ है. अब जाते जाते मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है और कई शानदार स्कीम्स भी चलती हैं. स्टार्टअप इंडिया सीड एंड फंड स्कीम भी है, इसके अलावा MSC GIFT भी है, और मतलब MSC गिफ्ट स्कीम इसको कहते हैं, ये है. और इसके अलावा ग्रीन बिजनेस स्कीम है और DPIT स्टार्टअप इको स्कीम्स भी हैं. आप इन स्कीम्स के, अच्छा देखिए मैंने तो जल्दी जल्दी में आपको बता दिया है, आपको समझ ना आया हो भले ही, लेकिन आप इंटरनेट पे डालेंगे कि भारत सरकार के द्वारा इको फ्रेंडली जो स्कीम्स चलाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको लिस्ट बाय लिस्ट सीक्वेंस से सारी मिल जाएंगी. ऑल द बेस्ट आपकी स्टार्टअप के लिए, आपके नए आइडियाज़ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. और साथ में ये कहूंगी कि वाइंड अप करने का समय है प्रोग्राम को, समय बिल्कुल नहीं है न्यूज ब्रेक के उस पार. आपका अपना प्रोग्राम FM टॉप 10 लेकर के आ रही हूं, तुरंत ट्यूनिंग करके रखिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की.

किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और अराजकता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना जाति और धर्म के भेदभाव के विकास परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज अपने कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर लेखा जोखा रखा। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत काम किया गया, इससे अपराध में कमी आई है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सभी थानों पर शक्ति केंद्र बनाया गया। उन्होंने कहा कि सामाजिक अपराधों जैसे दहेज, घरेलू झगड़े के बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। महिला अपराधों में भी काफी गिरावट आई है। शिकायतों की थाने व चौकी स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज से 7 जून तक सभी गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि देसी गायों को पालने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था की जाए। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को कार्यस्थल प्रबंधन और संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 5S प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि इस प्रणाली अपनाने से न केवल कार्यक्षमता और स्पष्टता में सुधार हुआ है, बल्कि रेल कर्मियों के लिए अधिक सकारात्मक व तनावमुक्त कार्य वातावरण तैयार हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों और पूर्व सैनिकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक प्रदान

5:04 हो गए हैं. गुड इवनिंग, नमस्कार, और आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम FM टॉप 10 में. ये खूबसूरत सा प्रोग्राम ऐसे टॉप 10 सॉन्ग्स को लेकर के आता है जो आपको कुछ एक खूबसूरत से इंडेक्स को दर्शाते हैं आपके सामने. हो सकता है वो किसी हफ्ते के खूबसूरत टॉप 10 हो सकता है किसी एक जॉनर के हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर समय के हों. ये खूबसूरत से टॉप 10 सॉन्ग्स आपको ले जाते हैं एक अलग सी दुनिया में. जी, आपका पसंदीदा शो है FM टॉप 10 और मैं आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ जुड़ गई हूँ. और टुडे वी आर काउंटिंग डाउन द टॉप 10 रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑफ द 2000s. जी हाँ, आपको ले चलने वाले आज बॉलीवुड संगीत के सुनहरे दौर में जब मोहब्बत सिर्फ महसूस नहीं की जाती थी बल्कि खूबसूरत धुनों, दिल को छू लेने वाले अल्फाजों में भी वो मोहब्बत होती थी. आज का हमारा खास जो खूबसूरत प्रोग्राम है, सेगमेंट है, ये जो खूबसूरत पेशकश है, टॉप 10 रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द 2000s, 2000 के दशक के खूबसूरत 10 गाने आज आपके प्रोग्राम में लेकर के आई हूँ मैं. तो नंबर 10 से शुरू करें. अब याद रखिएगा, ये खूबसूरत रोमांटिक गाने हैं और इस खूबसूरत शाम में आपको किसी और तरफ भी ले जा सकते हैं.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर जो आया था, ये था आज के प्रोग्राम एफएम टॉप 10 का नंबर 10th गाना। लेकिन बिना देरी के ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, जो कि है आज प्रोग्राम एफएम टॉप 10 का नंबर

पाँच बज करके 15 मिनट और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम चल रहा है और ये जो अलग सा एहसास है ये है 2000s के सॉन्ग्स का खूबसूरत सा सिलसिला। ये खूबसूरत फीलिंग आपको मिल रही है FM टॉप 10 में, जहां हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 गाने आज खास सेगमेंट में 2000 के मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में। नंबर 9th अभी आपको सुनाया था, अब आपके रेडियो सेट पर आने वाला है नंबर 8th सॉन्ग। खूबसूरत, रोमांटिक और दूसरी दुनिया में ले जाने वाला। फिर से ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप।

करके आए हैं 10 गाने आज खास सेगमेंट में 2000 के मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स में. नंबर 9 अभी आपको सुनाया था, अब आपके रेडियो सेट पर आने वाला है नंबर 8 सॉन्ग. खूबसूरत, रोमांटिक और दूसरी दुनिया में ले जाने वाला. फिर से ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की. आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप

ये वो दौर था जब प्यार करने वाले के दिल में कोई ना कोई गीत बसता था, जब इश्क की कहानी कभी जरा जरा बनकर गुनगुनाती थी तो कभी मेरे हाथ में बनकर ख्वाबों को हकीकत का रंग देती थी। इन गीतों में प्यार था, इंतजार था, तड़प थी और वो एहसास थे जो आज भी उतनी ही ताज़ा लगते हैं जितने पहली बार सुनने पर लगे थे। आप सुन रहे हैं ना ये गीतों का, यादों से भरे इस खूबसूरत सफर का जो चल रहा है। इस यादों के सफ़र को, इन गीतों के सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं आज आप प्रोग्राम FM टॉप 10 में। ये जो खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे, लम्हा लम्हा गैंगस्टर से, ये था आपके रेडियो सेट पर नंबर 8। लेकिन ये खूबसूरत सा रोमांटिक अगेन, जिन लाइनों को कहा था गीतों के बारे में, उन्हीं गीतों में से एक

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना था अपने रेडियो सेट पर, और ये खूबसूरत रूहानी आवाज़ आप सुन रहे थे सोनू निगम की, और ये जो आवाज़ थी ना आपको बता रही थी कि ये FM टॉप 10 की लिस्ट में आज नंबर 7th पे गाना था, और नंबर 6th गाना आपकी रेडियो सेट पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है, और अदनान सामी का ये ट्रैक है, और बहुत दिनों बाद इसे हम भी सुन रहे हैं, लेकिन इस लिस्ट में इस गाने का होना बनता ही था, और बिना देरी के आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से रोमांटिक हिट को।

और इसी तरीके से हम इस खूबसूरत नंबर के साथ नंबर 7th सुनने के बाद नंबर 6th पे पहुंच गए हैं. और नंबर 6th, ओह नंबर 6th तो हम सुन चुके, इतना खो चुके हैं हम, इतना गुम हो चुके हैं हम इस आज के सेगमेंट में, आज के एफएम टॉप 10 में, कि हम तो भूल ही गए कि हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं नंबर 5, नंबर 5th की तरफ. बंटी और बबली से ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर आ रहा है. दो खूबसूरत आवाजें, वो खूबसूरत दौर और वही खूबसूरत फीलिंग. बस आज का एफएम टॉप 10 यही तो कह रहा है, इसी धुन की तरह ट्यून इन करके रखिए. और ये रहा आपके रेडियो सेट पर नंबर 5th आज के एफएम टॉप 10 का.

और ऐसे बंटी की बबली हुई और वो रोमांटिक दौर जो जो जो जो हम आज जिसकी सैर कर रहे हैं, जो हमें ले जा रहा है एक अलग सी दुनिया में, उस प्रोग्राम का FM टॉप 10 का नंबर 4th आपके रेडियो सेट पर ये आया बिना देरी के। कितना खूबसूरत है ये गाना और कितना हिट हुआ था उस समय, आज भी इसका एहसास ऐसा ही है। सुनिए, एंजॉय करिए, वापस आते हैं नंबर 3 लेकर।

बेशक ये खूबसूरत सी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रही है और दशक हो गए कई, ये आवाज़ आपके कानों में अब भी गूंज रही है और ये खूबसूरत सी आवाज़ गूंजती रहेगी। और ये आवाज़ है इन गानों की जो आज हम लेकर के आए हैं एफएम टॉप 10 में। और खूबसूरत गानों के इस सेगमेंट में, आज के एफएम टॉप 10 में, हम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए नंबर 3 पे। Yes, and this is your 3rd song. आज के FM Top 10 का number 3rd, top 3rd song.

5:51 हो गए हैं और अब हम पहुंच गए हैं टॉप सेकंड सॉन्ग की तरफ को, जरा जरा करके धीरे धीरे. और ऐसे ही खूबसूरत गानों का ये सेगमेंट आज का एफएम टॉप 10 खूबसूरत तरीके से हमें लेकर के आया है एंड तक. लेकिन टॉप सॉन्ग को सुनने के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, ट्यून इन करके रखना पड़ेगा. लेकिन ये जो धुन बज रही है पीछे, ये है आज के एफएम टॉप 10 का टॉप सेकंड सॉन्ग. टॉप सॉन्ग तक पहुंचने के लिए इसे सुनना है पहले. लेकिन सुनना क्यों है, इंजॉय करना है. इट इज

5:54 हो गए हैं और ये खूबसूरत सफ़र अब वाइंड अप होने की तरफ को बढ़ चुका है. और 5:54 का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप छुट्टी की जाए, लेकिन छुट्टी उसके साथ की जाए जो सबसे खूबसूरत जायका हो उसके बाद. और जायका खूबसूरत होता है, हाँ ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत होता है, तो उसके बाद छुट्टी की जाए. तो ये वक्त है वाइंड अप करने का, लेकिन आज के एफएम टॉप 10 का टॉप सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर. एंड आई मस्ट से दिस सॉन्ग इज शो स्टॉपर, और ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आता है. और इसी के साथ आज के एफएम टॉप 10 का सफ़र यहीं होता है ख़त्म. अगला प्रोग्राम आपका अपना, आपके अपने शहर की बात शाम अवध. मुझे दीजिए आप इजाज़त, अगला प्रोग्राम आपके साथ में फिर रहूँगी. ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो. ये रहा आज FM टॉप 10 का नंबर 1 शो स्टॉपर सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल घाट भी पर्यटन के साथ रोजगार का केंद्र बनेगा। इसके लिए घाट पर 7 कियोस्क बनाए गए हैं। 20,39,00,000 रुपए से चिलुआ ताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद यादव के अनुसार चिलुआ ताल घाट पर एक तरफ लोग मनोरंजन करेंगे तो वहीं दुकानों पर जायके का आनंद भी ले सकेंगे। लोगों को बोटिंग करने की भी सुविधा यहां मिलेगी। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन की ओर से आज जारी आदेश में प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है। इसी प्रकार प्रभारी निदेशक वैकल्पिक एवं साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के बिंदुओं की समीक्षा की। बैठक में विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, विभागीय प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पारदर्शिता एवं तत्परता के साथ पहुँचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर देहात में आज मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के अंतर्गत विधायक रसूलाबाद

अनम शंखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस सेवा तिस्ती रसूलाबाद से कन्हीजरी सरूरा होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। कई दिनों से रुक रुक कर यहां वर्षा हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। नमस्कार, आदाब और गुड इवनिंग। 6:04 हो गए हैं और आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ। मैं चंद्रकला जुड़ गई हूं आपके साथ और ये आगाज़ है अभी प्रोग्राम शामे अवध का। 6 से 7 बजे तक आप सुनते हैं आपका अपना प्रोग्राम शामे अवध, और इस प्रोग्राम में बात होती है इस खूबसूरत धरती अवध की शाम की। और इस समय जो मौसम है, जो करवट ली है मौसम ने, इस मौसम में ऐसा एहसास बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से होता है। इतनी अच्छी हवाएं इस महीने, बहुत मुश्किल से। और किसी समय इस तरीके की हवाओं का, इस तरीके की सुकून भरी ठंडक का और ऐसी ठंडी शामों का, उसके बारे में सोचने का, इस खूबसूरत ताज़ी ठंडी हवा की उम्मीद करने का बहुत कम कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन इस समय ये मौसम है और इसी मौसम में, इसी खुशनुमा माहौल में और ये थोड़ी थोड़ी ठंडक भरी हवाओं में आपके साथ ये प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है शामे अवध, ये लेकर के आया है आपकी ज़मीन की, आपकी शाम की, आपके शहर के कोने की खबरें और खूबसूरत एंटरटेनमेंट। आपकी खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ। आप ट्यून इन करके रखिए, तुरंत वापस आते हैं।

आपके शहर में, आपके धरती में जो सुकून है इस समय, आपकी शाम जो खुशनुमा है इस समय, और जो ठंडी ठंडी थोड़ी सी बयार, आप थोड़ी सी जून के महीने में इतनी अच्छी बयार महसूस कर पा रहे हैं, उसकी मेहरबानी है। किसकी मेहरबानी है? मौसम की मेहरबानी है। और उसी के साथ एक बात आपको बताएं कि राजधानी में अपने मौसम के करवट लेते ही एक चीज़ की डिमांड कम हो गई है। सोचिए वो क्या चीज़ होती होगी जिसकी डिमांड

मौसम सही होते ही कम हो गई। देखिए बीच में हम लोग बिजली कट से कितना परेशान थे, और जो मौसम के बदलते ही डिमांड घटी है वो है बिजली की। आपको पता है बिजली की डिमांड एकदम से 600 मेगावाट एम्पियर कम हो गई है। 27-28 मई को बिजली की डिमांड लखनऊ में 2196 मेगावाट के आसपास थी, और सबसे ज्यादा आपको पता है गोमती नगर के लोग सबसे ज्यादा बिजली यूज कर रहे थे, 192 मेगावाट एम्पियर बिजली। और तापमान कम होते ही बिजली की डिमांड जो है 30 मई को यानी कि परसों 1582 हो गई। सोचिए 2196 से 1582 हो गई। 31 मई को यही बिजली की खपत 1521 हो गई। आप समझिए अगर मौसम थोड़ा गिरता जाए तो बिजली की जो खपत है वो ऐसे ही मतलब बढ़िया होती जाएगी। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मौसम तो ठीक है, खुशखबरी है, लेकिन ये जो ऊर्जा है इसका संकट जो है ना गहराए, इसके लिए आप थोड़ा सा अननेसेसरी बिजली का इस्तेमाल कम करें। पंखा भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, और आपको जल्दी से बाहर बेल किया, कोई गेस्ट आ गए, दूसरे रूम में जाना है या किसी ने बुलाया, आप कमरे का कूलर एसी पंखा ऑन करके चले गए, खुला छोड़ के चले गए। और कई कई बार तो आप तुरंत गए तुरंत आने के लिए, लेकिन आए नहीं, आपको लग गए घंटों, डेढ़ घंटा दो घंटा, फिर आए और फिर आपने बोला अरे बिजली तो खुली रह गई, एसी तो ऑन ही रह गया, कूलर तो चला ही रह गया। लेकिन आपको चिंता इस चीज़ की नहीं होती है कि ये ऊर्जा जो है वेस्ट हो रही है, एनर्जी जा रही है, बर्बाद हो रही है। चिंता आपको इस बात की थी कि बिजली का जो बिल है ये कौन भरेगा इतना बिजली का बिल, ये आपको चिंता थी। हालांकि आपको कहने का मतलब ये है कि आप समझदार हैं, अन्यथा अननेसेसरी आप बिजली को इस्तेमाल ना करें। अगर बाहर निकलें तो बंद कर दें, कूलिंग तो हो ही रही है, जब आप बैठें दो दो तीन तीन इक्विपमेंट्स आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, जितने से हो सकता है गुजारा उतना करने की कोशिश करें, कितना अच्छा होगा। अब सोचिए खपत भी कम हो रही है और मतलब इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियां तो मिलती ही रहती हैं। आपके रेडियो सेट पर एक गाना भेज रहे हैं, उसे सुनिए, उससे खुश होइए, तुरंत वापस आते हैं और बात करते हैं और क्या नया है, क्या है नई बात। Listen to me, baby. Say, ooh, la, la.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

6:24 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध, आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ। इस खूबसूरत शाम में आपसे यही कहूंगी कि अगर आप हमें फोर व्हीलर में सुन रहे हैं तो यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें, ये जो दुर्घटनाएं हैं इसके जिम्मेदार ना बने। अपनों का ख्याल रखें, अपनों के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें और यातायात नियमों के साथ साथ अपनी सुरक्षा का सोचें। आप सुरक्षित हैं तभी आपके सुरक्षित होने से आपके अपनों में सुरक्षा का भाव है। आप घर लौट रहे हैं तो भी जल्दी ना करें और बाहर जा रहे हैं तो भी जल्दी ना करें, क्योंकि आपने 100.7 FM रेनबो को ट्यून किया है और प्रोग्राम भी आपकी जमी का, आपकी सरजमी का है। अवध का प्रोग्राम है, शाम अवध है और इस खूबसूरत शाम को आप खुशनुमा ही बनाए रखें। कुछ नियमों का पालन करते हैं ना अगर आप, तो आपके चेहरे पर अलग सा नूर होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ढेर सारी बातें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, रोज़ तो आपको याद दिलाया जाता है। ट्रैफिक नियमों के साथ साथ ये आपको याद दिला दिया है, बस ये है मौसम का हाल आपको बताने वाले हैं तुरंत। मौसम का हाल ये है कि आज 1 जून है, आपने देखा ही है, आज थोड़ा बहुत राहत तो थी लेकिन कल फिर से मौसम करवट लेने वाला है, ऐसी संभावना है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मौसम विभाग ने बोला है कि 2 जून को फिर से थोड़ी सी गर्मी होगी। समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा और सहना पड़ सकता है। हालांकि ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, जितना दिया है ऊपर वाले ने वो भी क्या कम दिया है। जून के महीने में ऐसी हवा और ऐसी ऐसी शाम कहां उम्मीद कर रहे हैं आप। चिपचिपी गर्म, एकदम उबलती हुई शाम होती थी, लेकिन अवध की शाम की बात कुछ और है। हालांकि मैंने आपको टेम्परेचर बढ़ने की खबर

दी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत ज्यादा टेंशन ना ले रहे हों, बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ अपडेट्स और हैं आपके लिए, आपके शहर की, बस ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। ये रहा आपका अपना गाना आपकी रेडियो सेट पर।

एक अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी, अगर आपके जानने में कोई है या आप ही हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आपको बता दें डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 8 से 10 जून तक यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होने वाली है। जैसे आपको बता दें कि 8, 9 और 10 जून को आपकी लिखित परीक्षा यूपी पुलिस की होने वाली है, कांस्टेबल की लिखित परीक्षा।

और अपना एडमिट कार्ड जो आपको निकालना है वो देख लीजिए। जो अगली अपडेट ये है कि इस समय ट्रैफिक का जो हाल है शाम के समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां पर आप जाते हैं, जैसे फूड वैली है, उस चक्कर में 10-90 की तरफ को काफी लोग चलते हैं। लेकिन ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखना और अपनों के बारे में सोचना हर वक्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक जाम और गलत टर्न लेने से कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। कई लोग इन गलत टर्न से और लापरवाही से चलने से बहुत कुछ झेलते हैं। तो इन सब से बचते हुए आपको जाना है, ध्यान रखना है और इस खूबसूरत शाम का इसी तरीके से इंजॉय करना है।

6:46 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध, और ढेर सारी बातें होती हैं आपसे करने के लिए, लेकिन ज़रूर ये ध्यान रखा जाता है कि आपका इंटरटेनमेंट का जो सिलसिला है वो चलता रहे, कहीं से कोई कमी ना आए, तो इसीलिए खूबसूरत गाने आपके रेडियो सेट पर तो आते ही रहे हैं। अब लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और दिव्यांग जनों की सुविधाओं का आकलन होने वाला है, मतलब इनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, उसका आकलन होने वाला है, और जो एलिजिबिलिटी एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत आज से लेकर के पूरी की पूरी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजनी है, कितनी सुविधाएं यहाँ पर मिली हुई हैं और कितनी मिलनी है, ये सारी, ये बस इसलिए क्यों हो रहा है, मतलब ये इसके बता रही हूँ उनको दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, पेंशन के लिए उनको इतने कार्यालयों के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए ये सारी व्यवस्था हो रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आकलन किया जा रहा है कि दिव्यांगजनों के साथ इतनी सारी परेशानियां क्यों आती हैं, इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, इसके लिए ये किया जा रहा है। खैर, आपके शहर में बहुत कुछ होता जाता है, जैसे जनता दर्शन लगता है योगी जी का, और वो अधिकारियों को बड़ा कड़ा निर्देश देते रहते हैं समय से योगी जी की, भाई कोई समस्या ना हो, कोई समाधान तुरंत मिलना चाहिए, त्वरित मिलना चाहिए, और ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए और जो ज़रूरी खबर है आप तक वो पहुँचाई जाए। तो ज़रूरी खबर आपको पहुँचाने के लिए ये जो गाना है आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, इसके बाद आप तक आती है वो ज़रूरी खबर।

6:53 हो गए हैं और ये जो समय है ये कह रहा है कि तेजी से आगे बढ़ा जाए. वो गुड न्यूज जो थी आपके लिए वो ये थी कि कई धरने प्रदर्शन हो गया, विरोध प्रदर्शन हो गया, बहुत सारी चीजें करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो विधि शिक्षा है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP लागू करते हुए LLB 3 साल की, 5 साल की, मतलब दो तरह की होती है ना, LLB 3 साल वाली, 5 साल वाली, इसके छात्रों को बड़ी राहत मिली है भाई इतनी मेहनत के बाद. और वो राहत ये मिली है कि आपके अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी LLB के छात्र हैं उनके थ्योरी और जो इंटरनल आपके मार्क्स होते हैं दोनों को मिलाकर 40% प्राप्त करने पर छात्र पास होंगे. मतलब पहले इंटरनल जो आपके मार्क्स मिलते थे, कॉलेज जो आपको मार्क्स देता था 30 नंबर में से 25 नंबर में से, उनका भी महत्व बढ़ाया गया है. समझ रहे हैं आप, मतलब थ्योरी और इंटरनल मार्क्स मिला करके टोटल आपके 40% प्राप्त जब आप कर पाएंगे नंबर, तब आप छात्र, मतलब जो भी हैं पढ़ने वाले, आप पास हो पाएंगे. और साथ ही जो इवेल्युएशन का जो प्रोसेस है, उनका कॉपी जांचने का तरीका है, उसमें भी बदलाव किया गया है. आंतरिक मूल्यांकन का जो महत्व है उसको बढ़ाया गया है. तो ये आपके लिए अच्छी खबर है. तो बस ऑड इवन जितने भी सेमेस्टर जिसमें भी आप हैं उसको बहुत इजी तो आप लेती हैं, क्योंकि आपको पता तो है कि अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, चाहे ऑड में इवन में है, आपको पास तो होना ही है, प्रमोट तो किया ही जाता है. सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है ये पास होने के नियमों में किया गया है. तो ध्यान रखिए दोनों अंकों को मिलाकर के, जैसे इंटरनल में भी पास होना होगा, एक्सटर्नल में भी पास होना होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स मिला के टोटल आपके 40% मिनिमम होने चाहिए, तभी आप पास कहलाएंगे. और इसके पूरे सेमेस्टर के सब सब्जेक्ट्स में टोटल 45% या उससे अधिक होना अनिवार्य रहेगा. तो बस इसी खबर के साथ आपसे कहती हूँ बाय. और शाम अवध प्रोग्राम का सफर यहीं होता है ख़त्म. ये खूबसूरत से गाने के साथ हम आपसे कह रहे हैं बाय, लेकिन टॉप 10 समाचारों के उस पार आपका अपना प्रोग्राम हेलो FM शुरू होगा. तो ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो.

नमस्कार, आप सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल की तरह चिलवा ताल घाट भी पर्यटन के साथ रोजगार का केंद्र बनेगा। 20,39,00,000 रुपए से चिलवा ताल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर कहा कि भारत आज विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर निरंतर नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। वाराणसी में आगामी 4 और 5 जून को ब्रिक्स देशों के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने

आया कि विभिन्न सत्रों में सांस्कृतिक सहयोग और आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, पारदर्शी वितरण व्यवस्था और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक रहे प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने आज मीडिया में बातचीत में कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष के 3,679 पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। वहीं जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

0: नमस्कार आदाब और गुड इवनिंग. इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत आपके अपने प्रोग्राम हेलो एफएम में. 7:04 हुए हैं और हेलो एफएम प्रोग्राम ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें आप हमें सीधे हमारे स्टूडियो के नंबर्स पर कॉल करते हैं और फ़ोन करने के बाद सीधे ऑन एयर हमें अपनी फरमाइश बताते हैं ज़बानी और उस फरमाइश को हम करते हैं पूरी. और ये है आपका आकाशवाणी लखनऊ रेनबो से सीधा कनेक्शन. आपकी दोस्त चंद्रकला है अभी आपके साथ और बिना देरी के तुरंत हम देख लेंगे कि पहली कॉल आज के प्रोग्राम हेलो एफएम की किसकी लगी, किसकी जुड़ी हमसे और उस कॉल के बाद सिलसिला चलता जाएगा. हो सकता है आए उसके बाद आपकी बारी. हेलो
1: हेलो मेरी प्यारी चंद्रकला दीदी, प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग.
0: गुड इवनिंग. अपना नाम बता दीजिए.
1: एफएम रेनबो पे हर वक्त धड़कने वाली चंद्रकला दीदी की छोटी सिस्टर रिंकी और पिंकी बात कर रही हूँ जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से.
0: अरे वाह, दीवानों के शहर रायबरेली से.
1: बिल्कुल, क्योंकि हम लोग एफएम रेनबो के इतने दीवाने हैं कि मैम बता नहीं सकते.
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा मुझे और हमारी खुशनसीबी है कि आप दीवाने हैं रेनबो के.
1: जी बिल्कुल, और आप लोगों की आवाजें इतनी प्यारी इतनी क्यूट हैं, बहुत अच्छा लगता है. हम सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं.
0: चलिए मतलब आपको पूरी संतुष्टि है कि आकाशवाणी ने अच्छी आवाजों की व्यवस्था कर रखी.
1: मतलब हम लोगों का पक्का दोस्त है एफएम रेनबो.
0: तो चलिए आपकी बातों से तो लग रहा है कि ऐसा आकाशवाणी में जो है अच्छी खूबसूरत आवाजों की भर्ती हुई है. बढ़िया बढ़िया आवाज है.
1: मैम हम आपके तीनों कार्यक्रम सुनते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे मतलब तीनों चैनल सुनते रहते हैं. तीनों चैनल पे सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सभी अनाउंसरों की आवाजें बहुत प्यारी लगती है.
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. देखिए रिंकी पिंकी जी, आपसे एक बात, आपने बात की है तो मैं भी आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि मतलब ये जो तारीफ़ों के पुल आपने बांधे हैं इसी तरीके से बांधते रहना चाहिए. पता है जब आप तारीफ,
1: आप लोग इतनी मेहनत से कार्यक्रम करते हो, बता 4-4 घंटे बोलते रहते हो, हम लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहते हो, अच्छे अच्छे गीत भी सुनाते हो, तो हम सभी श्रोताओं का भी कर्तव्य बनता है कि आपके बारे में अच्छा ही बोले और आप लोगों की हमेशा तारीफ ऐसे

0: करें।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपकी तारीफ सुन करके। बाकी भी बता रही हूँ,
0: थे और कॉल भी ट्राई कर रहे थे, मेरी सिस्टर ने कॉल लगाया, लग गया, और आज आपसे बहुत दिनों बाद बात हो रही, तो आपके लिए चाय भी बना के रखिए, पीने के लिए आ जाइए।
1: ऐसा मत कहा करिए चाय बना के रखिए, हम आ सकते नहीं।
0: क्योंकि मैं अपने हाथों में चाय लिए बैठी हूँ मैम।
1: चलिए कोई बात नहीं, जो मेरे लिए बनाई है आपने वो आप खुद एंजॉय करिए।
0: आप पता चला था आपके मतलब हाथ में चोट भी लग गई थी, तो आप कैसी हैं?
1: अभी तो ठीक हो रही हूँ, जुड़ने में और चोटों को ठीक होने में समय लगता है।
0: हम लोग दुआ भी करते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ और मस्त हो जाएं।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी तारीफ सिर्फ रेनबो की ही नहीं, अपने दोस्तों की, घर वालों की, अपनों की, सबकी तारीफ करते रहनी चाहिए बीच बीच में। तारीफ करने से अच्छा लगता है ना।
0: कहना चाहती हूँ, हम लोग अपने श्रोताओं से इतनी दूर दूर रहते, पर हम लोगों का मतलब एक ऐसा रेनबो के माध्यम से दोस्त बन गए हैं, जो मतलब इतनी दूर होते हुए भी नहीं जानते, फिर भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं रेनबो के माध्यम से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने। और कोई बात आपको कहनी हो?
0: जी नहीं, बस इतनी ही कहनी थी, और बाकी श्रोता भी लाइन में होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी बारी कब आएगी, तो जल्दी से हम सॉन्ग बता देते हैं, कुछ डेडिकेट भी करना चाहेंगे।
1: बिल्कुल आप डेडिकेट कर दीजिए।
0: जी, मूवी का नाम है धड़कन और गीत के बोल है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ये सॉन्ग सुनना है।
1: ठीक है, ये आपका
0: और ये
1: गाना।
0: गाना स्पेशली आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारी दोस्त हैं पूनम दीदी, समा परवीन, साहिब अंसारी, महक अंसारी, ममता दीदी, वकील अहमद भाई, और जावेद अख्तर सर, विनीत भाई, तिवारी अंकल, और मोहम्मद फैज, और संजू भाई, बाकी जितने श्रोता सुन रहे हैं सबको स्पेशली डेडिकेट।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: नमस्ते
1: करके।
0: दीदी, बाय बाय।
1: बाय बाय, नमस्ते। तो ये रिंकी पिंकी जी की बात चल रही थी, और इनकी फरमाइश जो है अब सुननी पड़ेगी, एंजॉय करना पड़ेगा। ये जो खूबसूरत गीत इन्होंने बोला है, इसे सुनते हैं, इनकी फरमाइश पूरी होती है, और इस गीत के बाद आपकी होगी फरमाइश की बारी, आप ट्यून इन करिए।

0: 7:12 हो गए हैं और इसी तरीके से खूबसूरत फरमाइशें आपकी आती रहेंगी. प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम, आपकी दोस्त चंद्रकला है अभी आपके साथ. और पहली फरमाइश के बाद अब सिलसिला शुरू हो चुका है. अब देखते हैं कि कौन जुड़े अगले श्रोता हमारे साथ फ़ोन कॉल पर. हेलो.
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम.
0: गुड इवनिंग जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए.
1: जी, हम गुलफ्सा सिद्दीकी बोल रहे हैं संडीला से.
0: गुलफ्सा जी, कैसी हैं आप और कैसा है संडीला का मौसम?
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं. पहले आप बताइए, आप कैसे हैं, आपकी चोट कैसी है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुलफ्सा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हाल पूछने के लिए. और
1: जी मैम, संडीला का मौसम तो नहीं बता सकते क्योंकि इस वक्त हम अपने गाँव में हैं.
0: अच्छा,
1: तो मेरे गाँव का मौसम बहुत अच्छा है.
0: और आपका गाँव कहाँ है?
1: जी ये संडीले से थोड़ा आगे मौलवी खेड़ा है, वहीं है.
0: अच्छा,
1: क्योंकि हमारा संडीला में भी घर है, यही यहाँ भी घर है.
0: अच्छा,
1: तो अभी इस वक्त हम त्योहार में गांव आए थे.
0: अच्छा, तो
1: जी
0: मतलब
1: मैम, हम लोग त्योहार जो है गांव में ही करते हैं.
0: अच्छा, चलिए अच्छा लगा. और क्या बात आप कहना चाहेंगी?
1: जी मैम, कॉल लग गया, बहुत खुशी हुई.
0: चलिए आपकी खुशी बरकरार रहे और आप इसी तरीके से मुस्कुराती रहें. और आपका गाना तो हमने आपकी पसंद का निकाल लिया, और कोई बात?
1: जी मैम, कुछ नाम ले लें?
0: बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए.
1: जी मैम, सबसे पहले आपको शमा परवीन है, शाइबा अंसारी है, साजिया अंसारी है, मयंक अंसारी, निशा अंसारी, ममता गौतम, रोशनी रावत और मोहम्मद आसिफ भाई.
0: अच्छा ठीक है, आपके
1: सारे
0: जितने
1: लोग सुन रहे हैं उन सभी को.
0: बिल्कुल बिल्कुल आपके सारे नाम शामिल हो गए और सभी श्रोता आपका जो ये आपने शामिल किया है नाम, ये सब सुन रहे होंगे.
1: जी मैम, थैंक यू.
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए गुलफ्शा. और फिर बात होती है और गुलफ्शा जी की पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर आप और हम मिलकर सुनते हैं.

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकलविहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रूपये टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रूपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकलविहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने

0: देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: मुख्यमंत्री ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
2: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
1: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। 31 मई 2025 से कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत राजीव कृष्ण को कल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के तौर पर नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के

0: फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है और ये बुढ़ापे में जो 3000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में फेरबदल करते हुए प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को प्रभारी माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया है। वहीं प्रभारी निदेशक वैकल्पिक व साक्षरता शिक्षा उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी को प्रभारी बेसिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया है। शासन के विशेष सचिव के गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गोसंवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को 72,000 रुपये की सहायता भी प्रदान करेगी। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। हमीरपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जौनपुर में भी तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों समेत उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। सात बजकर के 31 मिनट हो गए हैं, आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। स्वागत है आपका फिर से एक ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम हेलो FM में। और आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है और ढेर सारी कॉल्स ब्लिंक करते रह रही हैं, लेकिन बारी बारी से कॉल्स हम ले सकते हैं। और ये जो अगली कॉल आपके रेडियो सेट पर पहुंचने वाली है आवाज़, पता नहीं कौन है, देखते हैं कौन जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं?
2: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर।
1: जी विनीत भैया, कैसे हैं आप और अर्थापुर का हाल कैसा है?
2: ठीक है, मौसम सही है इस समय।
1: बारिश आई है क्या वहाँ?
2: हाँ, सुबह हुई थी हल्की बारिश थोड़ी। मौसम सही है।
1: तो अभी पंखा वंखा लगाने की जरूरत पड़ रही है कि ऐसी ठीक है?

0: पंखा तो लगाना पड़ेगा रात में।
1: हाँ पंखा तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर और छत में तो बढ़िया मौसम हो रहा होगा।
0: ठंडा है मौसम, सही है, इस समय तापमान
1: जी
0: सही है।
1: लखनऊ में उतनी अच्छी ठंड नहीं है अभी, लेकिन मतलब उतनी बढ़िया, मतलब जितनी आप बता रहे हैं उतनी अच्छी यहाँ नहीं है, पर आपके यहाँ ज़्यादा
0: अरे
1: अच्छा
0: राहत
1: होगा।
0: तो है, थोड़ी राहत तो मिल गई है।
1: आप ही बताइए, इतने सालों में कभी जून के महीने में ऐसी राहत मिलती है क्या?
0: मिलती है मतलब बारिश हो जाती तो मिलती है, ऐसे थोड़ा ना मिलती है।
1: हर बार थोड़ी होती है बारिश ना, हर साल थोड़ी, जून वून में तो कहाँ बारिश होती है, मई के महीने में तो नहीं होती।
0: हाँ ये तो बात सही है।
1: बड़ी मुश्किल से मिली है, इस बार हम लोग की किस्मत अच्छी है।
0: गाना के बोल हैं,
1: जी
0: आज की फिल्म का है,
1: जी
0: दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें और दोस्तों को डेडिकेट करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी समा परवीन अंसारी हैं, सीतापुर से, ओमकार सीतापुर से हैं, सुरभि सीतापुर से हैं, और
1: जी
0: रिंकी पिंकी राय बरेली से हैं,
1: जी
0: सीमा राउत राजाजीपुरम लखनऊ से हैं,
1: जी
0: नवनीत हरकेश लखनऊ से हैं,
1: जी
0: और संतोष कुमार मौर्य हैं
1: जी
0: कुथावा हरदोई से,
1: जी
0: ममता हरदोई से हैं,
1: जी
0: जितने सुने हैं सभी के लिए।
1: विनीत भैया एक बात बताइए, आपने सारे नाम नोट करके रखे हैं क्या कॉपी में?
0: नोट तो नहीं है, ऐसे ही याद है।
1: याद है आपको इतने सारे नाम,
0: हाँ जी याद है।
1: और कौन कहाँ से है ये भी याद है आपको?
0: सब याद है, मतलब नाम लेते रहते हैं, हमारा भी तो नाम लेना पड़ता है रवि का।
1: नहीं सही बात है, एक बिरादरी जैसी बन गई है ना। जरूरी है भाई, उन्होंने दिया तो हमें भी देना पड़ेगा। बात तो बिल्कुल सही, लेकिन आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि आपको सबके नाम और कहाँ के रहने वाले हैं वो भी याद है। चलिए विनीत भैया, आपका गाना जो है हमने ऑन एयर करने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है।
0: ठीक, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, और विनीत जी का ये गाना जो है आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा और आपको भी सुनाएंगे। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, हो सकता है इसके तुरंत बाद आपकी कॉल की हो बारी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
2: धड़कन लखनऊ की।
3: जी हाँ, आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो और ये है धड़कन लखनऊ की। खूबसूरत आवाज़ें आप तक पहुंच रही हैं। खूबसूरत आवाज़ें सिर्फ हमारी थोड़ी, हमारे श्रोताओं की भी खूबसूरत आवाज़ें हैं और उनकी जो फरमाइशें हैं वो और भी खूबसूरत हैं। प्रोग्राम हेलो FM चल रहा है और इसमें आप सीधे फ़ोन घुमाते हैं और बोलते हैं हेलो, ये है हमारी फरमाइश और इसे कीजिए आप पूरी। खैर, बिना देरी के, बिना ज़्यादा बातचीत के देख लेते हैं कौन जुड़े हमारे साथ। हेलो, उप्स, इनका तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। और अब हमें देखना पड़ेगा कि अगली कॉल इमीडिएटली कौन जुड़े हमारे साथ।

0: हेलो हेलो।
1: हाँ बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हम श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से बहन जी बोल रहे हैं।
0: जी श्री प्रकाश तिवारी जी, आपकी कॉल आई और हमने सीधे ऑन एयर कर दी, सब सुन रहे हैं आपको। बताइए कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल ठीक हैं बहन जी, अब तो मौसम भी कुछ सही हुआ है।
0: अच्छा, आप ये बताइए श्री प्रकाश तिवारी जी, आप कब से रेडियो सुनते हैं?
1: अरे हमको बहुत दिन हो गया बहन जी,
0: दिन हुए कि साल हुए?
1: हम 74 साल के हैं और हम रेडियो सुन रहे हैं 40 साल की उम्र से।
0: अरे वाह, 40 साल से आज आप 74 साल के हो गए, रेडियो का साथ आपका बना हुआ है।
1: हाँ बहन जी,
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा। और मतलब इस समय क्या कर रहे हैं आप?
1: हम खेती वाली काम है, मेरा लड़का करता है, हम मतलब बैठे रहते हैं।
0: अच्छा,
1: 74 साल की उम्र में हमसे क्या हो सकता है बहन जी?
0: अरे जो आप कर रहे हैं वही तो हो सकता है और वही तो सबसे जरूरी काम है, वो जो
1: और
0: निगरानी कर रहे हैं आप, जो देख रहे हैं।
1: फिर बहन जी एक पैर से विकलांग भी है।
0: नहीं, आपने अपनी जीवन जो है बहुत अच्छी बढ़िया तरीके से अपना जीवन जिया है, काम किया है, संघर्ष किया है, और अभी भी तो आप देख रेख कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लड़का काम कर रहा है, आप देख रहे हैं,
1: हाँ बहन जी,
0: कुछ तो बताते होंगे आप ना उसको कि ऐसी कमी है या ये करो ऐसे
1: हाँ
0: करो।
1: बहन जी, हाँ वो सब कराते हैं और मौका पड़ता तो काम भी करते हैं थोड़ा बहुत।
0: चलिए, यही तो एक जान है, यही क्षमता।

यही ताकत है। चलिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा और आपसे बात करके, और श्री प्रकाश तिवारी जी, फिर आपसे कभी होगी बात, और बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी रेडियो की मोहब्बत जो है बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आती है, और खूबसूरत किस्से हो जाते हैं। और इनकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट पर आप सुनिए, तुरंत वापस आते हैं। ये श्री प्रकाश जी की फरमाइश।

0: 7:48 हो गए हैं और बिना देरी के हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम हेलो एफएम में अब आज अगली कॉल किसकी है। हेलो
1: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम राम प्रसाद, ग्राम मरिनी, जिला हरदोई से।
0: राम प्रसाद जी हरदोई से
1: जी, पहली कॉल है मेरी आज।
0: आज पहली कॉल, आज तक आपने कॉल ही नहीं लगाई।
1: नहीं, मेरे 3 दिन से कॉल लगा रहे, लगता ही नहीं, आज ही लग गया।
0: अरे वाह, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने जो गाना कहा था, पता है आपका, वो गाना भी हमने निकाल दिया, छैला बाबू तू कैसा दिलदार।
1: जी जी, यही गाना था मेरा,
0: कर्तव्य फिल्म का, वो गाना भी हमने निकाल दिया। देखिए आपकी पहली कॉल है और आपकी फरमाइश जो है पूरी होने जा रही है।
1: 3 दिन से लगाते नहीं, लगता आज लग गया।
0: अरे आज हम आए थे तो लग गया कॉल, हो जाता है ऐसा कभी कभी। देखिए ना राम प्रसाद जी, बहुत सारे लोग एक ही साथ, मतलब एक ही घंटा है और एक ही घंटे में ढेर सारे लोग कॉल लगाए पड़े रहते हैं एक ही साथ, तो हो जाता है।
1: हम जो लखनऊ में कार्यक्रम आता है, किस में कहूं, किस में कहूं
0: जी,
1: इसमें लगाते हैं कॉल,
0: लगता है
1: यहाँ, इसमें लगाते हैं कॉल।
0: चलिए बढ़िया है, आज इसमें भी लग गया आपका एफएम में।
1: हाँ लग गया आज।
0: चलिए और कुछ कहना चाहेंगे आपके, आपका गाना प्ले कर दें।
1: हम तो कहें नहीं लगेगा, लेकिन लग गया आज।
0: चलिए बड़ा अच्छा, ऐसे ही खुश रहिए आप, आपकी आप जो अच्छा अच्छा सोचा करिए, आप अच्छी अच्छी बातें सोचा करिए।
1: हाँ जी, सच विचार रखते हैं सिवान जी,
0: बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें सोचा करिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा सोचा करिए, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है आखिर।
1: जी सही बात है।
0: और आप कोई बात कहना चाहेंगे कि आपका गाना बजा दें?
1: कहने के लिए क्या कह सकता हूँ, सभी समझदार सभी है, क्या कहूँ किससे।
0: समझदार तो सभी हैं, सब अपने आप में, चोट सबने खाई होती है।
1: जी जी जी
0: जी, चलिए ठीक है राम प्रसाद जी, फिर अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपका गाना प्ले कर देते हैं।
1: नमस्ते
0: नमस्ते राम प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉल लगाइएगा अगली बार आपका फिर लग जाएगा, हमारी दुआ है। और ये देखिए राम प्रसाद जी कितने खुश थे, और राम प्रसाद जी की पसंद का ये गाना, उनकी फरमाइश का ये गाना आप और हम मिलकर सुनते हैं।

0: 7:55 हो गए हैं और जल्दी जल्दी देख लेते हैं आज प्रोग्राम हेलो एफएम की आखिरी कॉल किन की होने वाली है, कौन जुड़े हमसे। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए।
1: तेज बहादुर मौर्य।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राम मथना पोस्ट नेरी कला से, जिला सीतापुर से बोल रहे हैं मैम।
0: अच्छा, चलिए, आपकी पसंद का गाना तो हमने निकाल दिया है तेज बहादुर जी, और कोई बात आपको कहनी हो?
1: बात ये कहना, आज मौसम हम जी अच्छा है, बहुत
0: जी
1: सुहाना मौसम है।
0: और मौसम अच्छा है और
1: हाँ, खेती बाड़ी मैम जी करता हूँ, यही तुरई उरई वही तुरई बेचते हैं।
0: क्या हुआ है इस समय अभी, तुरई?
1: तुरई, हाँ तुरई।
0: चलिए ठीक है, मौसम भी अच्छा है तो भी काम करने में भी थोड़ा आराम है।
1: आराम है मैम।
0: चलिए ठीक है फिर, तेज बहादुर जी आपकी पसंद का ये गाना हम आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं।
1: ठीक ठीक
0: फिर होती
1: हमारे
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: दो हमारे जो दो पुत्र हैं उनके लिए डेडिकेट, और सबके लिए जितने सुन रहे हैं उनके सबके लिए डेडिकेट।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेज बहादुर जी, आपके दोनों जो पुत्र हैं वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और इन्हीं बातों के साथ, तेज बहादुर की कॉल और उनकी फरमाइश के साथ, आज का ये हेलो एफएम का आखिरी गाना, आखिरी फरमाइश, और इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ बाय, टेक केयर, फिर किसी और दिन आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली आवाज़ ऋचा की आपके पास पहुँचने वाली है, और बाय, टेक केयर।

नमस्कार, रात के 8 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आंधी बारिश के चलते जनपद में हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली। उत्तर प्रदेश ने सौर एवं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अग्रणी पहचान स्थापित की है। भारत सरकार के नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम पीएम सूर्य घर के 2 वर्ष 1 करोड़ रूफटॉप तक सौर ऊर्जा का विस्तार में उत्तर प्रदेश को पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए चयनित किया गया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस उपलब्धि पर कहा कि प्रदेश आज देश में अक्षय ऊर्जा विकास का अग्रणी मॉडल बनकर उभरा है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चयनित परिषदीय विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई पुस्तकों की आपूर्ति एवं भुगतान संबंधी विवरणों का जनपदवार सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और भविष्य में निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध

कराई जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

0: मैं हूं मुजफ्फर अली और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: घर से लेकर ऑफिस तक, बच्चों से लेकर बॉस तक, फैमिली से लेकर फैंटेसी तक, फैशन से लेकर फन तक, अगर आपको चाहिए इन चीजों की लेटेस्ट अपडेट, सो डोंट बी लेट। सुनिए नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम शत्रुपा, सोमवार से गुरुवार दिन में 12 से 1, 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियां सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, तुम आओ तो सही, ये बात आप भी जानते हैं कि आपसे मिलने की दरकार लिए हर बार आप से साथ इस मौके पर हम आते हैं, वो मौका जब आबशार का ये सफर आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर होता है शुरू। कहते हैं कि नशा जब अल्फाज का हो, जज्बात का हो, मोहब्बत का हो, तो बन जाती है महफिल गजल की, जहां शायरी और सुरों का साथ माहौल को खुशनुमा बना देता है। और आज की शाम हम उन अल्फाज को आवाज देंगे जो अक्सर होठों तक

आते आते रुक जाते हैं, जिन्हें कहने का जरिया बनती है गजल। तो आइए चलते हैं उस जानिब जहां रूह को सुकून देने वाली गजलों का आबशार लेकर हाजिर हूं मैं आपकी मेजबान, आपकी दोस्त रिचा, आपके अपने 107.7 FM रेडियो पर। नमस्कार, आदाब, आज के इस महफिल आबशार में।

आबशार जब पहाड़ों से बहता है तो झरना बनकर उसकी उसकी हर एक बूंद संगीत बनती है और जो आपके दिलों को भिगोती है. लेकिन जब यही आबशार किसी के दिल में बहता है तो वो शब्दों को, शायरी और जज्बात को मोहब्बत बना देता है. और जब ये मोहब्बत काली घटा बनकर आसमान पे छाती है तो महबूब का चेहरा जैसे आंखों के सामने तैर जाता है. और जब हवा के एक झोंके के साथ किसी की रेशमी जुल्फ चेहरे पर बिखरती है तो उनके उस बेमिसाल हुस्न को देखकर दिल बस देखता ही रह जाता है. और इसी हसीन मंजर को लफ्जों में समेटकर आज की हमारी खास गजल सीधे आपके दिल के आंगन में उतरने जा रही है. मुलाहिजा फरमाइए.

अगर असल मायने में देखें तो मोहब्बत का सच्चा रूप तो यही है कि हम हो ना हो लेकिन हमारी आपकी मोहब्बत एक दूसरे के दिलों में हमेशा ऐसे ही महकती रहे, हमेशा ऐसे ही ताज़ा रहे। रात के 8:42 का वक्त हो चुका है। आप शार को यहाँ पर ख़त्म करने की मैं आपसे लूँगी इजाज़त, लेकिन आप सिर्फ गुजारिश है कि आप कहीं मत जाएं। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और वापस 9 हाजिर हो जाएंगे हम लेकर आपके लिए आपका मोस्ट फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं पॉप टाइम, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। तो बस सुनते रहिए, जुड़े रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनेरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: महिलाओं न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि

0: किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि

के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लग

0: ये है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
0: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
0: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

फिलहाल आपकी रेनबो की जो एक तारा है ना, इसको बजाने के लिए आपके पास वापस आ चुकी हूँ मैं, आपके दोस्त आपके रिचा। रात के 9:03 हो चुके हैं, खुशामदीद, वेलकम, नमस्कार, जहाँ कहीं आप आइए, क्योंकि आपके बिना आपको पता है कि ये जो महफिल है ये पूरी होती नहीं। शो कौन सा है आप जानते हैं, पॉप टाइम। तो चलिए आपके साथ लेकर इस पॉप टाइम को मैं हूँ हाजिर आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर।

इनके प्यार का तारा तो बच चुका है, आप कहाँ है, आपका है मुझे बेसब्री से इंतजार, आपके अपने 107 एफएम रेडियो पर, एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर है आपको आना, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी हुआ है सिर्फ और सिर्फ 9:06।

तो फिर इतने खूबसूरत से मौके को कैसे अपने हाथ से आप जाने दे सकते हैं, तब जब आपका पॉप टाइम आपके 100.7 एफएम ब्रेंडो पर शुरू हो जाता है। आपके ईमेल्स का है मुझे बहुत बहुत बहुत तेजी से इंतजार, 9:08 एंड यस गाना आपके रेडियो सेट्स पर।

आप लोग कितने आगे खा रही है, उन्होंने कहा कि नचो नचो रुत रचने की आई है, तो यहाँ ढेर सारे जो ईमेल्स हैं नाचते नाचते गोल गोल घूमते घूमते मेरे पास आ चुके हैं, जिन्हें मुझे अब वापस आप तक पहुंचाना है। 9:11 का वक्त हो चुका है रेनबो पर, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं पॉप टाइम, और इस शो को लेकर आपके साथ हैं यानी हूं मैं आपकी दोस्त आपकी रुचा। और पहला ईमेल जो मेरे पास आया है ये हम तक भेजा है किसने, बाबू अंसारी जी ने, और लिख रहे हैं कि दोस्त की शादी में जाना है तो सोचा कि पहले चुपके से आपको ईमेल कर दूं उसके बाद जाऊं। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, कभी कभी कुछ काम ऐसे भी करने चाहिए जो किसी को नुकसान ना दे और आपके मन को थोड़ा सा सुकून भी दे जाए। और आपके साथ इकबाल रजा, जीशान, अफजल, रजा, मोनिश, सादिक और आपके मम्मी पापा, साथ साथ संजीदा और शाहनबी, समीरा भी है जो इस वक्त आपको हमारे साथ सुन रहे हैं, मतलब हमको आपके साथ सुन रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ा प्यारा सा एक जो है ना जोक लिख करके भेजा, पढ़ना बनता है। आप लिख रहे हैं कि एक बार गुप्ता जी ने एक बैंक में खाता खुलवाया और उनका पूरा नाम था राजगुप्ता और पासबुक में प्रिंट होकर आया राजगुप्ता, तो गुप्ता जी ने बैंक मैनेजर को बताया कि सर राज और गुप्ता के बीच में स्थान रखना है, और एक हफ्ते बाद जब चेकबुक आई तो उसमें नाम लिखा था राजस्थान गुप्ता। कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके ले आते हैं आप लोग, लेकिन अच्छा था तो मुझे लगा मुझे पढ़ना चाहिए वापस आपका लिखा हुआ जो एक प्यारा सा जोक था सब तक पहुंचा देना चाहिए। मोनू सेठ जी भी आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपने जो लिखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। विजय पाल यादव है हमारे साथ, क्या लिख रहे हैं पढ़ देती हूँ। आप लिख रहे हैं कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, आप शार आपको बहुत अच्छा लगा और हमेशा की तरह वो तारीफें जो आप लिखते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में लिखा है कि आंगन में एक साथ बैठे कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपको ये शो अच्छा लग रहा है, दिल से धन्यवाद है आपके लिए, और आपने हमेशा की तरह हमें आपके जिला खीरी से आपका ईमेल भेजा है, थैंक यू आपके प्यारे से ईमेल के लिए। इंद्रपाल मिश्रा भी है हमारे साथ और आपने हमें अमृता महोली से आपका ईमेल लिखा है और लिख रहे हैं कि सभी सुनने वालों को आज अभिभावक दिवस की शुभकामनाएं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। और आप लिख रहे हैं कि देश समृद्ध हो, खुशहाल हो और बड़े बुजुर्गों की सेवा में 5 अनोखी बात मिले, दीर्घायु, विद्या, बल, यश और 13 सोया भाग के लिए। बात तो बिल्कुल सही है लेकिन जब दिल से करो ना तब तो करते कहाँ हैं लोग, खाली बातें करने के लिए तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन अगर आप दिल से करते हैं तब तो बात है। देखिए और आपने लिखा है हमें, आपके साथ साथ दिवाकर अवस्थी, शिव प्रकाश, हरिप्रकाश, आशा और अवनीश विनीश हैं जो सुन रहे हैं दतूनापुर से, है ना। चलिए बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए जो आप हमेशा भेजते हैं। ताली बंसारी जी भी आ चुके हैं, क्या लिखते हैं, लिख रहे हैं गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, तो बस आपकी दुआओं से हम ठीक ठाक है, बढ़िया है। राजा कटरा बाराबंकी से आपका ईमेल है और आपने लिखा कि आप शायद वाकई बहुत अच्छा लगा है और हमने आपका अंदाज तो ग्रेट, अच्छा शुक्रिया धन्यवाद, नंबर 1 लिखा है ना, समझ गए हम। आपने लिखा अगेन वेलकम, ऐसे ही आप रोज आया करें तो हम बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे और आप से मौसम भी अच्छा, हाँ मौसम भी सुहाना है, ये बात तो सच है, फिलहाल अभी गर्मी से कुछ तो राहत है और अगर हम मौसम विभाग की बात देखें तो आने वाले 1-2 दिनों तक फिर वैसे ही चीजें, हालांकि ऑरेंज अलर्ट भी कुछ जगहों पर जारी होने की संभावना किया गया है तो उसके लिए भी भाई थोड़ा अलर्ट रहिए, ध्यान रखिए, बाकी तो मौसम का क्या है, कभी एक सा रहता नहीं है। और आपने, आपके साथ है आसिफ अंसारी हैदराबाद से।

और साबिर अंसारी कानपुर से जुड़े हुए हैं, सब साथ बैठकर सुन रहे हैं। बस साथ रहिए, तभी तो असली मजा है ना। मोहम्मद आसिफ हैं और आपने हमें लिखा है, मोहम्मद आसिफ अंसारी का ईमेल हैदराबाद तेलंगाना से है और लिखा है कि जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में बोला कि आप कहीं नहीं जाइए, अगला प्रोग्राम पॉप टाइम आ रहा है तो हमको इंतजार रहता है सुबह से। और आपने लिखा कि राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी में हूँ लेकिन उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं रहता हूँ और हैदराबाद में इस वक्त आप सुन रहे हैं। और जहां तक आपने लिखा है भोजपुरी गाने की बात, तो देखिए भोजपुरी के लिए अलग से दो दिन आप तक पहुंचाएंगे ना, मंगलवार एंड सैटरडे, ये दो दिन। हाँ कभी कभार एक आध गाने बच जाते हैं तो देखेंगे, अगर हो गया तो पक्का बजा देंगे, ऐसी क्या बात है। शिवराज जी है हमारे साथ और शिवराज जी ने क्या लिखा है, बाबू रिहा जैनाबाद जिला बाराबंकी से है और आपने लिखा है कि कोई भी गाना सुनवा दीजिए। तो देखिए पहली बात तो ये कि ये आपका रिक्वेस्ट इश्यू नहीं है, तो गाने सारे आपके ये मान लीजिए, ठीक है। और आपने लिखा कितनी बार मेल कर रहा हूं पर किसी भी प्रोग्राम में मेरा कोई मेल शामिल नहीं हुआ। अब आप शिकायत नहीं कर पाएंगे शिवराज जी, क्योंकि आपका मेल अभी अभी आपके रेडियो सेट से आपके कानों में पहुंच रहा होगा जिसे आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो शिवराज जी का ईमेल हम पढ़ रहे हैं जो आपने हमें जैनाबाद जिला बाराबंकी से भेजा है, ठीक है। और लिख रहे हैं, पिताजी का नाम राम सुरेश है और माँ का नाम आशा रानी है, बड़ी सिस्टर अस्मिता देवी है, छोटी सिस्टर पल्लवी, बड़े भैया जगराज हैं, चाचा का नाम रमेश है, सभी मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो सबको मेरा प्यार नमस्ते दुआ सलाम कहिए। और आपने लिखा है कि प्रोग्राम सुनते हैं, रात 12 बजे तक सुनेंगे, मेल जरूर शामिल कर लेना। मेरे ख्याल से आपने आपका ईमेल अब तक सुन लिया होगा और अगर सुन लिया है तो बस मेरे साथ यही बने रहे क्योंकि आप इस वक्त सुन रहे हैं पॉप टाइम। 9:16 का वक्त हो चुका है, ये वो शो है जहां पर आपके पैर थिरकते रहने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, बाकी तो आपकी मर्जी है, क्या कहते हैं आप। तो चलिए अगला गाना आप तक भेजा है, थिरकने की तैयारियों में रहिए क्योंकि गाने आप तक पहुंचते रहेंगे और आपके ईमेल्स यहां मेरे पास आते रहने चाहिए, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बस इस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए गाना आप तक।

अगर आपकी भी छोटी है वो काली है और परांदा लाल है तो आपके लिए गाना मजे से फिर डांस करिए, थिरकते रहना चाहिए पर. अच्छा थिरकते रहने पैर से एक बात याद आई, मतलब हमारे दोस्त यार भी हम क्या ही कहें कोई कम नहीं है. अभी अभी एक ईमेल हमारे पास आया जिन्होंने हमसे पूछा कि आपने जो है थिरकने की बात कही है कि पैर थिरकते रहने चाहिए, तो वो तो ठीक है बट ये बताइए क्या लेटे लेटे पैर थिरकेंगे तो काम चलेगा. अब आप ये देख लीजिए हमारा तो मकसद मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि गाने अगर बज रहे हैं तो आपके पैर थिरकते रहने चाहिए. और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर आप ऐसे थिरकते रहेंगे तो कैसा लगेगा. बहरहाल 9:22 का वक्त हो चुका है पॉप टाइम. इस वक्त आप थी अपने 100.7 FM रेनबो पर है आपकी रोज आपकी रुचा के साथ. ईमेल्स मेरे पास बड़े सारे आ चुके हैं तो चलिए अगला ईमेल मुझे किसने भेजा है उनको भी जरा सा देख लें, तवज्जो दे दें. शिवराज जी आपका ईमेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, आपने ईमेल भेजा इसके लिए वापस आपका शुक्रिया. मोनू सिंह जी वापस आए, लिख रहे हैं दलेर मेहंदे के गाना बजाए कि एकदम झमाझम बारिश होए गया. प्रोग्राम में सुनने वाले श्रोता परी गुन्नू मानवी गुन्नू गुनगुन अर्जित अर्पित हर्षित प्रिंस अनीता बिनीता सुनीता आंचल सोनू परवाना. किसी का नाम छूटा तो वो भी ले लीजिए अपनी तरफ से, मतलब ऐसा ना हो कि बाद में आपसे नाराजगी जाहिर करे कह रहे भैया हमारा नाम छूट गया था. तो कहिएगा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है ऐसा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें. ये कहना चाहते हैं आप है ना. सावित्री देवी आ चुकी है और आज आप बड़ी टाइमली आ गई पता है आपको, और आपने हमें लिखा बहुत धमाकेदार शुरुआत की है आपने, बहुत धन्यवाद. झक्कास प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है और आपने हमें हमेशा की तरह बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर इटौंजा डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका ईमेल भेजा है. एंड यस आपने जो भेजा ना सेम टू यू ये हम कह देना चाहते हैं आपसे. गुलाब कश्यप जी हैं हमारे साथ और गुलाब कश्यप जी ने क्या लिखा है, आप लिख रहे हैं प्रिय ऋचा दी नमस्ते, तो बहुत शुक्रिया इतने प्यार से हमको बुलाने के लिए. और आपने लिखा है मैं गुलाब कश्यप फ्रॉम रामपुर राय डिस्ट्रिक्ट पोस्ट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से हैं और मैं इतना ही कहूंगा प्रोग्राम एंड सॉन्ग लाजवाब लग रहे हैं. बस सच बताए हमें यही तो सुनना होता है कि आप बस ये कहते हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है लाजवाब लग रहा है, हम खुश हो जाते हैं. देखो छोटी सी बात में कितना दिल अच्छा हो जाता है, इसीलिए कहते हैं तारीफें करती रहना चाहिए क्योंकि तारीफें जब आप करते हैं ना तो सामने वाले के चेहरे पर जो खुशी आती है. हाँ लेकिन अच्छी करिए सच्ची करिए ये भी एक बात है तो फिर

आपका दिन भी कहीं अच्छा बन ही जाता है. बट बहरहाल शुक्रिया आपके ईमेल के लिए. राम सेवक जी आ गए हैं. क्या लिख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम पॉप टाइम मुझे अच्छा लगता है. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ये. और आपने हमें हसनपुर और आस उन्नाव से आपका ईमेल भेजा है. और आपके साथ साथ रेनू, आयुषी, उषा, नीतू, आशुतोष सभी लोग सुन रहे हैं. तो भैया सबको कह दीजिए बहुत धन्यवाद. और आपको ना 12 बजे तक रहना है मेरे साथ. आज के रजनीगंधा को भी सुनना है, ज़रूरी है, ठीक है. और आप जब रहेंगे हमारे साथ तो थोड़ा हमारा भी हौसला यू नो बढ़ जाता है. अगला ईमेल किसने भेजा है, चलो ये भी देख लेते हैं. ये आए हैं मनीष गुप्ता. और आपने हमें गुसाईगंज से आपका ईमेल भेजा, लेकिन इस वक्त आप शिमला में सुन रहे हैं. और वाकई में धमाल मचा, अच्छा मचा दिया सॉन्ग्स का के मज़े आ गए. आपने लिखा तन मन झूम रहा है. हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है. थिरकने की बात देखो हुई थी तो एक अभी ईमेल भी आ गया कि लेटे लेटे पैर थिरका लें तो चलेगा काम. जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, आपको लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद. बहुत शुक्रिया दिल से आपका. एस शुक्ला जी हैं, ये कौन है देखें जरा अंदर से निकले.

वाकई में धमाल मचा, अच्छा मचा दिया, सॉन्ग्स का के मजे आ गए, आपने लिखा तन मन झूम रहा है। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। थिरकने की बात देखो हुई थी तो एक अभी ईमेल भी आ गया कि लेटे लेटे पैर थिरका लें तो चलेगा काम। जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, आप खुद लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दिल से आपका। एस शुक्ला जी हैं, ये कौन है देखें जरा, अंदर से निकली है अनुराधा शुक्ला जब हमने ईमेल खोला तो। और विलेज कतर गिलौला है ना, ये नाम है ना, अगर कुछ गलत पढ़ा हो तो मुझे ज़रा सा करेक्ट कर दीजिएगा। और श्रावस्ती से आपका प्रोग्राम, आप पूरी फैमिली के साथ सुन रही हैं, और आपने लिखा जब गाने अच्छे सुना रही हैं और अब भोजपुरी सॉन्ग का भी शुभारंभ करें। अच्छा ठीक है, रही है अभी हमारे साथ, अभी तो सिर्फ 9:26 हुए, अभी कहाँ हम जा रहे हैं, हम तो रहने वाले हैं अभी आपके साथ बहुत देर तक, और आपको भी रहना होगा, रहेंगे आप मेरे साथ, मुझे इस बात की पूरी पूरी पूरी अश्योरिटी है। अगला ईमेल ले लेते हैं फिर बढ़ेंगे गाने की तरफ, है ना। एक और ईमेल अशोक कुमार जी का ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं रायपुर उदारा मितावली से आपका ईमेल है, और आपने लिखा है कि आवाज़ अच्छी है, प्रोग्राम पसंद है आ रहा है, और कुछ नाम है जिनको इन्होंने पढ़ने के लिए कहा, अजय राज, जसवंत राज, बलिस्तर राज, सब मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो दिल से धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करम मेहरबानी कि आप इतना वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं और इस शो को यू नो अपने होने से बहुत बहुत बहुत सुंदर बना देते हैं। और अब हो चुके हैं 9:26, तो कहना मुझे ये कि सब लोग कर दें फ्लोर खाली क्योंकि डांस करने के लिए आ रहे हैं ताऊ, क्या समझे, अगला गाना लेकर के बिल्कुल आपके साथ है रेडी, तो तैयार हो जाएं आप भी डांस फ्लोर को खाली करके पैर थिरकाने के लिए।

बात हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके दिल में कोई और समा सकता ही नहीं है सिवाय आपके अपने 100.7 FM रेनबो के. अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बता दीजिए. मुझे पता है कि आपके ईमेल्स भी आएंगे तो आप यही कहेंगे कि हाँ आप इस बात को बिल्कुल 110% सही कह रही हैं. तो फिर चलिए 9:33 का वक्त हो चुका है पॉप टाइम. इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त आपकी रुचा के साथ. अगला ईमेल है किसका, ये पढ़ देती हूँ. विनीत कुमार का ईमेल है मेरे पास और आपने हमें रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आपका ईमेल भेजा है. और आप लिख रहे हैं कि पॉप टाइम आपकी आवाज़ में ज़बरदस्त है, सुपर हिट है और गाने अच्छे बज रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं. और आपने लिखा है कि जब गाने अच्छे बजते हैं आप आती हैं तो बाहर आ जाता है रेनबो में मेरे दोस्त हैं क्या. चलिए बड़ी अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है. और आगे आप लिख रहे हैं शमा परवीन अंसारी सीतापुर से, ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, नवनीत हरकेश लखनऊ से, हरकेश ना, और संतोष मौर्य हरदोई से, ममता हरदोई से, रिंकी पिंकी रायबरेली से, और आज़ाद जो है सिमरी से. सबके बारे में पता करके बैठे हैं आप, सारे के सारे लोग सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है. अच्छी बात वाकई ये है कि सब एक साथ हैं और सब जुड़े हुए हैं, साथ में सुन रहे हैं. इससे अच्छा वाकई सही मानी में वाकई कुछ नहीं हो सकता. अरविंद कुमार दुबे जी का भी ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं कैसी हैं आप. तो मुझे लगता है मैं ठीक ठाक आपको अपनी आवाज़ से साउंड कर रही हूँ, उसका मतलब हम ठीक ही हैं. और आपने लिखा है कि वैसे तो सभी रेनबो लखनऊ के सारे प्रोग्राम सुनते हैं आप, लेकिन पॉप टाइम और रेनबो कैफे सुनना आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है. बात तो है, अगर आपने इसको सुना है तो मुझे पता है कि वो जो लेजीनेस है ना वो कहीं ख़त्म हो जाती है. इसीलिए कहते हैं यही जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता. लिखते हैं अंत भला तो सब भला, ठीक वही बात. दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद जब पॉप टाइम सुनता हूँ तो अच्छा मूड हो जाता है, फ्रेश हो जाता है. शुक्रिया, आप लिख रहे हैं कि आपकी हंसी अच्छी लगती है. अच्छा चलिए शुक्रिया, धन्यवाद इसके लिए भी. और जो कुछ भी तारीफ आपने लिखी है दिल से उसके लिए आपको धन्यवाद.

दे रहे हैं। और आपके साथ गोविंद दुबे, प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्यामा कुमारी हैं जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधांशु एस जी का ईमेल है और आपने लिखा राधे राधे, तो आपको भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतने प्यारे इस एड्रेस के साथ हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और आपने लिखा है भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब से आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त और आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। बाकी तारीफ मुगले दिल से धन्यवाद। दोपहर में बारिश हुई थी और ईमेल करना हमारे पवन भाई ने सिखाया था, तो उनको धन्यवाद कहिए हमारी तरफ से भी, क्योंकि अगर वो ना सिखाते तो फिर आप यहाँ नहीं आते, हमसे जुड़ते नहीं, फिर हम आपसे बात कैसे करते, बड़ी समस्या हो जाती। तो मेरी तरफ से धन्यवाद उनको कह दीजिएगा, ठीक है। और आपने लिखा है कि आपके दोस्त भी हैं और सिंहपुर सिधौली में रहते हैं और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से आपके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जो बाकी समय बचता है उसके लिए रेनबो है ना आपके साथ एक अच्छा दोस्त बनकर। कुलफसा आ चुकी है हमारे साथ, कैसी हैं पहले तो ये बताइए हमें आप। अच्छी होंगी जानती हूँ मैं। और आपने आपका ईमेल संदीला से लिखा है और आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, मौसम आपके यहाँ बहुत अच्छा, तो आपको सच बताऊँ तो मौसम आ रहे हैं आपका भी बहुत अच्छा है। और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर मन का मौसम अच्छा है तो बाहर मौसम कैसा है इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो मन के मौसम को अच्छा रखिए, फिर देखिए हर तरफ हरियाली, हर तरफ ठंडी हवाएं, मज़ा ही आ जाएगा लाइफ में, है ना। और आपके साथ साथ साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रोशनी रावत, ममता गौतम, निशा अंसारी सब सुन रहे हैं, दिल से धन्यवाद सबका। कृष्णकांत सिंह जी भी आ चुके हैं और आपका ईमेल क्या कह रहा है ये पढ़ दूं। आपने लिखा है प्रोग्राम पॉप टाइम जब भी आप होस्ट करती हैं तो शो एनर्जी से एकदम भर जाता है, तो धन्यवाद ही कह सकते हैं इसके लिए हम, और इससे बेहतरीन कोई शब्द अगर है तो वो भी इसके लिए, ठीक है। और आपने लिखा है कि आपकी शानदार परफॉर्मेंस सभी श्रोताओं का भी कर्तव्य है कि होस्ट आरजे कम। हाँ बस बिल्कुल यही हम बात कहते हैं, जब आपके अच्छे ईमेल आते हैं ना जहाँ पर आप कुछ अच्छा लिखते हैं तो वाकई हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ जाता है। लिख रहे हैं आपकी तारीफ में कुछ ज़रूर कहें और बाकी तो रेनबो धूम मचा ही रहा है, ये बात तो बिल्कुल सच है। और आपने हमें लिखा है कैसरगंज बहराइच से हमेशा की तरह आपका ईमेल है, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। आनंद तिवारी है मेरे साथ, आनंद ने क्या लिखा है, अरे आनंद जी आपका ईमेल कहाँ चला गया, आनंद के नाम से खुला और इतने सारे ईमेल खुल गए, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईमेल राजेश जी का मेरे पास आ चुका है, लिख रहे हैं कि कैसी हैं आप दीदी, बहुत बढ़िया हूँ। और आपने लिखा कि प्रोग्राम आपका सुन रहा हूँ, बिल्कुल हटके है और कटहल और सब्जी और रोटी बना ली है, क्या है मतलब इसी समय खाने की बात करेंगे आप, जब आपको पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, बहरहाल कोई बात नहीं, आप अच्छे से खा लीजिएगा। और बुद्धेश्वर लखनऊ से आपने आपका ईमेल भेजा है, दिल से धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। रामराज जी आ चुके हैं, जब आपका नाम आता है ना तो यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगता है, आपका नाम बड़ा प्यारा सा है ना, लगता है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। और आपने हमें ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से आपका ईमेल भेजा है और ये जो आपने लास्ट, बाकी सारे नाम तो वही हैं जो रोज़ मेरे साथ रहते हैं आपके साथ, रामराज, राजू, भानु, शंकर, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका, लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में जो आपने लिखा है ना कि रिचा बिटिया को प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद, ये बहुत अच्छी सी लाइन है, पता है इससे ये लगता है कि आप दिल से किसी के साथ जुड़े हुए हैं और आपका जो ये स्नेहाशीष मिलता है ये वाकई कमाल की बात होती है। बहरहाल 9:38 का वक्त हो चुका है, पॉप टाइम आप सुन रहे हैं आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। अगले गाने की है बारी जिसको हमने बिल्कुल बजा दिया है, पहुंचा दिया है आप तक, इसको एंजॉय कीजिए, लौटेंगे फिर तमाम सारे गानों के साथ, लेकिन इस बीच प्यार थिरकाते रहिएगा, अब वो जो किसी ने पूछा था कि लेट कर थिरकाते रहे, बहरहाल सुनते रहिए।

तो 9:48 का वक्त और रेनबो पर इस वक्त आपका शो पॉप टाइम आपके दोस्त आपके रुचा के साथ. और अगला ईमेल जो मेरे पास आ चुका है, आप लिख रहे हैं कि शो में बड़ा मजा आ रहा है, ये अच्छी बात है. लेकिन आनंद तिवारी जी आगे जो लिखते हैं वो ये है कि जिंदगी ने मर्ज का क्या खूब इलाज सुझाया है, वक्त को दवा बताया, ख्वाहिशों से परहेज बताया. बात तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये जरूरी भी होता है ना कई बार कि हाँ कुछ चीज़ों से परहेज भी रखा जाए. आगे आपने लिखा है कि प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद. जब आप ऐसी बातें लिखते हैं तो हमारा बस इतना ही कह सकते हैं कि हौसला अफजाई होती है. और आगे आपने लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ से आपका ईमेल है, दारू कुया मल्लावा हरदोई यूपी से आपका ईमेल है. सुपर से ऊपर आज गाने बजाए जा रहे हैं, धन्यवाद शुक्रिया कि सुपर से ऊपर के साथ 100 100 100 100 पाँच छः सात बाल लिख के भेज दिया है आपने. डेविड जी का ईमेल है और आपने हमें कहाँ से लिखा है, सोतिया गौरा चौकी गोडा से आप सुन रहे हैं इस वक्त. लिख रहा है इस वक्त अपने गांव आया हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ और यहाँ पर नेचर के बीच जंगल में नदी और उस पर आपका रेडियो साथ निभा रहा है आपका, मतलब ये जो रेनबो इस वक्त बज रहा है. और आपने लिखा है कि गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंदाज बहुत बढ़िया है, गाने अच्छे चल रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं. कहाँ से लिखा था आपने, ये वापस नाम पढ़ दें आपका. हाँ हाँ, आपने हमें लिखा है गाँव से सोतिया गौरा चौकी गोंडा से. थैंक यू सो वेरी मच आपकी ईमेल के लिए. बोरू सीट वापस आ चुकी हूँ, लिख रहे हैं कि बारिश में आने से भी गर्दा उड़ रहा. बहुत शुक्रिया, जितने भी नाम वापस लिख के भेजें फिर से पढ़ देते हैं. छोटे लाल शुक्ला गोली सेठ और बबलू सिंह सिद्धूरा भूल गए थे ना नाम, आप इसीलिए वापस लिख करके आए. और लिख रहे हैं इसलिए लिख दिए क्योंकि इन श्रोताओं के कॉल नहीं लग पाते. हाँ ये तो बात सही है, तो कम से कम आप ये एक नेक काम तो कर ही रहे हैं. मनोज बंसल जी हैं हमारे साथ और आपने हमें हरियाणा से आपका ईमेल भेजा है और लिख रहे हैं हरियाणवी गीत सुनाकर आपने हमें डांस करने के लिए मजबूर कर दिया, दिल से धन्यवाद. बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने आपका ईमेल भेजा और जो भी तारीफ में आपने लिखी है इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद. विनीत कुमार जी का ईमेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं. प्रिंस

भी आ गई हैं। आपने हमें जनपद हरदोई से आपका ईमेल भेजा है और लिख रही है कि मैं रेडियो सुन रही हूँ, प्रिंस ही पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा, ये तो अच्छा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं और प्रिंस ही पढ़ाई कर रही हैं इस वक्त, पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोली जब पढ़ाई वढ़ाई कर लें उसके बाद जब मौका लगेगा तो फिर आपका तो रेनबो आपके साथ है, कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं आप, है ना। और शिवराज जी, आपका ईमेल ऑलरेडी शामिल किया था हमने, शायद आप सुन नहीं पाए, तो वापस आपका नाम हम ले रहे हैं कि हाँ शिवराज जी, आपका ईमेल फिर से हमने पढ़ दिया, ठीक है। जावेद अख्तर साहब भी आ चुके हैं, थोड़ा अदब से बात करनी पड़ेगी भाई, नाम इतना जावेद अख्तर साहब का है इसलिए। आप लिख रही हैं कि गुड इवनिंग, वाकई चुन चुन कर आप लाई हैं गाने और कार्यक्रम पूरी तरह से बहुत भूचाल आ गया है। ये जो वर्ड्स आ जाते हैं ना बीच में, ये वाकई थोड़ा मजा आ जाता है पढ़ने को। और आपने लिखा है, दिल को छू लिया आपके अंदाज ने, और रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपके साथ शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा और शाहीन ईमेल के साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, धन्यवाद। इंद्रपाल जी, वापस आपने क्या लिख दिया है, लिख रहे भगवान कसम, एक बात आपसे सत्य सत्य कहता हूँ, एफएम रेडियो हमें आपका बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा भैया, बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आपने लिखा है कि आप बता सकती हैं किसने लिखा, कहाँ से, क्या चीज़, कहाँ से किसने लिखा। फिलहाल तो आपका ईमेल आया मेरे पास, तो हम उसे ही पढ़ रहे हैं। पवन कुमार जी ने ईमेल किया है और आपने हमें लिखा है, सिंहपुर सिधौली सीतापुर से, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, सॉन्ग अच्छे बज रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और अलग अलग अलग ईमेल किसका है, बार बार आपके ईमेल आ रहे हैं ना, बड़ी कंफ्यूज हो जा रही हूँ किसके ईमेल छूटे जा रहे हैं। वैभव प्रकाश का भी ईमेल आ चुका है और आपने लिखा है, गाना है और प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने एक संदेश भेजा है कि हाँ, ये तो थोड़ा सा मुझे वापस पढ़ना पड़ेगा, आपने काफ़ी बड़ी सी कुछ बात लिखी है, कुछ हम गलत ना पढ़ जाएं, तो इसके लिए थोड़ा सा रुकेंगे, वापस आकर इस ईमेल को ज़रूर पढ़ेंगे। अमन नवाब आ गई हैं, बहुत देर से आई अमन, कहाँ थी अभी तक आप? आपने लिखा है, कैसी हैं आप, सुपर सॉन्ग, और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा खाना बनाओ या डांस को, डांस कर लो पहले क्योंकि थोड़े वक्त की बात है, उसके बाद खाना बना लेना, ठीक है। और आपने लिखा, छोटा सा गिफ्ट भेज रही हूँ, क्या भेजा है? अरे वाह, ये तो वाकई बड़ा प्यारा सा गिफ्ट है, बहुत शुक्रिया इसके लिए मेरी तरफ से भी, और जिनको आपने साथ में अटैच किया है, आपकी प्यारी आरजी अंजू को, उसके लिए भी आपका हम दिल से धन्यवाद कहते हैं, वहां तक आपकी आवाज़, आपकी बात पहुंचा देंगे, बहुत शुक्रिया इसके लिए। राही आ चुके हैं हमारे साथ और राही ने लिखा है, लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, प्रोग्राम में हंगामा मचा दिया है, 8 बजे से लगातार जुड़े हैं, गजब की सारी गजल लगी, बहुत शुक्रिया इसके लिए। और लग रहे हैं, आपने लिखा है, मुझसे रहा नहीं गया, सोचा ईमेल कर ही देती हूँ। अरे तो इतना टाइम क्यों लगाया, हम तो कब से आपसे कह रहे थे, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आपके ईमेल का हमको रहता है इंतजार, अच्छा किया जो आ गई। और आपने लिखा है, धन्यवाद के साथ प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, शुक्रिया, हम भी आपको कह रहे हैं। शिवराज जी वापस आ गए, अब क्या लिखा आपने, प्लीज प्लीज प्लीज शामिल कर लेना। अरे मैंने आपका ईमेल 3 से 4 बार शामिल कर लिया, शायद आप सुन नहीं पाए हैं। और आप अच्छा नाम लेना चाहते हैं, भाई सुरेश, राम आपके, राम सुरेश आपके साथ हैं और साथ ही भतीजे का नाम शिवराज है। FM के हर प्रोग्राम देर रात तक सुनता हूँ, आज भी सुनिएगा, सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज जब रजनीगंधा लेकर आएंगे ना, तो बड़ा एक विशेष तौर पर रजनीगंधा आप तक पहुँचेगा। पहले तो आज के दिन एक खूबसूरत अदाकारा का हुआ, उनके बारे में भी आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले भी कल एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, आवाज़ की मलिका जिनको हम कह सकते हैं, उनको हमने खोया, तो उनके बारे में भी हम आज आपके साथ जुड़ेंगे रजनीगंधा के ज़रिए। तो इसलिए आपका रहना वैसे भी हमारे साथ बेहद ज़रूरी है। अज़ीज़ अहमद आ चुके हैं हमारे साथ और आपने कहाँ से आपका ईमेल लिखा है, ब्लॉक अलिया डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आपका ईमेल है और गाने आपको पसंद आ रहे हैं, अंदाज़ आपको अच्छा लग रहा है, दिल से धन्यवाद है। आपने लिखा, आपका जिगरी दोस्त आतिफ मोहम्मद बादी सीतापुर से पूरे परिवार के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। 9:54 का वक्त हो चुका है और जी मेल मैंने कहा था ना, पढ़ के बताती हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, ये सब चीज़ें ना इसीलिए होती हैं क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ड्राइव करिए, लेकिन बहुत सेफली ड्राइव करिए, हर बार ये आपसे कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, ज़रूरी है, और जब हम ध्यान नहीं देते तो समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप लिख रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ, उनका फ़ोटो देखकर मेरा भी मन विचलित हो गया, 1200 रुपये इस बार कोर्ट में पर भेज दो, कल वापस कर देंगे। तमाम सारी चीज़ें आती हैं लेकिन इनसे भी आपको बचना होगा क्योंकि नंबर वाकई इसी तरीके से हैक होते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 9:54 का वक्त हो चुका है और अब धीरे धीरे बारी आ रही है कि हाँ, शो को वाइंड अप किया जाएगा, लेकिन अभी एक गाना दे रहे हैं, पहले इस गाने को सुनिए और अगर वक्त बचा ना थोड़ा सा, वापस लौटेंगे आपके साथ। फिलहाल गाना भेज दिया, गाने को एंजॉय कीजिए।

बैलेंस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमें आपसे बेइंतहा प्यार है और इसी प्यार की वजह से हर बार आपसे मिलने के लिए कोई कोशिश कोई कमी हम बाकी रखते नहीं। फिलहाल 9:56 का वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने की बारी पर, वो तमाम सारे लोग जिन्होंने मुझे ईमेल किया आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आपके ईमेल्स हम तक पहुंचाते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बाबू अंसारी जी ने वापस ईमेल कर दिया, फटाक से पढ़ लेती हूँ क्या लिख रहे हैं। कुलदीप गुप्ता, फैज अंसारी और महेंद्र दीपन जी के साथ वापस आप जुड़े हैं, प्रोग्राम आपको पसंद आया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीरजीत सिंह अभी आए हैं और आपको प्रोग्राम अच्छा लगा इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और सुनील कुमार जी भी आ गए हैं, गाने अच्छे सुनने को मिले और धन्यवाद दिल से आपको भी, आपने गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से आपका ईमेल हम तक पहुंचाया था।

तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने ऐसा कुछ जरूर किया होगा। आज दो चार घुंघरू तो पक्का टूटे होंगे, और हो सकता है कि क्या ही कहूँ मैं। बहरहाल 9:58 का वक्त हो चुका है। दिस इज आरजे रिचा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी दिन किसी रोज इसी शो में आपसे मिलेंगे। लेकिन अभी अगले घंटे भी हम रहने वाले हैं आपके साथ, और उसके बाद भी रात 12 बजे तक। बहुत खास है आज का शो, जिसे सुनना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, और ये सफ़र तभी पूरा होगा जब आप हमारे साथ होंगे। याद करेंगे बीते दौर की पार्श्व गायिका जिन्हें हमने कल खोया उनको, और साथ ही वो शख्सियत जिनका जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा था। कौन है वो जानना है तो बस आपको बने रहना पड़ेगा आपकी अपने 107 FM रेनबो पर, जो है धड़कन लखनऊ के। सुनते रहिए न्यूज़, जुड़े रहिए।

नमस्कार, रात के 10 बजे है, सुनिए मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर् परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। सुश्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण में जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सतर्कता बरतने बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनपद सहारनपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मां शाकुंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अधिकारियों के साथ बाढ़ क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में जिस भी अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सहारनपुर में बीते गुरुवार की रात आंधी, तूफान, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई थी। पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद मां शाकुंभरी के पास नदी में अचानक तेज बहाव आ गया था। उसकी चपेट में आने से लगभग एक दर्जन वाहन बह गए थे। दो महिला श्रद्धालुओं की मौत भी हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे रजनीगंधा।

0: लखनऊ है तो महज गुम्बद ओ मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा ओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों यकीन मानिए, ऐसे न जाने कितने गाने हैं जो उन्होंने गाए, जिनको उन्होंने अपनी आवाज़ दी, लेकिन हम और आप हमेशा यही समझते रहे कि ये वो गीत हैं जिन्हें लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी। ये विडंबना जिंदगी भर उनके साथ चलती रही। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में उनका नाम हमेशा एक ख़ास संदर्भ के साथ लिया जाता है। तब जब बात आती है उनके गीतों की, जब बात आती है लता मंगेशकर जी से उनकी तुलना की, कहते हैं कि उनके जीवन की त्रासदी ही रही कि उनकी आवाज़ हूबहू लता मंगेशकर जैसी रही, जिसका दंश उन्हें जीवन पर्यंत सहना भी पड़ा। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब देश के सर्वोच्च पुरस्कारों का ऐलान किया गया, तो इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी शामिल था जिसने यूं तो कई मशहूर गानों को अपनी मधुर आवाज़ दी, लेकिन इस सिंगर को म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनका असल मुकाम हासिल नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया, जिसके लिए हमेशा कहीं ना कहीं वो अपने अंदर एक दंश को लेकर चलती रहीं। जी हाँ, हम बात आपसे कर रहे हैं आज उस सिंगर की, जिस सिंगर की कहानी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। भले ही आप उनके नाम से कम वाकिफ हों, या हो सकता है कि आपने गौर तो किया हो लेकिन फिर भी गौर ना किया हो, लेकिन जब कभी कुछ गानों को गुनगुनाने की बात आई, या फिर जब कभी अंताक्षरी खेलने की बात आई, तो ऐसा कोई दौर नहीं रहा जहां पर उनके गाने आपने गुनगुनाए ना हों। जी हाँ, ये कहानी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार, बहनाने भाई की कलाई पे, इतना है तुमसे प्यार, मेरा प्यार भी तू, मेरा यार भी तू, बहार भी तू, जाने से कितने गाने हैं जिनको उन्होंने अपनी आवाज़ दी, और ये कोई और नहीं बल्कि बीते दौर की जानी मानी सिंगर सुमन कल्याणपुर जी हैं। दुर्भाग्यवश कल हम सब ने इन्हें खो दिया। आज का रजनीगंधा का फर्स्ट हाफ हम नाम करेंगे उनके श्रद्धांजलि स्वरूप। और बस आपसे हमेशा की तरह गुजारिश इल्तिजाइए कि आप यहीं रहें हमारे साथ, क्योंकि ये सफ़र होगा तभी पूरा। उनके लिए संगीत उनका प्यार था, और लोगों के दिलों में बस कर उन्होंने इस प्यार को अमर भी किया। 10:07 का वक्त, रजनीगंधा में इस वक्त आपके साथ मैं आपकी दोस्त आपकी रचा, और ये पहला घंटा सुमन कल्याणपुर जी के नाम श्रद्धांजलि स्वरूप।

सच है ये बात कि संगीत उनके लिए हमेशा उनका पहला प्यार रहा, और ये प्यार जब उन्होंने अपने सुनने वालों तक पहुंचाया तो वो उन तक वापस भी लौटा। 80 के दशक के अंतिम सालों में से किसी एक साल की बात है जब टीवी पर दूरदर्शन का लोकप्रिय शो छाया गीत प्रसारित हो रहा था। गाना आता है, वो गाना जो बेहद लुभाता है सभी को, सुनने वाले उस गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध होते हैं, और हाँ वो गाना जो अक्सर अंताक्षरी गाते हुए कहते हुए हम और आप उस गाने को ना शामिल करें ये कभी होता नहीं। गाना ख़त्म हुआ, शो की प्रथा के अनुसार होस्ट गायकों का नाम बताते हैं कि अभी आप जो गाना सुन रहे थे इस गाने को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने। इस उद्घोषणा के साथ वो प्रसारण छाया गीत का था वो समाप्त हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रसार भारती के दफ्तर का फोन बजता है। फोन पर 20 वर्षीय चारुल कल्याणपुर थी जो ये बताती हैं कि ये जो गीत अभी आपने सुनवाया इस गीत को लता जी ने नहीं बल्कि उनकी माँ सुमन कल्याणपुर ने गाया है। लेकिन जैसे कि हम और आप अपनी बात करें तो ऐसे कई बार होता है, कितने सारे ऐसे गाने हैं जिन्हें हम सुनते हैं, हम और आप सुनते हैं, और हमेशा यही बात जहन में आती है कि इस गाने को लता मंगेशकर जी ने ही अपनी आवाज़ दी होगी। तो ठीक यहाँ भी हुआ, जब चारुल ने फ़ोन करके बताया कि इस गाने को लता जी ने नहीं बल्कि उनकी माँ सुमन कल्याणपुर ने गाया है, उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, करता भी कैसे, क्योंकि खुद कई बार लता मंगेशकर जी के सहायक और उनके करीबी मिलने वाले भी उनकी और सुमन जी की आवाज़ के बीच धोखा खा जाया करते थे, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ की मधुरता और बारीकियां लगभग एक जैसी थी। हालांकि इस वजह से कई बार उनको जो है सामना कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसका दंश उन्हें हमेशा रहा। हमेशा वो ये सोचती रहीं कि हाँ ठीक है आवाज़ लता मंगेशकर जी जैसी है, लेकिन वो मकाम जो उन्हें मिलना चाहिए था वो शायद इन्हीं वजहों से पीछे रह गया। बहरहाल यहाँ हम बात आपसे कर रहे थे उस गाने की जो बजा था उस वक्त जो छाया गीत कार्यक्रम में प्रसारित हो रहा था, और वो गीत जिसे सुनने के बाद लोगों ने अनुमान लगाया हमारे आपके जैसे कि इसे लता जी ने गाया होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप उस गाने को सुने तो अब आप हमेशा इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि उस गाने को गाया जिन्होंने कोई और नहीं बल्कि महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी, जिनको हमने कल खोया है और श्रद्धांजलि स्वरूप आज का रजनीगंधा हम उन्हें समर्पित कर रहे हैं। इस गीत की बात हुई है तो ये गाना आप तक ना पहुंचे ये कैसे हो सकता है। 10:14 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप चाहें भी तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हाँ, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में वो बात तो थी जो सीधा घर कर सकती थी लोगों के दिलों में। हाँ, ये और बात रही, ये विडंबना रही कि उनकी आवाज़ की समरसता लता मंगेशकर जी जैसी थी, जिसके चलते उन्हें उसका उतना लाभ, उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना वाकई इस महान पार्श्व गायिका को मिलना चाहिए था। चूंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता ताई ने सुमन जी से पहले कदम रखा और अपने कोयल कंठ से लोकप्रियता के एक ऐसे शिखर पर पहुंच गईं जहां उनकी आवाज़ से अपरिचित शख्स ढूंढना नामुमकिन सा हो गया था, जिस कारण कुछ सालों बाद जब सुमन कल्याणपुर जी इंडस्ट्री में आई और उनके गाने रेडियो पर बजे तो ज़्यादातर लोग सुमन जी की आवाज़ को लता मंगेशकर जी की आवाज़ ही समझते रहे। गाना याद है ना आपको, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे? जब पहली बार सुना तब यही लगा था कि हाँ, इस गाने के पीछे लता जी ही होंगी। तो प्यार के चर्चे हर जुबान पर चढ़े, गीत भी सबकी ज़ुबान पर चढ़ा, लेकिन अगर हम बात करें गीत और ऐसे कई गीतों की जिनमें अपनी आवाज़ देने वाली गायिका के बारे में न किसी को ठीक से मालूम हुआ और ना ही किसी को अच्छे से खबर हुई। कारण वही, क्योंकि जिस दौर में लता मंगेशकर जी थी और सुमन कल्याणपुर जी जिस दौर में आई, उस वक्त लता जी की खनकती कलदार सिक्के की जो आवाज़ थी वो चल रही थी, और संगीत की जानकार अगर उनके विरुद्ध सुमन जी से गाने गवाने की हिमाकत करते भी तो भला कैसे कर सकते थे। कुल मिलाकर एक क्लोन के तरीके से बना दिया गया सुमन कल्याणपुर जी को। कसूरवार वो भी नहीं थे जिन्होंने ये किया, उनको भी ठहरा नहीं सकते, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ की बारीकियां समरसता थी ही एक जैसी। क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लता ताई ने सुमन जी से पहले कदम रखा और वो लोकप्रियता जो उन्होंने छुई वहां तक पहुंचने में एक शख्स का मिल पाना वाकई मुश्किल था, और ऐसे हालात में जब सुमन कल्याणपुर जी ने कदम रखा तो हाँ, हर बार उनके गाए गीत उस अभिज्ञान से कहीं पीछे रह गए जो ये बता सकते थे कि ये जो गाने आप सुन रहे हैं, हाँ, ये उन्हीं की आवाज़ के हैं, और उन्हीं में से ये गीत जो अभी हम आपको दे रहे हैं, जितनी बार भी सुना हर बार यही लगा कि हाँ, इसके पीछे तो लता मंगेशकर जी ही होंगी, लेकिन असल बात तो ये है कि इस गीत को आवाज़ दी सुमन कल्याणपुर जी ने और साथ में रहे मोहम्मद रफ़ी साहब।

यकीन मानिए पहले हमें भी खबर नहीं थी कि हाँ इस गीत को अपनी आवाज़ सुमन कल्याणपुर जी ने दी है, लेकिन जब पढ़ा सुना देखा सर्च किया तो समझ आया कि हाँ ये गीत तो सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में है, ना कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। 28 जनवरी 1937 को ठाका में उस वक्त भारत का हिस्सा था जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हिमाड़ी के घर उनकी पहली संतान ने जन्म लिया और शंकर बाबू और उनकी पत्नी सीता ने अपनी सुपुत्री का नाम रखा सुमन। कहते हैं सुमन के अलावा शंकर बाबू के घर 5 संतानें और हुईं जिनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए, इसलिए शंकर बाबू परिवार के साथ 1943 में बम्बई आ गए, यहाँ शिफ्ट हो गए। कहते हैं कि सुमन जी का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था, जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में ही किया उन्होंने। पेंटर बनना चाहती थी वो, लेकिन सुमन जी की आवाज़ की परख कहते हैं कि उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राय भोले जी को हो गई थी, लिहाजा उन्होंने सुमन के पिताजी से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन शौकिया संगीत सीख रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी

संगीत का वो और जो था उसको और गंभीरता से उन्होंने लेना शुरू कर दिया। आने वाले सालों में कहते हैं कि सुमन जी ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी। और फिर ये बात भी सामने आई कि चूंकि उनके घर का माहौल संगीत में ज़रूर था मगर किसी को भी बाहर गाने बजाने की इजाज़त नहीं थी, तो लिहाजा सुमन जी भी घर पर ही रहकर अपनी प्रैक्टिस और गीतों का जो चयन था और जो गाना था उसको करती रहीं। तो अगर घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी तो मुंबई कैसे आ गई थी, मुंबई का रुख कैसे किया था,

तो घर में तो माहौल जो था संगीत का वो तो था, लेकिन इजाज़त घर से नहीं थी कि निकल कर जाकर वो कहीं बाहर गीत गाती या फिर जो उनकी प्रतिभा थी उसको एक्सप्लोर करती। लेकिन जब गुरु केशव राय भोले, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे, रेडियो पर उन्होंने गाने का प्रस्ताव दिया तो ना तो पिता मना कर पाए और ना ही खुद सुमन उस बात से इनकार कर सकी। कहते हैं पहली बार था जब सुमन जी की आवाज़ चार दीवारी के बाहर दर्शकों के कानों तक पहुंची थी और जल्द ही उन्होंने फिल्म में गाने का ऑफर भी स्वीकार कर लिया। और ये फिल्म थी 1953 में रिलीज़ हुई मराठी शुक्राची चांदनी। फिल्म जब थिएटर में चली तो दर्शक दीर्घा में बैठे जाने माने डायरेक्टर शेख मुख्तार साहब के जहन में फिल्म से ज़्यादा फिल्म के जो गीत थे वो वहाँ जाकर रुक गए, उस पर उनका ध्यान ज़्यादा रह गया। कारण वही सुमन जी की आवाज़ की कोमलता, जिससे वो बेहद प्रभावित हुए थे और फिर उन्होंने सुमन को उनकी अगली आने वाली फिल्म मंगू में तीन गाने गाने के लिए ऑफर कर दिए। फिल्म में म्यूज़िक दे रहे थे मोहम्मद शफ़ी। कहते हैं कि उन्होंने तीनों गाने खूबसूरती से गाए और फिर फिल्म रिलीज़ का बेसब्री से इंतजार

इंतज़ार भी करने लगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो कुछ ऐसा हुआ हाँ जिससे थोड़ा सा धक्का तो लगा था, लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि हाँ फिल्म में गाने का मौका मिला। क्या हुआ था अभी जब आप लौटेंगे तब इसका जिक्र हम आपसे करेंगे। 10:31 का वक्त, आज के रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को हम श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित कर रहे हैं बीते दौर की महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी को, जिन्हें हमने कल दुर्भाग्यवश तरीके से खो दिया।

डायरेक्टर शेख मुख्तार साहब की फिल्म मंगू में तीन गाने का ऑफर उनको मिल गया था जिसका म्यूजिक दे रहे थे मोहम्मद शफी। सुमन कल्याणपुर बेहद इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि जब वो गाने बनकर आएंगे, फिल्म रिलीज होगी तो ये एक नई शुरुआत उनकी जिंदगी की होगी, जिसका वो इंतजार बेसब्री से कर भी रही थी। लेकिन कहते हैं कि रिलीज के पहले किसी कारणवश फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी मोहम्मद शफी की जगह ओपी नैयर साहब को सौंप दी गई। ओपी नैयर साहब ने सुमन जी के गाए तीन गानों में से सिर्फ एक ही गाने को फिल्म में जगह दी, जिस बात से उन्हें निराशा भी हुई। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ की उम्मीद लगा बैठे हों और उसके बाद वो चीज़ हो तो पूरी लेकिन उस तरीके से ना हो जिसकी हमने उम्मीद लगाई है, तो धक्का लगना या फिर निराशा होना बेहद लाजमी सी बात है। सो उनके साथ भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ अपने मन को ये सोच कर तसल्ली दे दी कि चलो कोई बात नहीं, फिल्म में कम से कम एक गाना

रखा गया और इस तरह 1954 में रिलीज हुई मंगू के गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे, इस गीत से सुमन कल्याणपुर जी ने हिंदी फिल्मों की तरफ जो उनका सफर था वो शुरू हुआ और यहाँ से शुरू हुआ जो सफर था उसने आगे कहते हैं खूब रफ्तार पकड़ी। इसी साल फिल्म दरवाजा में सुमन जी ने तलत महमूद साहब के साथ अपना पहला डुएट भी गाया और तलत महमूद जैसे कद वाले सिंगर के साथ गाना गा सकने पर सुमन इंडस्ट्री की नज़र में आ चुकी थी और भविष्य में सुमन कल्याणपुर जी ने हिंदी मराठी फिल्मों में 1000 के आसपास गाने गाए और हिंदी मराठी के अलावा गुजराती मैथिली तमिल भोजपुरी पंजाबी जैसी कई भाषाओं के गाने भी उन्होंने गाए। और अगर हिंदी गानों की बात करें तो यकीन मानिए एक लंबी सारी लिस्ट है, जब जब सामने आ रही है तो लगता है कि अच्छा ये गीत भी उन्होंने गाया। फिर चाहे वो नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे हो, दिल ने फिर याद किया हो, चांद तकता है इधर, या फिर ना तुम हमें जानो हो, या फिर मेरे महबूब न जाए, या फिर आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, या फिर वो तमाम सारे गीत जो आप धीरे धीरे इस कार्यक्रम के जरिए सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक गीत आप तक सुनाया था कि ये किसने गीत छेड़ा। यकीन मानिए सुनने से पहले तक हमें भी ये लगता था कि ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है। दिल पर हाथ रख के बताइए ऐसे कितने गाने जिनको आप सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा ये गाना सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है। हाँ, हैं ऐसे बड़े सारे गाने जिनको जब आप सुन रहे हैं तो हर बार यही लग रहा है कि क्या इस गाने को सुमन कल्याणपुर जी ने अपनी आवाज़ दी। ठीक वैसे जैसे अभी एक गाना हमने आपको दिया, बेहद सुना जाने वाला गाना, और जब आया तो लोगों को यही लगा कि लता जी ने इस गाने को आवाज़ दी, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था और वो था ये कि इस गीत को आवाज़ दी मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी ने, जिन्हें हम और आप आज मिलकर याद कर रहे हैं रजनीगंधा के जरिए श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम उनको समर्पित करते हुए।

1950 से 50 और 60 का दशक हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माना जाता है। आखिर माना भी क्यों ना जाए, मानो कुदरत ने अपने सारे रत्न एक साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इसी दौरान सौंप दिए थे। किशोर, रफ़ी, मुकेश की आवाज़ें जहां पुरुषों के दुख, उम्मीद और प्यार की आवाज़ बन रही थीं, वहीं फीमेल वॉइस के नाम पर सबकी पसंद मंगेशकर बहनें बनी हुई थी, जिसमें लता जी की डिमांड पीक पर रहती थी। कहते हैं कि डिमांड भी ऐसी कि उस दौर में भी लता जी का एक गाना गाने के लिए 100 रुपये तकरीबन लिया करती थी, और बिजी शेड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तब तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर्स तक पहुँच पाते थे।

और जब लता जी तक पहुंचना मुश्किल था तो कहते हैं कि ऐसे दौर में हूबहू लता मंगेशकर की आवाज़ वाली सिंगर मिलना इन प्रोड्यूसर्स के लिए जैसे ख़जाना मिलने से कम नहीं था। नतीजा ये रहा कि सुमन कल्याणपुर जी के पास फिल्मों का तांता लग गया। हालांकि एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल गई थी। कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, और तो और उन्होंने ये भी कहा, जो सुनाई देता है, जो कहा जाता है, जो पढ़ा जाता है, ये तक भी कहा कि अगर सुमन जी के साथ काम करता है तो वो शायद उनके साथ उतना बेहतर तरीके से काम ना कर पाएं। ऐसे दौर में लता मंगेशकर जैसी बड़ी गायिका को भला कौन नाराज कर सकता था। और नतीजा फिर वही हुआ, सुमन कल्याणपुर जी के लिए नुकसानदेह रहा और उनके करियर को वो ऊंचाई जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी आप इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, भले ही वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची, लेकिन आपके हमारे दिलों में तो वो वैसे ही हैं। और जब गानों की बात आती है तो हाँ, सारे गाने एक से बढ़कर एक। एक खूबसूरत गीत वापस आप तक दे रहे हैं हम, इस गाने को सुनिए, जुड़े रहिए आपके अपने 107.7 FM रेनबो के साथ।

दोस्तों, लता मंगेशकर के समकालीन दौर में उभरने वाली उन चुनिंदा गायकों में से रही सुमन कल्याणपुर जी, जो सीधे तुलना और प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी जगह बना सकी थी। हालांकि कई बार उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन आपको ही जानकर हैरानी होगी शायद कि बावजूद इसके सुमन कल्याणपुर जी लता मंगेशकर को हमेशा अपना आदर्श मानती रहीं। उनके हिसाब से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि वो बचपन से लता जी की बड़ी फैन रही हैं, उनके गाने गाती हैं और वो उनकी प्रेरणा स्वरूप हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक दौर ऐसा भी आया था जहाँ पर वो अपने इस दुख को छिपा नहीं पाई थी, और किस्सा था उस वक्त का जब एक बार एक बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को लेकर जब उनको कहा गया था कि उन्हें गीत गाना है, लेकिन उस दौरान जो हुआ था उस दुख को वो छुपा नहीं पाई। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गीत गाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, रिहर्सल भी हुई थी, लेकिन मंच के पास पहुँचते ही उन्हें इस गाने के बजाय दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। समझ नहीं पाई वो कि क्या हुआ, आखिर क्यों गाना उनसे नहीं गवाया गया। बहरहाल ये एक ऐसा मौका था जो उनको शायद कहीं ज़्यादा वो एक तसल्ली जो एक गायिका के तौर पर होती थी वो भी दिला सकता था। वो गाना जो गाने वाली थी वो था है मेरे वतन के लोगों। कहते हैं इस गीत का मौका मिलने के समय उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान ये गाना उनसे नहीं गवाया गया, ले लिया गया, तो एक बड़ा सदमा भी रहा उनके लिए। आज के डिजिटल दौर में जहां क्रेडिट के हक के लिए सब डंके की चोट पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सुमन जी ने कभी ये मुद्दा तब नहीं बनाया कि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक शोहरत नहीं मिली। दुखद बात ये भी रही कि किसी म्यूज़िक अवार्ड शो या फिर ज्यूरी की भी नज़र सुमन जी के जो इंडस्ट्री में योगदान था उस पर नहीं पड़ी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उनका शांत रहना, सहजता के साथ उनकी जो जर्नी है उसको पूरा करना, ये भी दर्शाता है कि हाँ, बेहद संवेदनशील और बहुत ही समझी सुलझी महिला थी। लेकिन ये जो एक दंश था, हाँ, वो कहीं उनके साथ ज़रूर चला।

दोस्तों 1960 की करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर बहस हो गई थी, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने को मना कर दिया था। और ऐसे में मोहम्मद रफी के साथ डुएट गा सकने वाली गायिका की तलाश शुरू हुई और कहते हैं तब ये तलाश आकर थमी सुमन कल्याणपुर जी के पास। हालांकि उनका ये कहना था कि अगर ये तलाश सहर्ष आकर ख़त्म होती तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल ये तलाश वहाँ आकर रुकी और उसके बाद कहते हैं कि सुमन कल्याणपुर जी के साथ मोहम्मद रफ़ी और सुमन जी ने खूब गाने मिलकर गाए और ये गाने कहते हैं उस वक्त काफ़ी चले भी। किसी को एहसास ही ना हुआ कि जिस आवाज़ को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर जी की नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर की है। पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याण जी ने रफ़ी साहब के साथ तकरीबन 140 गाने या फिर उससे ज़्यादा भी आप कुछ कह सकते हैं गाए, और वो तमाम गाने जो भी उन्होंने गाए कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी बसे हैं, जैसे हाँ आज ही की बात हो।

दोस्तों फिर मंगो के साथ उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहते हैं मियां बीवी राजी, बात एक रात की, दिल एक मंदिर, दिल ही तो है, शगुन, जहां आरा, सांझ और सवेरा, नूर जहां, साथी और पाकिजा जैसी कई सारी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया। और संगीतकारों की अगर बात करें तो शंकर, जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, कोहली, एस डी बर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौशाद, एस एन त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी, आनंद जी, वसंत देसाई, रविशंकर शर्मा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे तमाम सारे गायिकाओं, म्यूजिक कंपोजर्स के साथ उन्होंने अपने जो गीत हैं उनको दिया।

और मजे की बात ये भी रही कि जो भी गाने उन्होंने गाए, ऐसा कहा जाता है कि जब गानों की जो सूची बनती थी उसमें पहले या दूसरे स्थान पर उनके गाने सबसे ज़्यादा गाए हुए गाने रहा करते थे। अपने फिल्मी करियर की बात करें तो तकरीबन 800 से भी ज़्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गाने उन्होंने गाए और 1960 के दशक में रफ़ी साहब के साथ 140 से ज़्यादा अधिक युगल गीत गाकर उन्होंने इस बात को भी साबित किया कि हाँ, अगर मौका मिलता तो वो उन्हें और बेहतर तरीके से लोगों के सामने ला सकती थी। करीब 3 दशकों के अपने करियर में उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी सहित एक दर्जन से भी ज़्यादा भारतीय भाषाओं और बोलियों में फिल्मी, गैर फिल्मी गीत, गज़ल सब कुछ देकर बदलते वक्त के साथ सिनेमा को अलविदा कहा। 10:58 का वक्त हो चुका है और आज के रजनीगंधा में हम और आप मिलकर याद कर रहे थे सुमन कल्याणपुर जी को, जिन्हें हमने कल खोया। तो आज का रजनीगंधा श्रद्धांजलि स्वरूप हम उन्हें देते हैं, ये जानते हुए कि भले ही वो आज शरीर से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन ऐसी शख्सियतें कहीं नहीं जाती, हमेशा रहती हैं हमारे साथ किसी बेहतरीन खुशबू की तरीके से, किसी ऐसी खुशबू की तरीके से जो हमेशा हमें और आपको माहौल को महका कर रखती है। तो इसी आखिरी गीत के साथ, जो हाँ, जिसे आवाज़ दी सुमन कल्याणपुर जी ने ही और जिसे अब तक हम और आप ये सोचते रहे कि नहीं, इस गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने, तो फिलहाल इस गीत के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। लेकिन अगला घंटा भी हम रहेंगे आपके साथ, तब जब हम बात करेंगे नरगिस दत्त साहिबा के बारे में। तो आपको रहना होगा यही हमारे साथ।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया। इनमें प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपये, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। वहीं जनपद स्तर पर टॉप 10 में स्थान बनाने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info.lpg@vitarrakshapati से भेजे गए हैं ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चैन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: लखनऊ है तो महज गुंबद ओ मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा ओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।

तो ऐसा तब भी कुछ हुआ होगा जब उन्होंने इस धरती पर इस दुनिया में कदम रखा होगा, सब तरफ बहारें होंगी, दिल झूमे होंगे, क्योंकि उन्होंने आज के दिन इस दुनिया इस धरती पर कदम रखा। एक ऐसा नाम जो वक्त के साथ भारतीय सिने जगत की जानी मानी अदाकारा भी बनी। भारतीय सिनेमा जगत की उन चुनिंदा कलाकारों में से उनका नाम लिया जाता है जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा के एक युग की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में जब भी कभी अदाकारी और खूबसूरती के एक ख़ास मुकाम की बात आती है तो उनका नाम आना बेहद लाजमी होता है। हिंदी सिनेमा जगत में 4 दशक तक अपने बहुआयामी अभिनय से उन्होंने लाखों प्रशंसक बनाए और तो और वक्त के साथ पॉलिटिक्स में भी अपना उन्होंने हाथ आजमाया और पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली एक्ट्रेस के तौर पर शुमार हुई। इतना ही नहीं, मदर इंडिया के लिए कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उन्हें दिया गया, उनके नाम किया गया और इस संस्था से अवार्ड पाने वाली वो पहली भारतीय अभिनेत्री बनी। जी हाँ, जिनके नाम इतने सारे कीर्तिमान स्थापित हुए, जिन्हें भारतीय सिने जगत की एक बेहद मशहूर अदाकारा के तौर पर जाना जाता है, वो जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया इस धरती पर कदम रखा, कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके सबके दिलों में बसने वाली नरगिस साहिबा। जी हाँ, आज जन्म जयंती है उनकी और रजनीगंधा के सेकेंड हाफ में हम एक बार फिर से उन्हें याद करेंगे और इस सफ़र में जिएंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ ख़ास पलों को उनकी फिल्मों के कुछ बेहतरीन नगमों के साथ। और हमेशा की तरह वही गुजारिश, वही इल्तिजा कि आपका रहना यहाँ है बेहद ज़रूरी, क्योंकि आप ये बात जानते हैं आपके बिना कोई सफ़र पूरा नहीं होता कभी। तो रात के 11:09 का वक्त हो चुका है और रजनीगंधा के सफ़र में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी ऋचा।

1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उनका जन्म हुआ। बंगाली फिल्मों के नरगिस के पिता उत्तम चंद मोहनदास फेमस डायरेक्टर थे ऐसा कहा जाता है, और उनकी माँ जद्दनबाई मशहूर नर्तक और गायिका थी। अगर हम नरगिस दत्त की पूरी लाइफ हिस्ट्री को देखें ना, तो हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा रहा हो ये भी नहीं था। कहते हैं जन्म के साथ ही कई सारी समस्याएं उनके जीवन में रहीं, वो जब आप धीरे धीरे अभी आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ तक भी आप पहुँचेंगे, इस बात को भी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। कहते हैं कि माँ के चाहने से नरगिस ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था, और फिल्म का नाम उस वक्त था तलाशे हक। कहते हैं कि उस वक्त नरगिस महज 6 साल की थी, और 6 साल की बच्ची जब खेलने कूदने की उम्र है तो ना चाहते हुए फिल्मों का रुख करना पड़ा। बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ना चाहते हुए भी वो सिलसिला शुरू हुआ जो छोटी सी उम्र में, जब हम बच्चे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, भागम भाग खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, पहेलियां बुझाते हैं, उस दौर में जीवन के एक लंबे दौर तक संघर्ष करने वाला एक सफ़र यूँ कह सकते हैं कि यहीं से शुरू हो गया जब वो महज 6 साल की थी। हालांकि इस दौर को भी उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ निभाया, शायद इसीलिए वो नरगिस दत्त बन सकी।

होता ऐसा है कई बार कि आपको ज़िंदगी की राहों पर वो मौके वो तलाश होती ख़त्म नहीं हो पाती जिसके लिए आप भागते चले जाते हैं और लगता है कि फिर कहीं कोई एक ऐसी राह मिले, कहीं कोई एक ऐसी रोशनी मिले जो आपकी ज़िंदगी की जो राहें हैं ना उसको रोशन कर सके। माँ कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी क्योंकि तलाश हक के बाद जितनी फिल्में उन्होंने बनाई वो सभी फिल्में घाटे में जा रही थी और कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अब कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं था सिवाय इसके कि फिल्मों में काम करती रहें, फिल्मों का हिस्सा बनी रहें नरगिस। हालांकि प्रयास उन्होंने बहुत किए लेकिन माँ की स्थिति को देखकर मन को मारकर फिर एक बार उनके कहने पर वो अपनी एक अगली फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने चली गईं। कहते हैं कि जब इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने की बारी आई तो उन्होंने ये सोचा कि वो सारे डायलॉग्स गलत बोल देंगी ताकि उनका सिलेक्शन ही ना हो, कुछ ऐसा करेंगे कि डायरेक्टर उनको देखते मना कर दें और ये कह दें कि नहीं इनमें वो बात नहीं है, मैं इन्हें फिल्म का हिस्सा नहीं बना सकता। किया भी इन्होंने ऐसा ही, लेकिन फिर वही बात, जब होना जो है वो तो होकर वही रहेगा ना, हम और आप चाहें भी तो क्या ही होता है। कहते हैं कि फिल्म के जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने उनके उस मन चाहे अनचाहे जो अंदाज थे उनको भी देखते हुए कहीं उनकी एक्टिंग को पसंद कर लिया था और फिर अपनी फिल्म में बतौर एक्ट्रेस साइन कर लिया था। ये फिल्म थी तकदीर जो कि 1943 में आई थी जिसमें बतौर अभिनेत्री नरगिस पहली बार नज़र आई थी और इस फिल्म में उनकी जोड़ी बनी थी अभिनेता मोतीलाल के साथ। एक्टिंग और कला नरगिस को चूंकि विरासत में मिली थी तो इस फिल्म में काम करने के बाद बेबी नरगिस अब नरगिस के नाम से फेमस भी हो गई थी और इसके बाद कहते हैं कई फिल्मों में उन्होंने काम किया जिनमें तमाम सारी फिल्में अगर हम देखें तो तकदीर के अलावा 1940 और 50 के दशक में शानदार फिल्में रहीं जिनमें बरसात, अंदाज, जोगन, आवारा, दीदार, अनजाने, श्री 420 और चोरी चोरी जैसी कई सारी फिल्में शामिल हैं। एक बात और भी है, जितनी फिल्मों के नाम मैंने अभी लिए अगर आप गौर करें तो इनमें से कई सारी फिल्मों में हीरो उनके राज कपूर साहब रहे हैं, वो राज कपूर साहब जिनके साथ एक लंबा दौर उन्होंने जिया था तब जब कहीं मनी मन उन्हें चाहती थी, कुछ प्रेम संबंधों की बात भी थी, कैसे मिली थी उनसे हम बताएंगे आपको। लेकिन जिस डायरेक्टर के पास गई थी उनका जिक्र भी ज़रूरी है, ये वही डायरेक्टर थे जिन्होंने उनकी

प्रतिभा थी, उनके ना चाहते हुए भी समझ ली थी। और फिर जब साल 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया, जी हाँ बात कर रही हूँ मैं आपसे महबूब खान साहब की, कहीं पहले ही उन्होंने इस प्रतिभा को समझ लिया था। और जब वो फिल्म आई तो कई सारे कीर्तिमान जुड़े थे नरगिस जी के साथ। तो पार की नज़रें ऐसी ही हुआ करती हैं। 14 साल की उम्र में महज उन्होंने फिल्म तकदीर 1943 में जो आई थी उसमें काम किया, और उसके बाद वहाँ से नरगिस जो थी, बेबी नरगिस जो थी, वो नरगिस के नाम से फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन गई थी।

आई थी उसमें काम किया, और उसके बाद वहां से नरगिस जो थी, बीबी नरगिस जो थी, वो नरगिस के नाम से फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन गई थी।

तो तकदीर फिल्म साइन करने के बाद उनके पास कई सारी फिल्में आ चुकी थी और उसके बाद वो जो कर्ज का दौर था कहीं धीरे धीरे वो ख़त्म भी होने लगा था। और इधर नरगिस दत्त साहिबा अपनी नरगिस जी अभी यहाँ तो हम यही कहेंगे कि नरगिस जी अपनी फिल्मों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। और गाने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि राज कपूर साहब के साथ उनका जो जुड़ाव था वो भी काफ़ी चर्चा में रहा था। उनके साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी, उनका आपस में जुड़ाव, फिल्मों में एक साथ काम करना काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था। मुलाकात कैसे हुई थी इस बारे में आपसे इस वक्त बात करनी थी। और किस्सा उस वक्त का है जब 1948 में पहली बार राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से मिले थे। जी हाँ, उनकी मुलाकात तब हुई जब वो महज 20 साल की थी और अब तक तकरीबन 8 फिल्मों में काम भी कर चुकी थी। कहते हैं कि राज कपूर साहब को एक फिल्म स्टूडियो की तलाश थी और उस दौर में नरगिस जी की माँ एक मशहूर स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। तो राज कपूर साहब को ये लगा कि जद्दन बाई जी जो हैं वो इस बात की बेहतर जानकारी दे सकती हैं कि स्टूडियो में किस तरह की सुविधाएं हैं, इसलिए वो उनसे मिलने उनके घर पहुंच गए थे। अब पता है दोनों की मुलाकात भी बड़े ड्रामेटिक अंदाज में हुई। वो अंदाज उन्होंने आगे अपनी फिल्म में भी इस्तेमाल किया था और जितने ड्रामेटिक अंदाज में उनकी शुरुआत हुई, कहीं उनकी जो लव स्टोरी थी, उनकी मुलाकात का अंत भी बड़े नाटकीय अंदाज से ही कहीं हो ही गया था। बहरहाल यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं उनकी मुलाकात की। तो जब उनके घर पहुंचे, कहते हैं दरवाजे को नॉक किया, घंटी बजाई, अंदर से नरगिस बाहर निकल करके आई। वो नरगिस जो उस वक्त रसोई में पकौड़े तल रही थी, कुछ याद आया आपको? ये वो सीन है जिसको उन्होंने बाद में अपनी फिल्म में भी इंट्रोड्यूस किया था। तो पकौड़े तलती हुई नरगिस जो है उसको छोड़कर दरवाज़ा खोलने आई और उनके हाथों में जो लगा बेसन था वो उनके बालों पर लग गया था। कहते हैं कि ये देखते ही राज कपूर साहब की नज़र में बस वो एक नज़र में बस गई। राज कपूर साहब उनसे इतना प्रभावित हुए कि न केवल नरगिस जी को उन्होंने अपनी अगली फिल्म आग में कास्ट किया, बल्कि जो दृश्य था, ये जो कुछ अचानक से हो गया था, इस पूरे सीन को जो उनके दिमाग में बैठ गया था अपनी बैनर की फिल्म बॉबी में।

ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के साथ भी फिल्म आया था, याद है ना आपको वो सीन? बिल्कुल याद होगा। लंबे समय तक दोनों ने साथ में काम किया और फिर कहते हैं वो गहरी दोस्ती भी हुई और वो गहरी दोस्ती प्यार में बदली, ये आपको बेहतर तरीके से पता है।

यही तो प्यार इश्क मोहब्बत की मासूमियत है ना, वो कहाँ देखता है रास्ता, कहाँ देखता है मंजिलें, कहाँ देखता है मुश्किलें, बस दिल से दिल मिलता है और कहानी आगे बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ नरगिस और राज कपूर साहब के साथ ही, ये जानते पूछते बिना भी कि इस प्यार की मंजिल होगी भी क्या नहीं होगी। कहते हैं कि नरगिस जी ने टूट कर राज कपूर साहब से प्रेम किया। उनका लगाव राज कपूर साहब से इतना ज़्यादा था कि उसका एक उदाहरण मधु जैन की किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में भी मिलता है। अपनी इस किताब में मधु जैन लिखती हैं कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और अपना पैसा तक भी राज कपूर साहब की फिल्मों पर लगाना शुरू कर दिया था। फ्लॉप फिल्मों के दौर में जब आर के स्टूडियो पैसों की तंगहाली से जूझ रहा था, तो पैसों की भरपाई के लिए नरगिस ने अपने गहने तक बेचे।

दूसरे निर्माताओं की कुछ फिल्में जिनमें अदालत घर संसार और लाजवंती जैसी फिल्में थीं उनमें भी काम किया ताकि आरके फिल्म्स की मदद की जा सके और राज कपूर साहब के प्रति जो उनका प्रेम है उस प्रेम के प्रति वो कुछ जो उनका एक लगाव है उसको दिखा सकें। और यकीन मानिए ये सब कुछ करना ये कहीं राज कपूर साहब के प्रति उनके पवित्र प्रेम को ही दर्शाता है।

दोस्तों फर्ज करिए 19 साल की लड़की जिसे घर में कहते हैं कभी प्यार नहीं मिला, माँ ने भी शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में इसलिए उतारा ताकि वो पैसे कमा सकें और उस छोटी सी उम्र में फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी, अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। और उस दौर में जिसने भी उनका हाथ प्रेम से थामा, निगाह भर देखा, कहते हैं वो उनके प्रेम में पड़ी। राज कपूर साहब के साथ अपने 9 साल के रिश्ते के दौरान नरगिस को एहसास हुआ कि राज उनके लिए कभी अपने परिवार को छोड़ेंगे नहीं और उनका अपना परिवार उन्हें सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझता था। कहते लगे हैं कि वो दुनिया में बहुत अकेली थी और प्यार की ज़रूरत थी। जो मिला बस उतार चढ़ाव के बाद उन्होंने जैसे तैसे उसको अपनाया भी, लेकिन जिस प्यार की तलाश थी वो उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव जद्दोजहद के बाद मिला। कहते हैं कि राज कपूर साहब से रिश्ता टूटने के बाद नरगिस इतनी टूट गई थी कि आत्महत्या तक करने की सोचने लगी थी। लेकिन फिर आया साल 1957 जब मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी की कहानी ही बदल दी। वो वाकया जो कि 1 मार्च 1957 को घटा। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी और एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जिक्र करना लाजमी समझती हूँ। और उस वक्त पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती हैं। कहते हैं फिल्म में सुनील दत्त जो कि नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा आग

में कूद जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक हादसा होता है, हवा का रुख बदलता है और आग की लपटें तेज हो जाती हैं। नरगिस उन लपटों की चपेट में आती हैं, जलने लगती हैं, उनके कपड़े जलने लगते हैं और नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़ते हैं। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लेते हैं, लेकिन इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उसके बाद काफ़ी दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज भी चलता है। कहते हैं कि ये वो वक्त था जो सुनील दत्त और नरगिस को एक दूसरे के करीब लाकर खड़ा कर देता है। हालांकि ये कहानी वो है जो हम और आप जानते हैं, पर असल में इस प्रेम कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये एक और ही किस्सा है। क्या है वो किस्सा, अभी जब हम वापस आपके पास आएंगे ना तब उसका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल 11:42 ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

0: से न पूछो कि तुम मेरे कौन।
1: जब वो उन्हें बचाने के लिए आग में कूदे थे ना, उस वक्त ना नरगिस को पता था और ना सुनील दत्त साहब को इस बात का ज़रा भी इल्म था कि हाँ, ज़िंदगी फिर उन्हें उस मोड़ पर लेकर आएगी जहाँ से 11 मार्च 1958 का वो सफ़र शुरू हो जाएगा जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगे। जानते तो थे सुनील दत्त साहब की काफ़ी अकेलेपन से गुजर रही हैं नरगिस, और इसलिए उनके साथ हाथ थाम कर उन्होंने, कहते हैं बकौल नरगिस ये कहते हैं कि उन्होंने वो एक मौका दिया जहाँ से नरगिस जी की जो डायरी थी, जो

लिखा करती थी उसका मजमून बदलने लगा था। खुश रहने लगी थी वो, आंखों में कहीं उम्मीद भी थी उनके, और इस बात को लेकर कि शायद अब उनकी ज़िंदगी में वो प्यार आ चुका है जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। हालांकि ये बात हम और आप जानते हैं कि ये सारे किस्से ऐसे हुए, लेकिन एक बार एक इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त साहब ने इस बात का खुलासा किया था कि महज आग में कूद कर किसी को बचाने से इश्क नहीं हो जाया करता। नरगिस जी को पसंद करने के पीछे की बात ही कुछ और थी। बताते हैं कि एक बार स्टूडियो में अपनी छोटी बहन और उसके दो बच्चों के साथ बैठे थे और बहन के गले में ट्यूमर था, और चूंकि वो उस वक्त मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, किसी बड़े डॉक्टर को नहीं जानते थे। जिस दौरान ये घटना घट रही थी उसी वक्त स्टूडियो में नरगिस जी आईं, तब जब दोनों फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग कर रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने उनको बुलाया अपने पास और प्यार से बिरजू कहा करती थी उन्हें, बिरजू कहकर बुलाती थी। तो उसी अंदाज में उन्होंने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो। उनके पूछने पर सुनील दत्त साहब ने उनको सारी बात बता दी और कहा कि बहन तकलीफ में है पर मैं किसी डॉक्टर को जानता नहीं हूँ। ये कहकर नरगिस दत्त साहब आगे बढ़ गई साहिबा और सुनील दत्त साहब अपने काम पर लग गए। लेकिन कहते हैं कि जब देर रात वो घर पहुंचे तो उनकी बहन ने उनको बताया कि कल सुबह उन्हें हॉस्पिटल जाना है। थोड़ा सकते में थे कि आखिर क्यों जाना है। बहन ने कहा कि ऑपरेशन होना है। अब हैरानी का दौर और बढ़ गया कि आखिर हॉस्पिटल क्यों, किसके साथ जाना है, कैसे जाना है, ऑपरेशन कौन करवा रहा है। तमाम सारे जो सवाल थे वो कहीं एक साथ सुनील दत्त साहब की जहन में था लगातार आने लगे। खैर, बातों को साफ करते हुए उनकी बहन ने कहा कि हाँ, मुझे उन्हीं के साथ जाना है जो इस वक्त आपके साथ फिल्मी पर्दे पर आपकी मदर का रोल प्ले कर रही हैं। कहते हैं जैसे इन्होंने सुना तो उनके जहन में उसी वक्त कहीं नरगिस जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। उनको लगा कि इतनी चुटकियों में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और इसके बाद से ही वो उनके दिल में बस गई थी। उन्हें लगने लगा कि जिस तरह की पार्टनर वो चाहते हैं वैसी ही पार्टनर है नरगिस और वैसी ही पार्टनर वो बन सकती हैं। लेकिन अभी मसला ये था कि बात वहाँ तक पहुँचेगी कि नहीं। आगे दत्त साहब कहते हैं कि ये घटना घट गई, बहन ऑपरेशन के लिए गई भी, वहाँ से ठीक ठाक आ भी गई, लेकिन एक रोज़ जब नरगिस उनके घर आई थी तो सुनील दत्त साहब ने उनसे कहा कि चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, और फिर कार में उन्होंने हिम्मत जुटाकर नरगिस जी से अपने मन की बात कह भी दी। और नरगिस जी ने उसी अंदाज में उनसे पूछा कि हाँ बिरजू, बताओ क्या कहना चाहते हो। कार में कुछ देर सन्नाटा था जब सुनील दत्त साहब ने उनसे अपनी बात कही, एक गहरा सन्नाटा, जैसा कि वो सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन उस वक्त बिना कोई जवाब दिए नरगिस कार से उतरी और अपने घर चली गई थी। दत्त साहब को ये लगा था कि बात आई गई हो गई, कोई जवाब आएगा नहीं, मुझे वापस जाकर अपने गांव अपने घर पे खेती करनी पड़ेगी। लेकिन अगली सुबह कुछ यूं हुआ जिसकी उनको बिल्कुल आशंका नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। और हुआ कुछ यूं था कि नरगिस जी ने फ़ोन करके उनसे कहा, जो बात जो सवाल उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, इस बात पर नरगिस साहिबा ने हाँ कर दी थी। अब तो जैसे सुनील दत्त साहब को उनके सपनों की राजकुमारी मिल गई थी, और इधर नरगिस जी को वो साथी जिसकी उन्हें बरसों से, या यूं कहिए सदियों से तलाश थी।

नरगिस ने अपने 4 दशक के फिल्मी करियर में तकरीबन 55 फिल्मों में काम किया, जिसमें श्री 420, वदर इंडिया, रात और दिन, चोरी चोरी आवारा, बरसात इनकी सबसे सफल फिल्मों में शुमार रही हैं। वदर इंडिया की बात करें तो ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई थी और इस फिल्म ने उन्हें कई सारे कीर्तिमान भी उनको दिलवाए। उनकी अदाकारी ने इस फिल्म को अमर कर दिया और इस फिल्म में हिंदी सिनेमा जगत के दर्शकों को दिलों पर भी जो छाप छोड़ी उसे आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और बात करें अगर फिल्म इंडिया की, तो एकेडमी अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था इस फिल्म को।

1958 में सुनील दत्त से शादी कर नरगिस नरगिस से नरगिस दत्त बन गई और शादी के बाद कहते हैं उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था. तकरीबन 10 साल बाद उन्होंने फिर से एक फिल्म रात और दिन इसमें वापस एंट्री ली और कहते हैं कि इस फिल्म को के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पहला ऐसा मौका था जब किसी अभिनेत्री को इस फिल्म के लिए किसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था. ये कीर्तिमान भी नो डाउट नरगिस जी के हिस्से ही रहा.

पहली संरक्षक भी बनी और तो और अजंता कला सांस्कृतिक दल भी बनाया उन्होंने, जिनमें तब के नामी कलाकार गायक सरहदों पर जाकर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाते थे और उनका मनोरंजन भी करते थे। कहते हैं बांग्लादेश बनने के बाद साल 1971 में उनका पहला ये काम था जो उन्होंने किया था, और फिर 1981 से 82 में तक में राज्यसभा के लिए भी नामित की गई थी, लेकिन कैंसर होने के कारण कार्यकाल के दौरान वो उसे पूरा नहीं कर पाई, उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से लाखों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाली इस अदाकारा को 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में पैनक्रियास कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ। कहते हैं कि उसके बाद उनकी याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना भी हुई। नरगिस दत्त साहिबा को हमेशा से आग से डर लगता था जब वो उस वक्त जब ये सीन था मदर इंडिया वाला, वहाँ वो जल गई थी। उसके बाद उन्होंने हमेशा आग से दूरी बनाकर रखी थी, लेकिन इच्छा उनकी ज़रूर थी कि जब वो इस दुनिया से जाएं, पंचतत्व में विलीन हों तो उसी आग के सुपुर्द हों जो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। ये हुआ भी, लेकिन कुछ इच्छाएं उनकी फिर भी कहीं ना कहीं अधूरी रह गईं। बच्चों को सेटल होते देखना चाहती थी पर ये हो नहीं सका। यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से 3 मई 1981 को उन्होंने अपनी जो इस दुनिया थी उससे अलविदा कहा, और कहते हैं कि उसी के ठीक 4 बाद यानी 7 मई 1981 के दिन संजय दत्त की डेब्यू मूवी रॉकी रिलीज हुई थी।

कहते हैं कि प्रीमियर के दिन थिएटर में नरगिस जी की याद में एक व्हील चेयर रखी गई थी जिसके एक किनारे सुनील दत्त और दूसरे किनारे पर संजय दत्त बैठे हुए थे। एक अपनी पत्नी को सहारा देता हुआ, दूसरा अपनी माँ को याद करता हुआ। क्योंकि नरगिस दत्त साहिबा उनकी फिल्म के रिलीज़ के कुछ दिन पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई। भले ही वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थी, सो गई थी, लेकिन ये बात सच है कि आज भी कहीं उनकी यादें जागती हैं आपके हमारे सबके जहन में। भारतीय सिनेमा की वो पहली महिला अदाकारा जिसने पद्मश्री से लेकर पॉलिटिक्स तक कई रिकॉर्ड बनाए, आज भी आपके हमारे सबके जहन में वैसे ही जिंदा हैं तब जैसे वो थी। आज के रजनीगंधा के जरिए हमने उन्हें याद किया क्योंकि आज के दिन उन्होंने दुनिया में कदम रखा था। भले ही वो हमारे साथ नहीं है आज, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए, उनके गीतों के जरिए, वो काम जो उन्होंने किए समाज के प्रति, हमेशा हमारे साथ रहेंगी। 11:59 का वक्त हो चुका है। आज की रजनीगंधा से दीजिए आपकी दोस्त, आपकी रजा को इजाज़त। शुभ रात्रि, शुभ बखैर।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 7 जून तक गौशालाओं में विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही प्रदेश की सभी गौशालाओं में स्वच्छता, पशु कल्याण, गो संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुधन मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 4 निराश्रित गोवंश लेने वाले किसानों और पशुपालकों को ₹72,000 की सहायता भी प्रदान करेगी। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और

ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य से लगभग 2 डिग्री कम था। सूर्योदय 5:13 पर और सूर्यास्त 6:56 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7:00 प्रसारित किया जाएगा। 100.7 MHz पर आकाशवाणी की FM रेनबो प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यही समाप्त होती है। कल प्रातः 5:50 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।